103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है एफएम शिमला। आज वीरवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है एफएम शिमला। समाचार के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र

0: विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृह मंत्री त्रिपुरा के दो दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जब जीवन की राहों में चुनौतियां बढ़ जाती हैं, जब मन उलझनों से घिर जाता है और जब हर ओर अंधेरा सा महसूस होता है, तब एक विश्वास हमें संभाले रखता है, महादेव का विश्वास। शिव केवल देव नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और संरक्षण के प्रतीक हैं।

एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम हिमांजलि। इस दुनिया में अगर कोई रिश्ता बिना किसी शर्त के प्यार करता है, बिना किसी उम्मीद के साथ निभाता है और हमारी हर खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेता है, तो वो है माँ। सच ही तो है, माँ तू ही तू है जो हमारी हर मुस्कान की वजह है, हर परेशानी में सहारा है और हर सफलता के पीछे छिपी हुई प्रेरणा है।

कृष्ण मुरारी का नाम लेते ही मन में भक्ति, प्रेम और शांति का भाव जाग उठता है। उनकी बांसुरी की धुन आज भी भक्तों के हृदय में श्रद्धा का संगीत घोल देती है।

कार्यक्रम हिमांजलि में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 6:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं मानस गान।

स्वामी तुलसीदास ने न केवल अनेक देवों, सज्जनों तथा दुष्टों की वंदना की है, वरन काव्य सृजन में अपनी अक्षमता तथा हर प्रकार से असमर्थता भी प्रकट की है। उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा के दर्शन उनके इस कथन में होते हैं, जो व्यक्ति धन रूपी लोभ, क्रोध और काम के गुलाम है, जो धैर्य की

झूठी ध्वजा फहराने की दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोते हैं, उनमें सबसे पहले गिनती मेरी है। वे ना तो कवि होने का दावा करते हैं और ना ही चतुर और ज्ञानी। कहते हैं, मैं तो अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार प्रभु श्री राम का गुणगान करता हूं। कहां तो प्रभु का आपार चरित्र और कहां सांसारिक मोह माया में लिपटा मैं और मेरी आसक्ति। सुधी पाठकों तथा श्रद्धालुओं से उनका निवेदन है कि उनकी विनती सुनकर रामकथा सुनते हुए कोई उन्हें दोष ना दे।

अभी आप सुन रहे थे मानस कान। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, सविता देवी और साथ ही संगीतकार सतीश भाटिया। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। आइए अब सुनते हैं देश गान।

0: देशगान अभी आपने सुना। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है एफएम शिमला। लीजिए पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि समाज को शिक्षित करने और सकारात्मक परिवर्तन लाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने लोकभवन शिमला में हिमाचल प्रदेश की प्रेरणादायक उपलब्धियों पर आधारित कॉफी टेबल हाई फ्लायर के लोकार्पण अवसर पर कल ये बात कही। राज्यपाल ने प्रदेश के विकास और प्रगति में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को पहचान दिलाने की इस पहल की सराहना की। राज्यपाल ने नशे की समस्या से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों पर भी बल दिया। राज्य के विभिन्न जलाशयों में मत्स्य पालन गतिविधियों से जुड़े मछुआरों की आय को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने मत्स्य आखेट पर लगने वाली रॉयल्टी को

0: 0.5% से घटाकर 1% करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस निर्णय से गोविंद सागर, पोंग बांध, चमेरा, रंजीत सागर और कोल बांध जलाशयों पर आजीविका के लिए निर्भर करीब 6,500 मछुआरा परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए अनेक महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। शिमला में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्नातक डिग्री पूर्ण कर चुके विद्यार्थियों के लिए अप्रेंटिसशिप समाहित डिग्री कार्यक्रम शुरू करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। उन्होंने डीके शिवकुमार को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में कर्नाटक विकास और जनकल्याण के लिए नए आयाम स्थापित करेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मोदी सरकार ने गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 राज्यों के लिए 10,021 करोड़ रुपए की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री के हाउसिंग फॉर ऑल संकल्प को नई गति प्रदान करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, वंचित व आवासहीन परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एफएम शिमला के साथ हैं आप, 7 बजने को हैं। हिंदी में समाचार के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येविट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुँचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: शिमला 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं चिंतन।

कामाशक्ति से विनाश हो जाता है। कामांध मनुष्य को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता, वो अधर्मी हो जाता है, हर चीज को पाने के लिए पागल सा हो जाता है और अपना ही अनिष्ट कर बैठता है। हिरण्यकशिपु के वंश में दैत्य निकुंभ के पुत्र सुंद और उपसुंद थे, दोनों ही पराक्रमी, दोनों में इतना प्रेम कि एक प्राण दो दे, वो हर पल साथ ही रहते थे। एक बार उन दोनों ने अमर होने की इच्छा से घोर तप किया। विंध्याचल पर्वत पर जाकर वो वायु का सेवन करके रहने लगे। उनके शरीर पर मिट्टी की परत जम गई। अंत में अपने शरीर का मांस काट काट कर वो हवन करने लगे। उनके शरीर में केवल अस्थियां रह गई। देवताओं ने इनकी तपस्या भंग करने के लिए कई उपाय किए, लेकिन असफल रहे। अंततः उनकी घोर तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी वहां पधारे। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा तो दोनों दैत्य बोल उठे, हम दोनों मायावी, सभी अस्त्रों के ज्ञाता तथा अमर हो जाएं। पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अमर होने का वरदान नहीं दिया। दैत्य बोले, यदि आप हमें अमरत्व नहीं दे सकते तो ये वरदान दें कि हम दोनों किसी से भी पराजित ना हों और ना ही मारे जाएं, हमारी मृत्यु एक दूसरे के हाथों में ना हो। ब्रह्मा जी एवं अस्तु कहकर चल दिए। वरदान पाकर दोनों दैत्य अपने राज्य में आ गए। दोनों ने त्रिलोक पर विजय पाने का निश्चय किया। उनके वरदान के आगे देवता भी बेबस हो गए। उन दोनों दैत्यों ने यक्ष, राक्षस, नाग इत्यादि पर विजय प्राप्त कर ली। त्रिलोकी विजय होकर उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कोई भी यज्ञ, पूजन, वेदाध्ययन ना कर पाए, ऋषियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए। क्रूर दैत्य ब्राह्मणों का वध करने लगे। वो मायावी दैत्य अनेक रूप धारण करके लोगों को

सताने लगे, इन अत्याचारियों से बचने के लिए ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर अत्यंत सुंदर नारी के निर्माण का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने विश्व की समस्त सुंदर वस्तुओं का सार भाग लेकर एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया। ब्रह्मा जी उस स्त्री को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसका नाम तिलोत्तमा रखा। तिलोत्तमा ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सुंद अपसुंद के समीप जाओ, उनको एक दूसरे का दुश्मन बना दो। उस समय सुंद उपसुंद विंध्याचल के उपवन में विहार कर रहे थे। दोनों ने तिलोत्तमा को नदी के किनारे फूल चुनते हुए देखा। दोनों भाई उसके सौंदर्य को देखकर पगला गए। दोनों ही भाई उससे अनुनय विनय करने लगे कि वो उन दोनों में से किसी एक की पत्नी बन जाए। तिलोत्तमा ने कटाक्ष करते हुए दोनों को कहा, आप लोग परस्पर ये निर्णय कर लें कि मैं किसका वरण करूं। उस नारी को पाने के लिए दोनों भाई परस्पर सौहार्द भूल गए। उसे पाने के लिए वो आपस में लड़ने लगे। कामदेव ने उन्हें अंधा कर दिया। सुंद ने क्रोध पूर्वक उपसुंद से कहा, ये मेरी स्त्री है, ये तुम्हारे लिए माता के समान है। उपसुंद कहने लगा, ये स्त्री मेरी पत्नी है, तुम्हारी पुत्र वधु के समान है। विवाद बढ़ने लगा। उन्होंने गदाएं उठा ली और एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। परस्पर आघात से उनका शरीर जगह जगह से कट गया। दोनों ही निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़े। तिलोत्तमा का कार्य पूरा हो गया। ब्रह्मा जी ने उसे स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सरा बना दिया। दोनों ही भाई कामाशक्ति के वशीभूत होकर अपना ही विनाश कर बैठे।

एफएम शिमला पर डॉक्टर हुकुम शर्मा से अभी आप चिंतन सुन रहे थे। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला।

7:10 हुए हैं, तो चलिए अब आपको बता दें कि आज आप FM शिमला पर अब से लेकर रात 11:10 तक कौन कौन से कार्यक्रम और किस समय पर सुनेंगे। सात बजकर 15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। FM न्यूज हेडलाइंस आप सुनते हैं 7:57, 8:30 और 9:57 पर। प्रादेशिक समाचार आप रोजाना सुनते हैं 9:20, 11:00, 3:00, 6:00 और 7:45 पर। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे 8:00, 12:00, 1:00, 2:15, 8:45 और 11:00। अंग्रेजी में समाचार 8:15, 12:05, 1:05, 7:05, 9:00 और 11:05 पर। लोक संगीत का आनंद आप लेंगे 8:32, 11:30, 2:30 पर शिखरों के स्वर।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे 12:10, रात 8:30 और दोपहर 3:10 पर ओल्ड हिट्स फिल्म म्यूजिक।

आहार विषय पर डॉक्टर अमित सचदेवा से सपना ठाकुर की बातचीत। नौ बजकर 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुदरत के रंग। सदाबहार गीत आप सुन सकते हैं 10 बजे। पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम पेश किया जाएगा 11:05 पर। महिला सम्मेलन कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:20 पर।

1:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सबरंग कार्यक्रम पेश किया जाएगा दोपहर 2 बजे। युवाणी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 3:30 पर। शाम 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 5 बजे आप सुनिएगा मंडियाली गीत। पंगवाली कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 5:20 पर। छह बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे कांगड़ी कार्यक्रम। लाहौली कार्यक्रम पेश किया जाएगा 6:35 पर। कृषि जगत कार्यक्रम आप सुनते हैं 7:10 पर। भूले बिस्ते गीत आप सुनिएगा रात 8 बजे।

रात 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से, 9:30 पर कार्यक्रम दिल की आवाज भी सुन, गजलों का आनंद आप लेंगे रात 10 बजे और 10:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे। इन तमाम कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप सुनते रहिए FM शिमला 103.7 MHz पर।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 7:15 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला का। सुबह की इस ताजगी भरी बेला में आपकी रेडियो हमसफर रीना वर्मा है आपके साथ। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। पहाड़ों पर बिखरी धूप, देवदार की खुशबू और ठंडी हवाओं के साथ लेकर आए हैं बातें जिंदगी की, मुस्कानों की और खूबसूरत एहसासों की। जिंदगी में हर दिन एक नया मौका लेकर आता है। कल क्या हुआ उसे सोचकर आज की सुबह को उदास मत कीजिए, क्योंकि हर नई सुबह यही कहती है कि अगर इरादे अच्छे हों तो हर दिन जिंदगी का खूबसूरत दिन बन सकता है। तो मुस्कुराइए, अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ कीजिए और सुनते रहिए FM शिमला, क्योंकि यहाँ बातें भी दिल से होती हैं और गीत भी दिल तक पहुँचते हैं।

0: morning, everyone. My name is Lady Constable Nikita, and I'm serving in Himachal Police since 4 years now. So talking about the drug abuse in Himachal Pradesh, as we all know that Himachal Police is fighting strongly this menace of drug abuse, but we are not the lone warriors. We need the support of youth. I request each and every part of the society to please come forward and be our eyes and be our ears. On the occasion of World Environment Day, Himachal Pradesh Police, with collaboration in other departments, is conducting a mini-marathon on Ridge at 6:30 a.m. Let our every step echo the commitment toward green Himachal and healthy and drug-free Himachal. Thank you.
1: Jai Hind, Jai Himachal.
2: FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। हम अक्सर बड़ी खुशियों के पीछे भागते भागते जिंदगी के उन खूबसूरत पलों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो रोज हमारे आसपास होते हैं, जैसे सुबह की पहली चाय, अपनों की मुस्कान और सूरज, उगता सूरज और साथ में आप सभी का साथ। यही तो असली खुशी है। जिंदगी बड़ी खुशियों से नहीं, छोटी छोटी मुस्कुराहटों से खूबसूरत बनती है। तो आज क्यों ना अपने आप से ये वादा करें कि हर छोटी खुशी को महसूस करेंगे, हर

0: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है। आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें, बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
4: नीलम, छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
5: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
6: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
5: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
7: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: FM शिमला 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला।
8: अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों में अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
9: थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है। आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
8: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
9: नियमों शर्तें लागू।

आज की तेज रफ्तार दुनिया में हर कोई मोबाइल की स्क्रीन पर व्यस्त है। लोग ऑनलाइन तो बहुत हैं, लेकिन दिल से जुड़ने वाले रिश्ते कहीं ना कहीं ऑफलाइन होते जा रहे हैं। तकनीक ने हमें दुनिया से जोड़ दिया, लेकिन अपनों से जुड़े रहने की जिम्मेदारी आज भी हमारे दिल की ही है। कभी कभी सबसे खूबसूरत नोटिफिकेशन वो होता है जब कोई अपना कहे बस ऐसे ही याद आ गई, इसलिए फोन कर लिया कीजिए, क्योंकि इसलिए इन सब चीजों से थोड़ा वक्त निकालकर अपनों के साथ कुछ पल जरूर बिताइए, क्योंकि असली खुशी रिश्तों में मिलती है। रिश्तों की खूबसूरती शब्दों में नहीं, एहसासों में छुपी होती है, क्योंकि जिंदगी के सफर में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत उन लोगों की होती है जो हर हाल में साथ निभाए। रिश्तों में छुपी छोटी छोटी खुशियां ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती है, और इसी खूबसूरत एहसास के साथ आप यूं ही सुनते रहिए FM शिमला 103.7 MHz पर।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक उत्सव है और ये 5 दिवसीय भव्य आयोजन 8 जून से 12 जून 2026 तक शिमला के द रिज में आयोजित किया जाएगा। इसमें लाइव सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस, हिमाचली नाटी, लोक नृत्य, हस्तशिल्प मेले और एक शानदार फूड फेस्टिवल शामिल है। आपको बता दें कि इस दौरान 9 जून को माँ यानी मदर्स अगेंस्ट अब्यूज एंड एडिक्शन विषय पर महानाटी का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य समाज को नशे से दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा और सशक्तिकरण का संदेश जन जन तक पहुंचाना है।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। आज है 4 जून सन 2026। भारत और विश्व इतिहास में आज के इस दिन का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई ऐसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं घटी जो कि इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। सन 1812 की अगर हम बात करें तो लुइसियाना को अमेरिकी राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मिडवे की लड़ाई शुरू हुई, जो प्रशांत महासागर में जापान के खिलाफ अमेरिका की जीत में से एक थी। हर साल 4 जून को आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।

ये दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया का हर बच्चा सुरक्षित, खुश और भयमुक्त बचपन का हकदार है। ये दिवस उन मासूम बच्चों के प्रति संवेदना व्यक्त करने और उनके अधिकारों की रक्षा का संकल्प लेने का अवसर है।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। मौसम बदलते रहते हैं और यही बदलाव जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। कभी ठंडी सुबह सुकून देती है तो कभी बारिश की बूंदें दिल को छू जाती हैं। हर मौसम का अपना रंग है, अपनी खुशबू है, अपना एहसास है। देखिए, अगर हर मौसम में खुश रहना सीख लिया तो समझो जिंदगी जीने का असली हुनर आ गया। इसलिए शिकायत कम कीजिए और हर मौसम का आनंद लीजिए, क्योंकि हर मौसम कुछ पल के लिए आता है लेकिन यादें हमेशा छोड़ जाता है।

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला में आज बस इतना ही। तो चलिए हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, आज सुबह 8:45 पर रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वस्थ और संतुलित आहार विषय पर डॉक्टर अमित सचदेवा से सपना ठाकुर की बातचीत। नौ बजकर 30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुदरत के रंग। सदाबहार गीत आप सुन सकते हैं सुबह 10 बजे। पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम पेश होगा 11:05 पर। पहाड़ी संगीत का आनंद आप लेंगे 11:30 पर। महिला सम्मेलन कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 12:20 पर।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। लीजिए पेश है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने इसे योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और जिला परिषद चुनावों में खड़े सभी उम्मीदवारों को 30 जून तक अपने चुनावी खर्चे का पूरा ब्यौरा देना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए आयोग भविष्य में उनको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में बीबीएन क्षेत्र में एक नई टाउनशिप योजना और चंडीगढ़ शहर की तर्ज पर एक सैटेलाइट टाउन की स्थापना पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त शिमला शहर में भीड़ कम करने के मुद्दे पर भी चर्चा

0: हुई। समिति ने शहर के भीतर ट्रैफिक में अवरोध और भीड़ का कारण बनने वाली मंडियों को शिमला के बाहर नवनिर्मित फोरलेन सड़क मार्ग पर स्थित उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने पर भी चर्चा की। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंजूरी दे दी है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने प्रदेश के 3 जिला न्यायिक अधिकारियों चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल को जज नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने और अधिसूचना जारी होने के बाद ये नियुक्तियाँ प्रभावी होंगी। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव परिणाम ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति की दिशा व दशा स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा के पक्ष में अभूतपूर्व जनादेश देकर ये संकेत दिया है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का समय निकट है। रणधीर शर्मा ने कहा कि ये केवल चुनावी जीत नहीं है बल्कि जनता द्वारा कांग्रेस के खिलाफ सुनाया गया अविश्वास प्रस्ताव है। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है एफएम शिमला। 8 बजने को है समाचार के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।
2: लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
6: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शॉ।

0: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
1: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिससे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
4: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
3: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
5: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। MSME स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
3: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल

0: की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
2: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जाँच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
1: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख

0: रुपये और घायलों को 50,000 रुपये अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋतव्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच, अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोकसत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 73rd प्लीनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन शिलोंग। U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahe today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event virtually in the evening. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Ms. Rodriguez arrived yesterday on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, Science and Technology, Communication and Information and Transportation. Ms. Rodriguez had visited India in her earlier capacity as Foreign Minister in 2015 and as Vice President in 2019, 2023, 2024 and 2025. More from our correspondent.
3: The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. The Venezuelan delegation will also visit several sites connected with energy, pharmaceuticals and auto sectors to gain insights into India's technological and industrial capabilities and to explore opportunities for collaboration. India has been an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian PSUs have made significant investment in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore opportunities for further enhancing their presence. According to the Ministry of External Affairs, India and Venezuela enjoy warm and friendly relations underpinned by cooperation in the energy sector, trade and shared commitment to the Global South. It said that the visit is expected to further strengthen bilateral ties and deepen

0: scored the match-winning goal in the 58th minute to help India move into their first SAF Women's Championship final in 6 years. Five-time champions India will now face defending champions Bangladesh in the title clash on Saturday at 6:30 p.m. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Anuja. The headlines in all the dailies are full with the tragic news of one of the deadliest fires in Delhi in recent years. Hindustan Times writes, safety gaps spark another tragedy as 21 die in blaze that swept through the five-story hotel located in a narrow lane crowded locality in South Delhi. An editorial in The Hindu writes on how India scaled its startup industry from 2016 to 2025. The Startup India scheme has truly come of age due to the supportive policy environment, robust startup growth and a positive investment climate. Cabinet backs ordinance to ease tax rules for foreign investors in some securities, states the Times of India. The Economic Times comes up with a story on domestic travel demand remains strong despite rising fuel costs and airfares and fewer flights under the headline Summer Travel Plans Take No Break. And finally, the Tribune writes about a memorable moment when the Tibetan spiritual leader, the 14th Dalai Lama, was presented with a Grammy Award won by his audiobook Meditations, The Reflections of His Holiness. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah to chair 73rd plenary session of Northeastern Council in Shillong. U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahi today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh
3: 3.7 MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला 8:30 हुए हैं लीजिए पेश है FM न्यूज़ हेडलाइंस
4: नमस्कार FM न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए प्रदेश के चार नगर निगमों में मेयर पद अनारक्षित घोषित कर दिया है इसमें सोलन पालमपुर मंडी और धर्मशाला में मेयर पद आगामी 5 साल के लिए अनारक्षित होगा शहरी विकास विभाग द्वारा जारी इस अधिसूचना के बाद इन नगर निगमों में मेयर पद के लिए अब किसी भी वर्ग का पात्र उम्मीदवार मेयर बन सकेगा राज्य सरकार ने हिमकेयर कार्ड बनवाने के लिए पोर्टल खोल दिया है लोग अब अपने कार्ड बनवा सकते हैं सरकार ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे जल्द अपना कार्ड बनवाकर इसका लाभ लें सरकार ने हिमकेयर कार्ड बनवाने और नवीनीकरण के लिए साल में सिर्फ 4 महीने तय किए हैं लाभार्थी मार्च जून सितंबर और दिसंबर में ही हिमकेयर योजना के लिए आवेदन या फिर नवीनीकरण कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जून और जुलाई में आयोजित होने वाली मैट्रिक्स और जमा 2 की सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट सुधार और अतिरिक्त विषय की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है बोर्ड द्वारा जारी नए शेड्यूल के अनुसार छात्र बिना किसी लेट फीस के 5 जून 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं बोर्ड के अनुसार अगर कोई छात्र इस तारीख तक आवेदन नहीं कर पाता तो उसे 10 दिन तक ₹1,000 लेट फीस के साथ आवेदन करने का आखिरी मौका दिया जाएगा सभी पात्र छात्र को अपने फॉर्म केवल अपने संबंधित स्कूलों या संस्थानों के माध्यम से ही ऑनलाइन जमा करवाने होंगे लाहौल स्पीति जिला की शांशा पंचायत को सामाजिक न्याय व सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश भर में प्रथम स्थान मिला है शांशा पंचायत को प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ये पुरस्कार कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पंचायत प्रधान प्रशांत को प्रदान किया गया भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा सोलन में 111 घंटों की हैकथॉन का आयोजन किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के शोधकर्ताओं ने भाग लिया भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के प्रभारी डॉक्टर नवनीता ने बताया कि इस हैकथॉन में पुराने समय में किस तरह से जीव जंतुओं का संरक्षण व संवर्धन किया जाता था उस पर विस्तृत चर्चा की गई उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य भविष्य में नवीनतम व पौराणिक तरीकों से जीव जंतुओं का संरक्षण करना है प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत स्वगणना अभियान चलाया जा रहा है यह अभियान 1 जून से 15 जून तक प्रदेश भर में संचालित किया जाएगा इसके माध्यम से नागरिक डिजिटल पोर्टल पर स्वयं अपनी जनगणना संबंधी जानकारी

0: दर्ज कर सकेंगे। इसी कड़ी में बिलासपुर में उपायुक्त राहुल कुमार ने इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। उन्होंने जिलावासियों से स्वगणना सुविधा का लाभ उठाकर अपने और अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कराने का आग्रह किया। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
2: वन जीरो थ्री पॉइंट सेवन मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। लीजिए पेश है लोक संगीत। लोक संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाजों और भावनाओं के सच्चे दर्पण हैं। इन गीतों में कहीं प्रेम की मिठास है, कहीं बिछड़ने का दर्द, तो कहीं प्रकृति की सुंदरता का अद्भुत वर्णन है। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं नीलम गंधर्व को।

0: नमस्कार, मैं नरवीर सिंह, एडिशनल एसपी हिमाचल प्रदेश पुलिस। हिमाचल प्रदेश पुलिस नशा के खिलाफ जंग में निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश पुलिस अन्य विभागों के साथ 5 जून को रिज मैदान शिमला से मिनी मैराथन का आयोजन कर रही है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और आकर्षक इनाम 10 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की रेस में दौड़ में प्राप्त करें और जन जागरण के लिए आप अपना पार्टिसिपेशन दे करके एक संदेश दे ताकि हिमाचल प्रदेश पुलिस इस कुकृति को लड़ने में सक्षम होकर के आपके सहयोग से कार्य कर सके। जय हिंद, जय भारत।
1: FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं लोक संगीत। लीजिए सुनिए कृष्णलाल सहगल को।

0: लोक संगीत में अभी बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 8:45 हुए हैं। रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आइए सुनते हैं स्वस्थ और संतुलित आहार विषय पर डॉक्टर अमित सचदेवा से सपना ठाकुर की बातचीत।
1: नमस्कार, रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के आज के संग में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहना हर किसी की प्राथमिकता है, लेकिन सही खान पान की जानकारी का अभाव कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। स्वस्थ और संतुलित आहार हमारे जीवन में कितना जरूरी है, इसी विषय पर हम बात करेंगे अपने विशेषज्ञ से। आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अमित सचदेवा। आप इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल शिमला में कम्युनिटी मेडिसिन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर अमित सचदेवा, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद मैम।
1: डॉक्टर अमित, सबसे पहले इसी बात पर आते हैं कि एक आम इंसान के लिए हेल्दी डाइट या संतुलित आहार की सही परिभाषा क्या है?
2: संतुलित या हेल्दी डाइट जितना देखने में सिंपल है, इतना सिंपल है नहीं। इम्पोर्टेंस इसकी क्या है कि 50% से अधिक बीमारियां केवल और केवल हमारी डाइट से जुड़ी है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी। हेल्दी डाइट क्या? जिसमें प्रोटीन, जिसमें फैट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, जिसमें विटामिन मिनरल संतुलित मात्रा में हो। जैसे अभी IPL चला है, IPL में कोई टीम जीतती है तो उसको बैट्समैन भी अच्छे चाहिए, बॉलर भी अच्छे चाहिए, फील्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो जिस टीम में ये सब चीजें होती है वो टीम जीतती है। इसी तरह हमारी डाइट में भी जब हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन मिनरल उचित मात्रा में लेंगे, अच्छी मात्रा में लेंगे, तब हम स्वस्थ रहेंगे।
1: तो डॉक्टर अमित सचदेवा, क्या हर व्यक्ति के लिए डाइट प्लान अलग होना चाहिए या कुछ बुनियादी नियम सबके लिए लागू होते हैं?
2: जो बुनियादी नियम है, जो सर आपने बोला कि जो बुनियादी नियम है, जो हमारे न्यूट्रिशन गाइडलाइंस है, उसमें ये कहा गया है, हेल्दी प्लेट कॉन्सेप्ट दिया गया। हेल्दी प्लेट क्या है कि हमारी आधी प्लेट फ्रूट्स और वेजिटेबल की होनी चाहिए। दिन में हमें 4-5 बार फ्रूट्स और वेजिटेबल की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। बाकी आधी प्लेट में हमें कार्बोहाइड्रेट, हमें फैट, मिनरल्स, विटामिन और बाकी चीजें होनी चाहिए, लेकिन हमारी आधी डाइट हमारी फ्रूट्स और हरी सब्जियों से होनी चाहिए।
1: डॉक्टर अमित, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं संतुलित आहार यानी हेल्दी डाइट की बात कर रहे हैं, तो देखने में ये आता है कि कई लोग एकदम से अचानक खाना कम कर देते हैं, तो ये क्या वजह है?
2: खाना कम करना किसी समस्या का हल नहीं है। अगर गाड़ी चलानी है तो उसके लिए पेट्रोल चाहिए ही चाहिए, आप पेट्रोल नहीं बंद कर सकते। हमें क्या चाहिए कि हम उचित मात्रा में अच्छी चीजें खाएं। हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जैसे मैंने कहा वो खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, नट्स खाने चाहिए, साबुत अनाज खाना चाहिए, ये सारी चीजें जिसमें हमें फैट भी मिले, विटामिन मिनरल्स भी मिले, फाइबर्स भी मिले। हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए। किसी चीज को छोड़ना या ज्यादा खाना अच्छी बात नहीं है। क्या देखा गया, हमने देखा है कि कुछ लोग ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं। अब ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं तो गाड़ी स्टार्ट ही कैसे होगी, हमें तेल चाहिए, तो हमें ब्रेकफास्ट उचित मात्रा में करना है। कई फिर डाइट स्किप करते हैं, या जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं वो लंच बहुत ज्यादा कर लेते हैं, तो वो फिर डाइट सही नहीं रहती है। हमें उचित मात्रा में सुबह भी, लंच में भी और डिनर में भी उचित मात्रा का सेवन करना,
1: यानी मात्रा सही रहनी चाहिए हमारे आहार की। डॉक्टर अमित सचदेवा, बात आती है

0: कि हमारी डाइट में कितना नमक शामिल होना चाहिए, कितना घी शामिल होना चाहिए, कितना हम कहते हैं कि चीनी की मात्रा शामिल होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए कि स्वस्थ रहने के लिए हमारा संतुलित आहार क्यों जरूरी है और इसमें कितने कितने अनुपात में हमें ये सब चीजें लेनी चाहिए।
1: ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लोग हमें ओपीडी में आके ये क्वेश्चन पूछते हैं कि नमक, चीनी और घी कितना खाना चाहिए। इतनी बीमारियां, जब आपने देखा होगा आजकल ब्लड प्रेशर के मरीज बढ़ रहे हैं, डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं और मोटापे के मरीज भी बहुत हो रहे हैं। कारण ये है कि हमारी डाइट में जितना हमें नमक, चीनी और फैट चाहिए, लोग उसे उचित मात्रा में नहीं ले रहे और अत्यधिक मात्रा में ले रहे हैं। नमक की बात करें तो हमें 5 ग्राम से ज्यादा, 5 ग्राम कैसे मेजर करें, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच नमक पूरे डाइट में, पूरे दिन में ज्यादा नहीं लेना चाहिए, उससे कम ही रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो सोडियम लेवल बढ़ जाता है और उससे ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम चीनी की बात करें तो 4-5 चम्मच से ज्यादा चीनी पूरे दिन में नहीं लेनी चाहिए। अगर हम घी की बात करें या फैट की बात करें या तेल की बात करें, जितने भी चीजों में, चाहे फैट है, चाहे वो तेल में है, मक्खन में है, इन सब की क्वांटिटी 4-5 चम्मच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 20-25 ग्राम से ज्यादा ये चीजें नहीं खानी चाहिए। पर देखा ये क्या है, हम इससे जितनी खानी चाहिए उससे डबल मात्रा में हम लेते हैं, इस कारण जो ये बीमारियां हैं ये बढ़ रही है।
0: डॉक्टर अमित सचदेवा, बात ये आती है कि वजन कम करने के लिए कई बार लोग कई तरह की डाइट लेते हैं, तो क्या ये सुरक्षित रहती है?
1: वजन बढ़ता कैसे है, एक तो है बीमारियों के कारण बढ़ता है, दूसरा डाइट कैसी हो। तो वजन कम करने में हमें डाइट एकदम से नहीं करनी है कम, और एकदम से वजन भी नहीं घटाना है, हमें 1-2 किलो पर मंथ में वेट घटाते घटाते धीरे धीरे घटाना है, पर एकदम से वेट रिड्यूस नहीं करना है और डाइट बिल्कुल नहीं छोड़नी है। हमें क्या करना है, हमें कार्बोहाइड्रेट ऐसे लेने हैं, फैट ऐसा लेना है, हमें उनकी मात्रा कम करनी है कि ज्यादा फैट ना खाएं, लेकिन जितना आवश्यक कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन मिनरल्स हैं वो खाने हैं। हाँ, हमें और क्या कर सकते हैं, हमें वर्जिश करनी है, हमें व्यायाम करना है, हमें दौड़ना है, ताकि जितना हम खा रहे हैं वो कैलोरी बर्न हो। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे, संतुलित आहार लेंगे, फैट को कम करेंगे, तो हम अपना वजन कम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर अमित, सबसे जरूरी बात ये आती है कि संतुलित आहार के साथ हमें कितना पानी जीवन में शामिल करना चाहिए, यानी दिन में कितना पानी हमें पीना चाहिए, कितनी मात्रा होनी चाहिए पानी की एक अच्छी डाइट के साथ।
1: देखिए, अगर एक इंसान को स्वस्थ रहना है तो डाइट तो जरूरी है, हमें फैट, विटामिन, मिनरल, फ्रूट, वेजिटेबल हम खा रहे हैं, पर पानी नहीं छोड़ना है। पानी भी हमें 1.5-2 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन क्या देखा गया है, लोग पानी पीते ही बहुत कम है। अगर पानी नहीं पियेंगे तो हमारा हाइड्रेशन मेंटेन नहीं होगा, हमारी किडनी से रिलेटेड बीमारियां, हमें यूटीआई से रिलेटेड चीजें बढ़ जाती हैं, तो हमें पानी 1.5-2 लीटर पीना है, ताकि हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो यूरिन के थ्रू निकल पाए।
0: आजकल जंक फूड और फास्ट फूड का भी चलन बढ़ रहा है, तो ये हमारे सेहत के लिए कितना हानिकारक है?
1: जंक या फास्ट फूड दोनों ही सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। क्या होता है, इसमें प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं, नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है पैकेट में, चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, पाम ऑयल आजकल चला है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ट्रांस फैट बहुत ज्यादा होता है, तेल को बार बार फ्राई करने से उसमें ट्रांस फैट कंटेंट बढ़ जाता है, ये सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, हमें इनका सेवन नहीं करना चाहिए और जो कर रहे हैं उनको बहुत ही सीमित मात्रा में करना चाहिए। हम घर में नई नई डिश ट्राई करें, हम पोहा खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, डोसा खा सकते हैं, फर्मेंटेड चीजें, अंकुरित आहार, ये चीजें हमें खानी चाहिए, उसमें हरी सब्जियां हम काट काट के दे दें, फ्रूट्स डिफरेंट कर लें, तो हमें घर की वैरायटी बढ़ानी चाहिए, जंक फूड से हमें परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे बीपी, शुगर, हार्ट से रिलेटेड डिजीज सब बढ़ रही है।
0: तो डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर वालों का क्या संतुलित आहार रहना चाहिए, किस तरह की डाइट उनकी होनी चाहिए?
1: जैसा हम नॉर्मल रूटीन खाते वैसी ही डाइट उनकी होनी चाहिए, पर जो हाइपरटेंशन के मरीज है उनको नमक कम कर देना चाहिए, जैसे मैंने कहा 5 ग्राम उनको उससे भी आधा कर देना चाहिए, फ्रूट सब्जियां ज्यादा खाने चाहिए, व्यायाम ज्यादा करना चाहिए, ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो। और डायबिटिक के मरीजों के लिए सबसे जरूरी है कि ज्यादा मीठे वाली चीजें बिल्कुल कम खाएं, जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स एक होता है, आप हर चीज का ग्लाइसीमिक इंडेक्स नेट पर देखें, और जो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स की चीजें हैं, जो एकदम शुगर की स्पाइक नहीं बढ़ाती, वो खाने चाहिए। छोटी छोटी डाइट, स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट कहते हैं, कि जहां पे हम 4 रोटी खाते हैं वहां पे हम 2 रोटी एक बारी में खाएं, बार बार खाएं, टाइमली इंटरवल पे खाएं, दवाई का जो सेवन का है वो समय पे करें, और अपनी डाइट में मीठा जो

0: है वो कम करें,
1: कम रखें। और मौसमी फलों और सब्जियों की क्या अहमियत रहती है हमारे शरीर के लिए?
0: हमें खाने ही मौसमी फ्रूट और सब्जियां चाहिए, हमें बड़ी बड़ी महंगी सब्जियां, बड़े बड़े महंगे फ्रूट्स हमें नहीं खाने। हमें जो नॉर्मल किचन में, नॉर्मल बाजार में जो फ्रूट सब्जियां हैं वो ही खानी है।
1: और बच्चों के लिए क्या आहार रहेगा, किस तरह का संतुलित आहार होना चाहिए ताकि उनको सही ताकत मिल सके?
0: बिल्कुल सही बात है कि जब हमारी नींव मजबूत होगी तो इमारत भी अच्छी बनेगी। बच्चों में क्या देखा गया, एनीमिया के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक तरफ एनीमिया है लेकिन बच्चे जंक फूड ज्यादा खाने के कारण हमारे मोटापे का भी शिकार हो रहे हैं। तो उनके लिए मेरी सलाह यही है कि अपनी डाइट में जंक और फास्ट फूड को बिल्कुल ही बंद करें, उसकी बजाय हरी सब्जियां खाएं, अंकुरित आहार खाएं, जो नट्स है ये सारी चीजों को उपयोग करें, लेकिन जंक फूड बिल्कुल ना खाएं क्योंकि उसमें प्रोसेस चीजें होती है, नमक ज्यादा होता है, मीठा ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है, तो उनका सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, एक और चीज जो आजकल के बच्चों में है, बच्चे टीवी देख के बहुत खाते हैं, तो जो टीवी देख के ट्रोल खत्म हो जाता है,
1: टीवी देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं, क्योंकि परिवार का व्यवहार भी उस तरह का होता है, बड़ों को देखकर बच्चे ऐसा ही सीखते हैं।
0: अगर घर में घिया तोरी टिंडे बने हैं तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो भी सेवन करें। जब पेरेंट्स वो चीजें खाएंगे तो बच्चे भी वो खाएंगे। अगर पेरेंट्स ही जंक फूड खाएंगे, पेरेंट्स ही पिज्जा खाएंगे तो आप बच्चों को नहीं रोक सकते। तो घर में मेहनत करें, घर में सब्जियों को चॉप करके, अगर पालक खानी है तो पालक का परोंठा दे दिया, ऐसी चीजें, बच्चों को बेसन देना तो बेसन का चीला बना के दे दिया। तो इस तरह सब्जियों और फ्रूट्स की मात्रा घर में बढ़ाएं, जंक फूड बंद करें और स्क्रीन के साथ खाना बिल्कुल ही नहीं खाना है क्योंकि बच्चे ओवर ईटिंग कर लेते हैं और उस मोटापे का शिकार होते हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक समय होता था जब सारा परिवार इकट्ठा होकर खाना खाता रहा, तब यही वजह थी कि घर से संस्कार आते थे, अच्छी आदतें घर से मिलती थी, तो ये कहीं ना कहीं छूट रहा है हमारे से।
0: आपने देखा होगा बच्चों के आजकल बाल झड़ जाते हैं, चश्मा जल्दी लग जाता है, तो क्या है, बच्चे विटामिन ए वाली चीजें नहीं खा रहे हैं, हड्डियां कमजोर है, विटामिन डी वाली चीजें नहीं खा रहे हैं। तो हमें इन चीजों को डाइट में शामिल करना है और कोशिश करनी है एक इंद्रधनुषी थाली, इंद्रधनुषी थाली जिसमें सब रंग हो, लाल रंग का भी कोई चीज हो, हरी सब्जियां भी हो, व्हाइट कलर भी हो, सब कलर का रंग बिरंगी थाली बच्चों को खिलाएं, जिससे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, फैमिली भी स्वस्थ रहेगी। और हाँ, खाने के वक्त टीवी बिल्कुल नहीं। जैसे उम्र बढ़ती है हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है कम हो जाता है, तो हमें बुजुर्गों को हैवी डाइट नहीं देनी है, ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें, ज्यादा फैट वाली चीजें जो उनका डाइजेशन ना हो नहीं देनी है। हमें उनको हल्का आहार देना है, जो हम घर में खाते हैं चाहे दाल सब्जी खिचड़ी वो ही देनी है, बाहर की चीजों से नहीं देना है। एक चीज और उनमें ध्यान रखनी है कि रात को सोने से कम 2 घंटे पहले खाना खत्म कर लेना है, बिल्कुल सोते वक्त खाना नहीं देना है ताकि डाइजेशन बना रहे। अपनी डाइट में विटामिन सी वाली चीजें जरूर ऐड करनी है ताकि डाइजेशन बना रहे।
1: और सबसे बड़ी बात ये है कि समय का भी महत्व है कि खाना किस तरह से खाना चाहिए, कितने अंतराल के बाद इसे लेना चाहिए।
0: अंतराल के साथ भी लेना चाहिए, बार बार खाने बॉडी को रेस्ट भी देना है। जैसे रात का हम कहते हैं 6-7 बजे तक, सूर्यास्त के समय तक खाना खा लेना चाहिए ताकि उसको डाइजेशन का टाइम बने। रात को लेट खाना खाने से खाने का डाइजेशन नहीं होता और कोलेस्ट्रोल फैट नाड़ियों में जमा हो जाता है और एसिड रिफ्लेक्स की भी, गैस बनने की भी समस्या ज्यादा रहती है। तो हमें अपना खाना जल्दी खत्म कर लेना चाहिए।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए आप सबसे क्या कहेंगे और अपनी दिनचर्या में किस तरह का संतुलित आहार हमें शामिल करना चाहिए, क्या संदेश रहेगा आपका?
0: सबसे इम्पोर्टेंट संदेश यही है कि बाजार से जो चीजें मिलती है जंक फास्ट फूड का सेवन कम करें, अपनी डाइट में नमक का जो सेवन है वो कम करें, 1 चम्मच से ज्यादा पूरे दिन में नमक नहीं खाना है, चीनी और फैट का सेवन कम करें, प्रोसेस चीजें जिसको बार बार तलना पड़ता है वो चीजें कम करें और फ्रूट्स और वेजिटेबल की मात्रा बढ़ाएं। टीवी के साथ खाना बिल्कुल ही नहीं खाना है और सबसे जरूरी जैसे आपने कहा है, जैसा पेरेंट्स करेंगे वैसा बच्चे करेंगे,
1: यानी सही आदतें और संस्कार बच्चे अपने माँ बाप से ही लेते हैं। डॉक्टर अमित सचदेवा, संतुलित आहार के साथ साथ एक्सरसाइज का क्या महत्व रहेगा हमारे जीवन में?
0: जैसे हम कहते हैं इनपुट और आउटपुट, इनपुट हुआ जो हमने खाना लिया, जितना इनपुट आएगा हमें आउटपुट भी देना जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योगा, ये हमारे दिनचर्या का पार्ट होने चाहिए। जो

0: गाइडलाइंस के अनुसार हमें दिन में प्रतिदिन एटलीस्ट 30 मिनट्स हमें एक्सरसाइज या व्यायाम या योगा या चलना, हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मोटापे का शिकार भी हो सकते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी, डाइट के साथ, ये एक ही गाड़ी के दो पहिए।
1: डॉक्टर अमित सचदेवा, आज हमने स्वस्थ और संतुलित आहार से संबंधित जानकारी आपसे प्राप्त की। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका धन्यवाद। स्वस्थ रहें, संतुलित आहार लें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसी के साथ रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। आगे लेते हैं, नमस्कार।
2: रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे स्वस्थ और संतुलित आहार। इस विषय पर डॉक्टर अमित सचदेवा से सपना ठाकुर की बातचीत। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है FM शिमला।
3: शिमला की वादियों से आपके दिलों तक आ गया है आपका अपना भरोसेमंद साथी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी FM शिमला।
4: कहां ये यादियां थी तेरे मिलने से पहले।
3: खबरें, संगीत, संस्कृति और मनोरंजन का बेमिसाल

0: पर्यटन की बात हो या संस्कृति की, हर मुसाफिर की जो आवाज बनता है, जुड़िए उस आवाज से जो हिमालय की गूंज जैसी है। आकाशवाणी FM शिमला, शुभवाणी, लाभवाणी, ये है जन जन की वाणी, आकाशवाणी।
1: FM शिमला पर लीजिए पेश है फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं विश्वात्मा फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज़ है साधना सरगम की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार विजू शाह।

साजन फिल्म का गीत सुनिए। आवाज़ है SP बालासुब्रमण्यम की, गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। तो चलिए अब आपको बता दें आज आकाशवाणी शिमला से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण। 9:30 पर आप सुनेंगे सुरबेला कार्यक्रम। रिमझिम कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे सुबह 10:00। लोक संगीत आप सुन सकते हैं 11:15 पर। 2:30 पर हिमगुंजन। रात 8:00 धारा रे गीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग पेश किया जाएगा 11:30 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 12:10, 2:45, रात 8:15 पर। दोपहर 12:20 पर महिला सम्मेलन कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुनेंगे 1:10 पर। 2:00 आप सुनेंगे सुनहरी किरणें कार्यक्रम। शाम 7:10 पर केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम और 9:30 पर कंट्री वाइड, 9:45 पर इनसाइट्स कार्यक्रम और 10:00 प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। गजलों पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता पेश किया जाएगा रात 9:15 पर। यह आज आकाशवाणी शिमला से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल

0: प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से गुजरात के अहमदाबाद में होगी आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे शिरकत। शिमला शहर सहित प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में भीड़ कम करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, प्राकृतिक खेती उत्पादों के लिए अलग ब्रांड बनाकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होगी बिक्री। भारत सरकार के खेल मंत्रालय के विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत 250 स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ। हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के 43 सीमावर्ती गांवों में हो रहा आयोजन। और कांगड़ा जिला में औषधीय फसल ब्रह्मी खेती से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने इसे योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। शिमला शहर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों और जिला मुख्यालयों में भीड़ कम करने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक कल शिमला में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी उपस्थित रहे। इस दौरान शिमला शहर में भीड़ कम करने के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई, जिससे भीड़ भाड़ वाले चिन्हित स्थानों की समीक्षा कर संबंधित विभागों को उचित निर्देश दिए गए हैं। समिति ने शहर के भीतर ट्रैफिक में अवरोध और भीड़ का कारण बनने वाली मंडियों को शिमला के बाहर नवनिर्मित फोर लेन सड़क मार्ग पर स्थित उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित करने पर भी चर्चा की। बैठक में बीबीएन क्षेत्र में एक नई टाउनशिप योजना और चंडीगढ़ शहर की तर्ज पर एक सैटेलाइट टाउन की स्थापना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में भूमि पूलिंग नीति को पंजाब जैसे अन्य राज्यों के अनुरूप करने के निर्णय पर विचार किया गया। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों के चलते 73,000 से अधिक किसान परिवार प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। ये जानकारी देते हुए कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि किसानों ने प्राकृतिक खेती के प्रति उत्साह बढ़ा है और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य भी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 732 किसानों ने 6,40,00,000 रुपये मूल्य की गेहूँ और मक्की की फसल की खरीद की गई है, जिसमें इस वर्ष 4 गुना से अधिक वृद्धि की उम्मीद बनी है। चंद्र कुमार ने बताया कि सरकार प्राकृतिक खेती से बने उत्पादों के लिए अलग ब्रांड विकसित करने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित बड़े विपणन नेटवर्क से जुड़ने की दिशा में काम कर रही है, ताकि प्रदेश के ये उत्पाद देश विदेश के लोगों तक ऑनलाइन माध्यम से पहुँचाए जा सके। ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक कार्य समूह की दूसरी बैठक आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक

0: में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में वरिष्ठ राजनयिक, नीति निर्माता और संस्कृति विशेषज्ञ सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने और आपसी साझेदारी को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। उपमंडल नादौन के बल्ह डूहक गांव की अनु ने सिलाई कढ़ाई के हुनर को आजीविका का साधन बनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। पुरानी सिलाई मशीनी से शुरू हुआ उनका सफर आज उन्हें प्रतिमाह 10,000 से 12,000 रुपए की आय दिला रहा है। अनु अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए भी प्रेरित कर रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
1: यदि मन में कुछ करने का जज्बा हो तो सीमित संसाधनों से भी आत्मनिर्भरता की राह बनाई जा सकती है। उपमंडल नदौन के बल्डू गांव की अन्नु ने सुई धागे के हुनर से ही इस बात को सच साबित कर दिखाया है कि घर की जिम्मेदारियों के बीच अन्नु ने सिलाई के हुनर को अपनी आजीविका का साधन बनाया और आज इसी काम से हर महीने 10 से 12 हजार रुपए की आय अर्जित कर रही है। अन्नु ने न केवल खुद आत्मनिर्भरता बनी है बल्कि गांव के अन्य महिलाओं और लड़कियों को भी सिलाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। त्योहारों और शादियों के सीजन में उनके पास काम की इतनी मांग रहती है कि समय निकालना ही मुश्किल हो जाता है। अन्नु की ये पहल न केवल उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही है। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: धर्मगुरु दलाई लामा को संगीत की दुनिया के प्रतिष्ठित और सर्वोच्च सम्मान ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान ने मैक्लोडगंज में प्रदान किया। ये अवार्ड उन्हें ऑडियो बुक मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए मिला है। इस ऑडियो बुक में भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ करुणा, शांति और मानवता की एकता के विचारों को प्रस्तुत किया गया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNewsShimla_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। युवा मामले व खेल मंत्रालय ने मेरा भारत युवा के माध्यम से विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2026 के पहले चरण का शुभारंभ किया है। ये एक अग्रणी युवा नेतृत्व वाली पहल है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर भागीदारी को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और भारत के सीमावर्ती गांवों में सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम दो चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा जिसमें भाग लेने के लिए कुल 500 स्वयंसेवकों का चयन किया गया है। विभिन्न राज्यों से चयनित इन स्वयंसेवकों को लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के चिन्हित सीमावर्ती गांवों में दो चरणों में तैनात किया जा रहा है। प्रथम चरण में 250 स्वयंसेवक 43 गांवों में गहन गतिविधियों के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जबकि शेष 250 स्वयंसेवक इस महीने के अंत तक 50 गांवों में द्वितीय चरण की गतिविधियों में शामिल होंगे। कांगड़ा के बैजनाथ उपमंडल के घानक गांव की महिलाएं औषधीय फसल ब्राह्मी की खेती के जरिए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही है। ये पहल अब ग्रामीण महिलाओं के लिए आय और रोजगार का मजबूत माध्यम बन चुकी है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जिला कांगड़ा के बैनाथ उपमंडल के धानक गांव की महिलाएं औषधीय फसल ब्रह्मी की खेती के जरिए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। CSIR IHBT के तकनीकी सहयोग से शुरू हुई ये पहल अब ग्रामीण महिलाओं के लिए आय और रोजगार का मजबूत माध्यम बन चुकी है। तकनीकी मार्गदर्शन मिलने के बाद स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने छोटे स्तर पर इसकी खेती शुरू की। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद उन्होंने प्रयास जारी रखे और आज ब्रह्मी गाँव की पहचान बन चुकी है। महिलाएं अब ब्रह्मी की खेती के साथ साथ इसके मूल्य वर्धित उत्पाद भी तैयार कर रही हैं। ब्रह्मी से कैंडी, शरबत, स्वास्थ्य वर्धक पेय और अन्य उत्पाद बनाए जा रहे हैं जिन्हें बाजार में अच्छी मांग मिल रही है। महिलाओं की इस पहल को बाजार से भी अच्छा समर्थन मिला है। स्थानीय स्तर पर खरीद की व्यवस्था बनने के बाद उत्पादन लगातार बढ़ा है। ताजा ब्रह्मी 200 से 250 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है जबकि सूखी ब्रह्मी का मूल्य 1 लाख रुपए प्रति क्विंटल तक पहुँच जाता है। आज धानक गाँव की ब्रह्मी हरियाणा समेत कई राज्यों में भेजी जा रही है जहां इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं, शरबत और स्वास्थ्य वर्धक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। बढ़ती मांग के चलते अधिक महिलाएं इस खेती से जुड़ रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत व जिला परिषद चुनावों के सभी उम्मीदवारों को अपने चुनावी खर्च का पूरा ब्यौरा 30 जून तक निर्वाचन आयोग को देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने

0: सभी उम्मीदवारों के लिए ये ब्यौरा अनिवार्य किया है। ऐसा न करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें आयोग भविष्य के लिए इन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। एचपी शिवा परियोजना के तहत बागवानों को प्लम की खेती से जोड़ने का प्रयास सफल रहा। मंडी जिले के ब्रह्ममुखी और खग्रांगो क्लस्टर में इस वर्ष प्लम का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ है, जिससे बागवानों की आय में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बागवानी विभाग द्वारा किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण, सिंचाई सुविधा और बाजार से जोड़ने में सहायता की जा रही है, जिसके तहत महाराष्ट्र की एक एग्री सप्लाई कंपनी के जरिए बल्ह और सुंदरनगर क्षेत्र के बागवानों द्वारा उगाया गया उच्च गुणवत्ता वाला प्लम महाराष्ट्र के बाजारों तक पहुंचाया गया है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, धर्मशाला, मंडी, पालमपुर, सोलन में मेयर पद ओपन। पिछली बार नगर निगम सोलन व धर्मशाला में मेयर पद महिला, मंडी पालमपुर में थे अनारक्षित। दैनिक जागरण लिखता है, चार नगर निगमों में मेयर पद अनारक्षित, 5 वर्ष होगा कार्यकाल। पंजाब केसरी के शब्द है, पंजाब जाने वाले हिमाचल के सभी वाहनों से वसूले 10 से 100 रुपये। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ समारोह पर दिव्य हिमाचल ने खबर दी है, सोमवार तक होगी जिला परिषद BDC की शपथ, पंचायतों के लिए अभी CM के फैसले का इंतजार। दैनिक भास्कर की एक खबर है, हिमाचल हाईकोर्ट को मिलने जा रहे 3 नए जज। हिमाचल दस्तक के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 न्यायिक अधिकारियों चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा व योगेश जायसवाल के नाम किए फाइनल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से गुजरात के अहमदाबाद में होगी आयोजित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे शिरकत। शिमला शहर सहित प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में भीड़ कम करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, प्राकृतिक खेती उत्पादों के लिए अलग ब्रांड बनाकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होगी बिक्री। भारत सरकार के खेल मंत्रालय के विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत 250 स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ। हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के 43 सीमावर्ती गांवों में हो रहा आयोजन। और कांगड़ा जिला में औषधीय फसल ब्राह्मी की खेती से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 PM। नमस्कार।
1: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला पर भी प्रसारित किए जा रहे थे। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 MHz FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। ये समय है कार्यक्रम कुदरत के रंग का। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी रेडियो हमसफर रीना वर्मा। हर मंजिल की अपनी राह होती है, हर दिल की अपनी चाह होती है। दुनिया में चाहे खुशी हो या ना हो, हर टूटे दिल को मिलने की चाह होती है। जी हाँ दोस्तों, और हमें भी चाह होती है आपसे बातें करने की, और हमें पता है कि भाई आप भी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं हमारे इस कार्यक्रम का। क्योंकि देखिए ना, फुर्सत के लम्हों में हर कोई जाना चाहता है किसी ऐसी जगह जाकर जहाँ जाकर मन को एकदम खुशी मिले। और सबके मन में ये ख्याल ज़रूर आ रहा होगा कि आज FM शिमला पर कहाँ की सैर कर रहे हैं। हिल स्टेशन को मनोरम पहाड़ी इलाका कहते हैं, और भारत में पहाड़ियों की विशालतम लंबी सुंदर और अद्भुत श्रृंखलाएं हैं। एक ओर जहां विंध्याचल सतपुड़ा की

पहाड़ियाँ हैं तो दूसरी ओर आरावली की पहाड़ियाँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में एक से एक शानदार पहाड़ हैं, पहाड़ों की श्रृंखलाएं हैं और सुंदर एवं मनोरम घाटियाँ हैं। गर्मियों में यहाँ पर घूमना बहुत ही शानदार और यादगार है। कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं डलहौजी हिल स्टेशन की।

0: मैं लेडी कांस्टेबल आनंदनी हिमाचल प्रदेश पुलिस में पिछले 4 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हूं। इसी बीच हम बहुत से विद्यार्थियों, युवाओं और पेरेंट्स से मिलकर एंटी चिट्टा अवेयरनेस की बातें करते आ रहे हैं। इसमें हमने देखा है कि जब तक किसी घर में किसी घर का बच्चा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तब तक समझते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। एंटी चिट्टा अवेयरनेस प्रोग्राम सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है, यह एक जंग है ड्रग्स के खिलाफ। वो मेरा सभी से अनुरोध है कि वो 5 जून को रिज पर सुबह 6:30 बजे आके मिनी मैराथन में पार्टिसिपेट करे और इस अवेयरनेस को पूरे प्रदेश में फैलाए। जय हिंद, जय हिमाचल।
1: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुदरत के रंग। डलहौजी हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत हिल स्टेशन है और यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन पंजाब का पठानकोट है। यहाँ से उतरकर बस या टैक्सी से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। चंडीगढ़ होते हुए कांगड़ा जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस जगह की खूबसूरती से प्रभावित होकर लॉर्ड डलहौजी ने इसे 18वीं सदी में वहाँ के राजा से खरीद लिया था और उसका नाम खुद के नाम पर ही रख दिया था।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
3: FM शिमला 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुदरत के रंग। देवदार और चीड़ के घने जंगलों से घिरा डलहौजी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और मनमोहक वादियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की ठंडी हवाएं, बादलों से बातें करते पहाड़ और दूर दूर तक फैली हरियाली हर आने वाले का मन मोह लेती है। डलहौजी चंबा घाटी का हिस्सा है और सर्दी के मौसम में यहाँ बर्फ का मजा लिया जा सकता है, तो गर्मी के मौसम में यहाँ आना मन को सुकून देता है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर का महीना होता है।

डलहौजी से थोड़ी ही दूरी पर खजियार झील है, जिसे देखना बहुत ही अद्भुत है। और पंजपुला भी है यहाँ पर, डलहौजी से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का नज़ारा देखने लायक है। यहाँ छोटे छोटे 5 पुलों के नीचे से बहता पानी पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेता है, और वहीं पास में खूबसूरत झरना भी है। सुभाष बावली जगह भी है यहाँ पर, और यहाँ से बर्फ से ढकी चोटियाँ देखी जा सकती हैं।

कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ से दूर किसी शांत जगह पर कुछ पल बिताने का मन करता है। डलहौजी ऐसी ही एक जगह है जहाँ प्रकृति हमें ठहराना, महसूस करना और जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद लेना सिखाती है। और देखिए, डलहौजी से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अहला गांव में भुलावनी माता का मंदिर है और बकरोटा हिल्स में आप पहाड़ी वादियों के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। काला टॉप की अगर हम बात करें तो करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काला टॉप में छोटी सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ जंगली जानवरों को बहुत करीबी से देखा जा सकता है। डैन कुंड भी है यहाँ पर, जी हाँ, 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से व्यास, चिनाव और रावी नदियों का विहंगम दृश्य दिखाई देता है।

0: कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। लीजिए पेश है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने इसे योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। शिमला शहर, प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र और जिला मुख्यालयों में भीड़ कम करने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की एक महत्वपूर्ण बैठक कल शिमला में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान शिमला शहर में भीड़ कम करने के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें भीड़ भाड़ वाले चिन्हित स्थानों की समीक्षा कर संबंधित विभाग को उचित निर्देश दिए गए। समिति ने शहर के भीतर ट्रैफिक में अवरोध और भीड़ का कारण बनने वाली मंडियों को शिमला के बाहर नवनिर्मित फोरलेन सड़क मार्ग पर स्थित उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित करने पर भी चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव के दौरान इस बार नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता के लिए भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत 9 जून को माँ यानी मदर्स अगेंस्ट अब्यूज एंड एडिक्शन विषय पर महानाटी का आयोजन किया जाएगा। शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि इस महानाटी में शिमला जिला से करीब 250 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं भाग लेंगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से सशक्त माँ, सुरक्षित बचपन, नशा मुक्त समाज और उज्जवल भविष्य की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों के चलते 73,000 से अधिक किसान परिवार प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। ये जानकारी देते हुए कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि किसानों में प्राकृतिक खेती के प्रति उत्साह बढ़ा है और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य भी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 732 किसानों से 6,40,00,000 रुपये की गेहूँ और मक्की की फसल की खरीद की गई थी, जिसमें इस वर्ष 4 गुना से अधिक वृद्धि की

0: उम्मीद है। ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक कार्य समूह की दूसरी बैठक आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू होगी। दो दिनों तक चलने वाले इस बैठक में चीन, ब्राज़ील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में वरिष्ठ राजनयिक, नीति निर्माता और संस्कृति विशेषज्ञ सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने और आपसी साझेदारी को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। धर्मगुरु दलाई लामा को संगीत की दुनिया के प्रतिष्ठित और सर्वोच्च सम्मान ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान ने मैक्लोडगंज में प्रदान किया। ये अवार्ड उन्हें ऑडियो बुक मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए मिला है। इस ऑडियो बुक में भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ करुणा, शांति और मानवता की एकता के विचार को प्रस्तुत किया गया है। युवा मामले व खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2026 के पहले चरण का शुभारंभ किया। ये एक अग्रणीय युवा नेतृत्व वाली पहल है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर भागीदारी को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और भारत के सीमावर्ती गांव में सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला।
2: वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। लीजिए पेश है सदाबहार गीत। शुरुआत करते हैं प्रतिज्ञा फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज़ है रफ़ी साहब की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए मजरूह का लिखा गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की। फिल्म का नाम है कारवां।

0: मेरा नाम लेडी कांस्टेबल रमा है और मैं 2022 बैच की भर्ती हूँ। तब से मुझे 4 साल हो गए हैं पुलिस में काम करते करते। उससे पहले मैं यहीं पे HP यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रही हूँ। मैं मतलब कॉलेज स्टूडेंट लाइफ में भी कैसे मतलब युवा नशे की ओर जाते हैं तो ये देखा है। अभी मैं पुलिस में 4 साल से काम कर रही हूँ और सर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कॉलेज और स्कूल में जाके बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना कि नशा क्या है, बच्चे कैसे इसमें फंसते हैं और उनको अवेयर करना कि नशा क्या होता है। उसी में हम अपनी ड्राइव चला रहे हैं। तो इसमें हम चाहते हैं कि जो आज का हमारा युवा है वो पुलिस के साथ मिलकर काम करें, वो केवल क्वेश्चन ना उठाएं, वो भी देखें कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पुलिस के साथ आके इस मुहिम में हमारा साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।
1: FM शिमला 103.7 MHz पर आप आनंद ले रहे हैं सदाबहार गीत का द ग्रेट गैम्बलर। इस फिल्म में लीजिए सुनिए अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और साथियों को। बोल हैं आनंद बख्शी के, तर्ज दी है राहुल देव बर्मन ने।

0: वे साय तू ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों

0: एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत। सुहाग फिल्म का गीत सुनिए। आवाजें हैं रफी साहब, आशा भोसले और साथियों की। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: बातों बातों में। इस फिल्म में अभी आपने किशोर कुमार और आशा भोसले को सुना। गीतकार थे अमित खन्ना योगेश, संगीतकार राजेश रोशन।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
0: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है सरगम।

FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत। सावन को आने दो, इस फिल्म में लीजिए सुनिए यसुदास को।

0: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
2: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है।
1: सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: आप तो ऐसे ना थे।

सदाबहार गीत का आखिरी गीत कर्ज फिल्म से है, जिसे गाया है किशोर कुमार और साथियों ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: सदाबहार गीत में आज बस इतना ही। अपनी रेडियो हम सफर रीना वर्मा को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए FM शिमला 103.7 MHz पर। 11 बजने को हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मीडियम वेव और FM शिमला 103.7 MHz पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार

0: सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी आप ये सुन सकते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने इसे योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। शिमला शहर, प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों और मुख्यालयों में भीड़ कम करने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की एक महत्वपूर्ण बैठक कल शिमला में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी उपस्थित रहे। इस दौरान शिमला शहर में भीड़ कम करने के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें भीड़ भाड़ वाले चिन्हित स्थानों को की समीक्षा कर संबंधित विभागों को उचित निर्देश दिए गए। समिति ने शहर के भीतर ट्रैफिक में अवरोध और भीड़ का कारण बनने वाली मंडियों को शिमला शहर से बाहर नवनिर्मित फोर लेन सड़क मार्ग पर स्थित उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित करने पर भी चर्चा की। बैठक में बीबीएन क्षेत्र में एक नई टाउनशिप योजना और चंडीगढ़ शहर की तर्ज पर एक सैटेलाइट टाउन की स्थापना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में भूमि पूलिंग नीति को पंजाब जैसे अन्य राज्यों के अनुरूप तैयार करने का भी निर्णय लिया गया। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों के चलते 73,000 से अधिक किसान परिवार प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। ये जानकारी देते हुए कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि किसानों में प्राकृतिक खेती के प्रति उत्साह बढ़ा है और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य भी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 732 किसानों से 6,40,00,000 रुपए मूल्य की गेहूं और मक्की की फसल की खरीद की गई थी, जिसमें इस वर्ष 4 गुना तक वृद्धि की उम्मीद है। चंद्र कुमार ने बताया कि सरकार प्राकृतिक खेती से बने उत्पादों के लिए अलग ब्रांड विकसित करने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित बड़े विपणन नेटवर्क से जुड़ने की दिशा में काम कर रही है, ताकि प्रदेश के ये उत्पाद देश विदेश के लोगों तक ऑनलाइन माध्यम से पहुँचाए जा सके। युवा मामले व खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2026 के पहले चरण का शुभारंभ किया है। यह एक अग्रणी युवा नेतृत्व वाली पहल है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर भागीदारी को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और भारत के सीमावर्ती गांवों में सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम 2 चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें भाग लेने के लिए देश भर से कुल 500 स्वयंसेवकों का चयन किया गया है, जिनमें से पहले चरण में 250 स्वयंसेवकों को हिमाचल, लद्दाख और उत्तराखंड के चिन्हित सीमावर्ती गांवों में 2 चरणों में तैनात किया जा रहा है। किन्नौर जिला में 10 दिनों के लिए आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में 100 युवा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जहां आज आईटीबीपी परिसर रिकांगपियो में उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा है। हमीरपुर जिला के उपमंडल नादौन के बल्ह डूहक गांव में अनु ने सिलाई कढ़ाई के हुनर की आजीविका का साधन बनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। पुरानी सिलाई मशीन से शुरू हुआ उनका ये सफर आज उन्हें प्रतिमाह 10,000 से 12,000 रुपए की आय दिला रहा है। अनु अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए भी प्रेरित कर रही है। जिला हमीरपुर से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: यदि मन में कुछ करने का जज्बा हो तो सीमित संसाधनों से भी आत्मनिर्भरता की राह बनाई जा सकती है। उपमंडल नदौन के बल्डू गांव की अन्नू ने सुई धागे के हुनर से ही इस बात को सच साबित कर दिखाया है कि घर की जिम्मेदारियों के बीच अन्नू ने सिलाई के हुनर को अपनी आजीविका का साधन बनाया और आज इसी काम से हर महीने 10,000 से 12,000 रुपए की आय अर्जित कर रही है। अन्नू ने न केवल खुद आत्मनिर्भरता बनी है, बल्कि गांव के अन्य महिलाओं और लड़कियों को भी सिलाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। त्योहारों और शादियों के सीजन में उनके पास काम की इतनी मांग रहती है कि समय निकालना ही मुश्किल हो जाता है। अन्नू की ये पहल न केवल उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही है। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
1: प्रदेश में हाल ही में

0: संपन्न हुए नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और जिला परिषद चुनावों के सभी उम्मीदवारों को अपने चुनावी खर्च का पूरा ब्यौरा 30 जून तक निर्वाचन आयोग को देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी उम्मीदवारों के लिए ये ब्यौरा अनिवार्य किया है। ऐसा ना करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें आयोग भविष्य के लिए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। एचपी शिवा परियोजना के तहत बागवानों को प्लम की खेती से जोड़ने का प्रयास सफल रहा है। बागवानी विभाग द्वारा किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण, सिंचाई सुविधा और बाजार से जोड़ने में सहायता दी जा रही है, जिसके तहत महाराष्ट्र की एक एग्री सप्लाई कंपनी के जरिए बल्ह और सुंदरनगर क्षेत्र के बागवानों द्वारा उगाया गया उच्च गुणवत्ता वाला प्लम महाराष्ट्र के बाजारों तक पहुँचाया गया है, जहाँ उन्हें इस फसल के बेहतर दाम मिल रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के शिमला FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र से सुन रहे थे। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
3: हमको मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा
2: FM।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत करते हैं हम आप सभी का। आप सुन रहे हैं FM शिमला और समय हुआ है 11:07। समय है आपके अपने ही कार्यक्रम पुराने फिल्मों से का, और ऐसे कार्यक्रम के सफर में मैं हूँ आपके साथ सुमन। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे फिल्म अभिनेत्री नूतन पर फिल्माए हुए कुछ गीत। जी, आज है उनकी जयंती। आपको बता दें कि 4 जून 1936 को मुंबई में इनका जन्म हुआ था। नाम था इनका नूतन समर्थ बहल। उनकी जो माता रही हैं शोभना समर्थ, वो भी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं, और पिता कुमार सेन समर्थ एक निर्देशक रहे हैं। और इन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में जो है अभिनय करना शुरू कर दिया था। 14 साल की उम्र थी जब इन्होंने हमारी बेटी जो 1950 में फिल्म आई थी उसमें बतौर मुख्य अभिनेत्री काम किया था। इसके बाद इन्होंने सीमा, सुजाता, बंदिनी, छलिया, मिलन, मैं तुलसी दे रे अंकल की ऐसी कालजी फिल्मों में काम किया और अपनी भूमिकाओं को इस तरह से निभाया कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। 4 दशक के करियर में उन्होंने लगभग 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और 6 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। इसके अलावा 1974 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो आज के इस कार्यक्रम में हम उन्हीं पर फिल्माए हुए कुछ गीत इस कार्यक्रम में सुनाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सबसे पहले आपको सुना रहे हैं मिलन फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल

0: प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
2: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
3: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
4: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपको हम सुना रहे हैं सरस्वती चंद्र इस फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इंदिवर के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

तो आज के इस कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से में फ़िलहाल इतना ही। आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की और आपको गीत सुनाए नूतन के। आज है उनकी जयंती। फिलहाल आप सभी यूं ही सुनते रहिए FM शिमला।

0: मेरा नाम लेडी कांस्टेबल रमा है और मैं 2022 बैच की भर्ती हूँ। तब से मुझे 4 साल हो गए हैं पुलिस में काम करते करते। उससे पहले मैं यहीं पे HP यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रही हूँ। मैं मतलब कॉलेज स्टूडेंट लाइफ में भी कैसे मतलब युवा नशे की ओर जाते हैं तो ये देखा है। अभी मैं पुलिस में 4 साल से काम कर रही हूँ और सर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कॉलेज और स्कूल में जाके बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना कि नशा क्या है, बच्चे कैसे इसमें फंसते हैं और उनको अवेयर करना कि नशा क्या होता है। उसी में हम अपनी ड्राइव चला रहे हैं। तो इसमें हम चाहते हैं कि जो आज का हमारा युवा है वो पुलिस के साथ मिलकर काम करें, वो केवल क्वेश्चन ना उठाएं, वो भी देखें कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पुलिस के साथ आके इस मुहिम में हमारा साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।
1: FM शिमला सुन रहे हैं आप सभी। 11:30 हुए हैं और अब समय हो गया है कार्यक्रम पहाड़ी संगीत का। आप सभी श्रोता जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं हमारे हिमाचल की लोकगीत, और लोकगीत ऐसे जो हमारे मन को, हमारे दिल को तसल्ली देते हैं, सुकून देते हैं और साथ ही साथ हमें हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से भी जोड़ कर रखते हैं। तो चलिए अपनी इसी लोकगीतों पर आधारित इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको सुना रहे हैं रीना धीमान की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
3: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ी संगीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला लोकगीत आपको सुना रहे हैं हम गीता की आवाज़ में।

श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी व अंग्रेजी में समाचार। कृपया रेले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

0: सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत के तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यविट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2री बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमरीकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान श्री रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमरीका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये 4थी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is holding talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The discussions involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy security, trade and I beg your pardon.

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में

0: अपना योगदान दे। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

तो आज के इस कार्यक्रम फिल्म संगीत में फिलहाल इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। बहनें सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन।

0: दुनिया में सबसे कीमती दौलत वही लोग होते हैं जिनके पास बैठकर दिल हल्का करने के लिए शब्द ढूंढने नहीं पड़ते। कार्यक्रम महिला सम्मेलन में आप सभी सखी सहेलियों का स्वागत करते हैं। आज मैं हूं आपकी रेडियो सखी ब्रिजबाला
1: और मैं वीना शर्मा, आप सभी को हमारा नमस्कार।
0: तो देखिए वीना, कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। आज हम अपनी बहनों से बात करेंगे कि मानसिक शांति और तनाव मुक्ति के लिए योग कितना जरूरी है ना
1: जी।
0: तो देखिए बहनों, स्वस्थ शरीर और प्रसन्न मन की कामना तो हर कोई करता है ना
1: जी।
0: लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को सही बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है
1: जी। और देखिए, आज के समय में खुद को समय देना बहुत मुश्किल हो गया है। और देखिए ब्रिजबाला, ऐसे समय में योग ऐसी अमूल्य धरोहर है जो हमें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती है बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त बनाती
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल सही कहा वीना आपने, योग एक ऐसी अमूल्य धरोहर है, जैसे आपने कहा कि ये हमें मानसिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी सशक्त बनाती है। बहनों, योग सिर्फ व्यायाम नहीं है बल्कि ये जीवन जीने की एक कला भी है। भारत की प्राचीन संस्कृति से जुड़ा योग आज पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और संतुलन का प्रतीक बन गया है। योग का अर्थ है जोड़ना, यानी कि शरीर मन और आत्मा का सामंजस्य स्थापित करना
1: जी। और देखिए, आज के समय में लोग तनाव, चिंता, अनिद्रा और उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मोटापे जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।
0: जी।
1: ऐसे में योग एक प्राकृतिक और प्रभावशाली जो है रूप में सामने आता है।
0: बिल्कुल।
1: तो हर रोज यानी कि नियमित व्यायाम, योगाभ्यास शरीर को लचीला बनाता है
0: जी।
1: और साथ ही मांसपेशियों को मजबूत भी बनाता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है। साथ ही ये शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है।
0: बिल्कुल। और भी ना, अगर हम बात करें बुज़ुर्गों की, या सबसे ज़्यादा जो इसका जो लाभ मिलता है वो मिलता है मानसिक स्वास्थ्य को होता है ना। जब हम प्राणायाम और ध्यान करते हैं तो मन शांत होता है और तनाव भी कम होता है
1: जी। और बिल्कुल सही कहा आपने, आज जब काम का दबाव ज़्यादा है तो योग मन को स्थिरता और सकारात्मकता प्रदान करता है
0: जी।
1: और ये हमें कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने की शक्ति देता है
0: जी। तो बहनों, अगर बात महिलाओं की करें तो महिलाओं के लिए योग बेहद ही लाभकारी है। योग महिलाओं को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। गर्भावस्था के दौरान उचित मार्गदर्शन में किया गया योग माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। इसके अलावा योग महिलाओं में होने वाली कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी जैसे होती रहती हैं तो उसको कम करने में भी वीना ये सहायक होता है
1: जी। और देखिए, बात अगर हम बच्चों और युवाओं की करें तो योग का जो इनके लिए विशेष महत्व होता है। योग बच्चों की एकाग्रता को बढ़ाता है, स्मरण शक्ति को बेहतर बनाता है और आत्मविश्वास को विकसित करता है। जब बच्चे और युवा मोबाइल और स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिताते हैं तब योग उन्हें स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली की ओर प्रेरित करता है।
0: बिल्कुल। और जैसे हम पहले भी बात करने लगे थे कि बुज़ुर्गों की बात करें, तो बुज़ुर्गों की बात अगर बहनों हम करें तो बहनों, बुज़ुर्गों के लिए योग किसी वरदान से कम नहीं है। ये जोड़ों के दर्द, शरीर की जकड़न और दूसरी जो उम्र संबंधी समस्याएं हैं उनको कम करने में भी मदद करता है। नियमित योग से वे ज़्यादा ऊर्जावान और आत्मनिर्भर महसूस करते हैं
1: जी। बिल्कुल सही कहा। और योग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसे हर आयु का व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता है और इसके लिए किसी विशेष उपकरण या फिर अधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है। केवल कुछ मिनटों का अभ्यास हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।
0: बिल्कुल वीना, और हम आपसे यही कहेंगे बहनों कि योग सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि स्वस्थ, सुखी और संतुलित जीवन का आधार है। अगर हम प्रतिदिन कुछ समय योग को दें तो हम ना केवल बीमारियों से दूर रह सकते हैं बल्कि जीवन को ज़्यादा ऊर्जावान और सकारात्मक भी बना सकते हैं
1: जी। तो देखिए ब्रिजबाला, हमारी बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, क्यों ना अपनी बहनों को एक गीत सुनवा दिया जाए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: मैनु बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात करते हैं एक ऐसे सफर की जो समय के साथ और भी सुनहरा होता गया। एक ऐसा सफर जिसने पीढ़ियों को जोड़ा, भावनाओं को शब्द दिए और देश की धड़कनों को अपनी आवाज़ में समेट लिया।
2: बिल्कुल वीना, आज का हमारा विषय यही है कि आकाशवाणी के 90 वर्षों का जो सफ़रनामा है वो हमने किस तरह से तय किया अपने श्रोताओं के साथ मिलकर।
1: जी
2: तो बहनों, एक छोटा सा रेडियो घर के किसी कोने में रखा होता था, लेकिन उसकी जो आवाज़ होती थी वो पूरे घर में गूंजती थी। और सुबह समाचारों की गंभीरता, दोपहर में ज्ञानवर्धक कार्यक्रम और शाम को मधुर गीत संगीत, यही तो था उस दौर का सबसे खूबसूरत एहसास, है ना?
1: जी बिल्कुल। और देखिए ना बहनों, आकाशवाणी केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि ये समाज को जागरूक करने, शिक्षा फैलाना और देश को एक सूत्र में बांधने का सबसे मजबूत माध्यम बना।
2: जी,
1: और इसीलिए आकाशवाणी लोगों की भावनाओं का हिस्सा भी बन गया। वहीं किसान खेतों में काम करते हुए उसे सुनते थे और माताएं रसोई में इसकी मधुर धुनों के साथ अपने काम किया करती थी और बच्चे कहानी और गीतों के कार्यक्रमों को बेसब्री से जो है उनका इंतज़ार करते थे।
2: जी तो बहनों, सन 1936 में शुरू हुई ये यात्रा आज 90 वर्षों की गौरवशाली ऐतिहासिक पहचान बन चुकी है। ऑल इंडिया रेडियो के रूप में शुरू होकर आकाशवाणी बनने तक इसने समाज को शिक्षा, संस्कृति, समाचार और मनोरंजन से जोड़ने का बहुत ही अच्छा कार्य किया है। देश की आज़ादी के दौर से लेकर आज के आधुनिक भारत तक आकाशवाणी हर महत्वपूर्ण क्षण की साथी रही है। जब देश ने जीत का जश्न मनाया तब भी इसकी आवाज़ गूंजी, और जब कठिन समय आया तब भी इसने लोगों का हौसला बढ़ाया।
1: जी बिल्कुल। और देखिए, महिलाओं के लिए आकाशवाणी ने महिला सम्मेलन, स्वास्थ्य जागरूकता, शिक्षा पोषण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक उत्थान से जुड़े कार्यक्रमों ने महिलाओं को जो है नई सोच, नई पहचान दी।
2: जी,
1: और आकाशवाणी ने ना केवल सूचना दी बल्कि समाज को संस्कार भी दिए, लोकगीतों की पहचान दी, क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान दिया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखा और हमारी परंपराओं को भी जीवित रखा।
2: बिल्कुल वीना, और भारत की विविधता को एकता में पिरोने का जो सबसे अच्छा कार्य किया वो भी ऑल इंडिया रेडियो ने ही किया। और जो आकाशवाणी का जो सफ़र है वो विश्वास, सेवा और समर्पण का प्रतीक भी है। आज भले ही दुनिया डिजिटल हो चुकी है, लेकिन आकाशवाणी की जो आवाज़ है वो आज भी लोगों के दिलों में वही अपनापन रखती है। FM, मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यमों के जरिए भी आज नई पीढ़ी इससे जुड़ रही है।
1: जी, और देखिए बहनों, 90 वर्षों का ये सफ़र केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं, यादों और विश्वास की यात्रा है। बहनों, जैसा कि हमने कहा था कि गीत संगीत पूरे भारत को जीवंत बना देता है और गीत जो है संगीत आपके मूड को भी फ्रेश कर देता है, वातावरण को फ्रेश कर देता है, तो चलिए आपको भी सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।
2: बिना गीत से पहले बहनों को संदेश सुनवा देते हैं।
1: जी बिल्कुल।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो बहनों, अब आप पहुंचे हैं हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर। तो खाना खजाना में आज हम अपनी बहनों के लिए एक ऐसी व्यंजन विधि लेकर आए हैं जिसका नाम है शाही मैंगो सूजी हलवा। तो देखिए बहनों, गर्मियों के मौसम में फलों के राजा आम की बहार आ जाती है और इस मौसम में आपने आम का शेक, आम पन्ना और मैंगो आइसक्रीम तो खूब खाई होगी, है ना? लेकिन क्या आपने कभी आम का ट्विस्ट देकर सूजी का हलवा बनाया है?
2: जी, और अगर नहीं बनाया है तो आज ही आप इस रेसिपी को ट्राई करके देखें और अपने खाने के स्वाद में चार चांद लगाएं। तो देखिए ब्रिजबाला, चलिए अपने बहनों को जो है ये रेसिपी कैसे बनती है तो इसकी सामग्री का जो है वो बहनों को बता देते हैं।
1: तो बहनों नोट कर लीजिए आप सामग्री। सूजी आपको लेनी है एक कटोरी, आम आपको लेने हैं 2 से 3 छोटे आकार के दशहरी जो कि बिना रेशे वाले आम होते हैं और ये आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि आम का आजकल मौसम चल रहा है
2: जी।
1: और साथ ही आपको लेनी है 2 कटोरी दूध और 1 कटोरी देसी घी की आपने लेनी है। साथ में आप लोगे ड्राई फ्रूट्स यानी कि सूखे मेवे, 50 ग्राम काजू आपने लेने हैं, 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम पिस्ता भी आप ले लें। साथ में आप 50 ग्राम किशमिश लें या अपनी पसंद के और भी सूखे मेवे आप उसमें डाल सकती हैं जो आपको पसंद हो।
2: जी, और इन्हें आप जो है छोटे टुकड़ों में काट कर रख लें और आधा कटोरी चीनी और 1 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर और थोड़े से रेशे केसर के।
1: जी,
2: तो आपको बहनों अब करना क्या है कि पहले हलवे को दानेदार और खुशबूदार बनाने के लिए सबसे पहले आम जो है मैंगो को अच्छी तरह धोकर उसकी प्यूरी आप तैयार कर लें। और अब एक पैन लें और इसमें 1 कटोरी सूजी लें। गैस की आंच को धीमा या मध्यम रखें और सूजी को लगातार चलाते रहें और सुनहरा होने तक आप इसे भून लें।
1: जी मैंने आपको ध्यान ये रखना है कि सूजी आपकी जलनी नहीं चाहिए, बस इसका जो कच्चा पैन है वो दूर हो जाए और इसमें से जो खुशबू आती है वो जब आने लगे तब तक आपने इसे भूनते रहना है। और जब सूजी घी छोड़ने लगती है तो इसका पता चल जाता है कि सूजी जो है भुन गई है या सुनहरी जब हो जाती है तो सूजी है वो तैयार हो जाती है। भूनने के बाद सूजी को एक अलग बड़े बाउल में आपने अलग से निकाल कर रख लेना है। उसके बाद सबसे अनोखा जो स्टेप इस रेसिपी का है बहनों, वो है आपको ये करना है कि भुनी हुई जो सूजी है वो बाउल में आपको निकालने के बाद उसमें 2 कटोरी दूध डालना है और सूजी और दूध को भीगने के लिए साथ में रख देना है।
2: जी, और भीगने के कारण जो है ना सूजी के दाने अच्छी तरह से फूल जाते हैं।
1: जी,
2: तो यही वजह है कि हलवा जब तैयार होता है तो बहुत ही मखमली, सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर का तैयार होता है। तो बहनों, जब तक हमारी सूजी दूध का मिश्रण तैयार होता है तब तक जो है बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं। तो आप गैस पर दोबारा पैन चढ़ाएं और उसमें थोड़ा सा देसी घी डालें और अब अपनी पसंद के सूखे मेवे जो आपने काट कर रखे हैं उन्हें आप जो है लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट कर लें यानी कि सुनहरे होने तक भून लें ताकि इसका जो क्रंच है वो बढ़ जाए। और अब आप इन्हें एक प्लेट में निकाल कर रख लें और अभी इसी पैन में

0: जो है आप बचे हुए घी के साथ और घी मिलाकर जो आपने आधा कटोरी रखी है, आधा कटोरी चीनी डालें। और इस आमतौर पर जो है हम हलवे में पानी या चीनी की चाशनी डालते हैं,
1: जी
0: लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि चीनी को कैरेमलाइज करना है, यानी कि सुनहरे भूरे रंग की चाशनी तैयार करनी है।
1: जी ये जो कैरेमल हलवे को एक बेहतरीन नेचुरल रंग और जो सौंधा सा लाजवाब स्वाद होता है वो इससे मिलता है।
0: जी
1: जब चीनी पूरी तरह से सुनहरे भूरे रंग की हो जाए तब गैस की आंच को आपने बिल्कुल धीमा कर लेना है। अब दूध में भीगी हुई सूजी वाला जो मिश्रण है उसको आपने धीरे धीरे पैन में डालना है और मिश्रण डालते समय दूसरे हाथ से इसे लगातार चलाते रहना है ताकि ये कढ़ाई में चिपके ना। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो गरम कैरेमल में दूध और सूजी की गांठें होती हैं वो नहीं बनेगी। धीमी आंच पर इसे तब तक आपने पकाना है जब तक कि सूजी सारा दूध ना सोख ले और घी ना छोड़ने लगे। जब हलवा गाढ़ा हो जाए और पैन का किनारा छोड़ने लगे तब इसमें एक कटोरी आपने ताजे आम की जो प्यूरी बना रखी है

0: और जो सौंधा सा लाजवाब स्वाद होता है वो इससे मिलता है।
1: जी
0: जब चीनी पूरी तरह से सुनहरे भूरे रंग की हो जाए तब गैस की आंच को आपने बिल्कुल धीमा कर लेना है। अब दूध में भीगी हुई सूजी वाला जो मिश्रण है उसको आपने धीरे धीरे पैन में डालना है और मिश्रण डालते समय दूसरे हाथ से इसे लगातार चलाते रहना है ताकि ये कढ़ाई में चिपके ना। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो गरम कैरेमल में दूध और सूजी की गांठें होती हैं वो नहीं बनेगी। धीमी आंच पर इसे तब तक आपने पकाना है जब तक कि सूजी सारा दूध ना सोख ले और घी ना छोड़ने लगे। जब हलवा गाढ़ा हो जाए और पैन का किनारा छोड़ने लगे तब इसमें एक कटोरी आपने ताजे आम की जो प्यूरी बना रखी है वो इसके साथ आपने मिला देनी है।
1: जी, और साथ ही भुने हुए सूखे मेवे, इलायची पाउडर भी डालना है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएं, 2 मिनट को पकाएं ताकि आम का फ्लेवर सूजी में अच्छी तरह से मिल जाए। और आपका गर्मा गर्म शाही मैंगो सूजी हलवा परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आप इसके लिए ऊपर से जो है केसर के रेशे डालकर देखें तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे।
0: बिल्कुल वीना, और बहनों आप खास ख्याल ये रखें कि आम में रेशे ना हो, नहीं तो खाते हुए मुंह में आएंगे और हलवा का जो मज़ा है वो किरकिरा सा हो जाएगा। साथ ही इन आमों का जो गाढ़ा पीला नारंगी रंग है हलवे को बिना किसी आर्टिफिशियल जो फूड कलर आते हैं उससे जो हम खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन ये हमारा जो है खूबसूरत नेचुरल तरीके से बन जाएगा।
1: जी बिल्कुल, और अक्सर सूजी का हलवा थोड़ा सूखा और पारंपरिक स्वाद वाला बनता है, लेकिन आम की प्यूरी और दूध का जो कॉम्बिनेशन है वो हलवे को बेहद क्रीमी, दानेदार और मुंह में घुल जाने वाला बना देता है। तो इस गर्मी एक बार आप भी ज़रूर इस डिश को बनाकर देखें।
0: तो वीना, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बहनें इस जो व्यंजन विधि हमने उन्हें बताई है ज़रूर इस बार ट्राई करेंगी।
1: जी
0: तो अब गीत की बारी आ जाती है, गीत सुनवा देते हैं बहनों को।
1: जी

0: बहनों, नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है और देश को नशे की गिरफ्त से मुक्त करने की एक राष्ट्रीय पहल है। ये अभियान देश के सभी जिलों में सक्रिय है, जिसका मुख्य लक्ष्य है युवाओं को सुरक्षित रखना और सशक्त समृद्ध भारत का निर्माण करना।
1: जी, किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत इसके युवा होते हैं, और अगर युवा नशे की गिरफ्त में आ जाएं बिना तो देश का भविष्य तो प्रभावित होगा ही, है ना
0: जी।
1: इसलिए नशा मुक्ति केवल किसी विशेष की जिम्मेदारी नहीं है बहनों, बल्कि ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है। हम सबका दायित्व है कि इस दिशा में परिवार की भूमिका जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि माता पिता को अपने बच्चों के साथ खुलकर संवाद करना चाहिए, उन्हें अच्छे संस्कार और सही मार्गदर्शन देना चाहिए। और अगर किसी बच्चे या युवा के व्यवहार में अचानक बदलाव आपको दिखाई देने लगे तो इसे डांटने के बजाय समझने और इनका साथ देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना जो माँ बाप होते हैं या माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को अच्छे से समझते हैं कि वो प्यार से समझ रहा है या कौन सी भाषा में वो समझ रहा है, तो उस तरह से उसको समझाएं।
0: जी बिल्कुल। और देखिए, स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थाओं को भी समय समय पर जागरूक कार्यक्रम आयोजित जो है उसके लिए करती रहती हैं, और ताकि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों को सही जानकारी मिल सके।
1: जी।
0: और खेल, योग, संगीत और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के द्वारा जो है युवाओं को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती है।
1: और वीना, आजकल ये ना देखने को बहुत मिल रहा है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ जो है बढ़ती जा रही है, तो ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि हम इस अभियान का हिस्सा बने और उन लोगों को रोकें, बच्चों को इस तरफ जाने से रोकें। नशा मुक्ति अभियान का उद्देश्य बहनों केवल नशा छोड़ना नहीं बल्कि एक स्वस्थ, सुरक्षित और जागरूक समाज का निर्माण करना है।
0: जी बिल्कुल। जब परिवार, समाज और प्रशासन मिलकर प्रयास करेंगे तभी हम एक नशा मुक्त भारत का सपना जो है साकार कर पाएंगे।
1: जी,
0: आज हम सबको मिलकर जो है संकल्प लेना है कि अपने आसपास किसी को नशे की ओर जो है नहीं बढ़ने देना है। हम अपने परिवार, मित्रों और समाज को जागरूक करेंगे और एक स्वस्थ, खुशहाल भविष्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
1: बिल्कुल वीना। और जो माता पिता हैं या जो शिक्षक हैं, उन्हें बच्चों के साथ ना दोस्ती का रिश्ता बना के रखना है और इस तरह से उन्हें समझना है कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है, कहीं अगर वो नशे की चपेट में है तो उसको रोकने की उन्हें पूरी कोशिश करनी है और प्यार से उसे रोकना है। ये नहीं कि उसे डांट कर, तो बच्चा क्या होता है?

0: कि ज़्यादातर उसी की तरफ बढ़ता चला जाता है, या उसके लिए वो दूसरा मतलब डबल उसका करता है कि अगर हमारे साथ जो है हमारे माता पिता डांट कर कर रहे हैं तो वो उसको सुनता नहीं है, अपनी मतलब उसमें अपना ही चलाता रहता है। तो इसलिए हम यही बहनों आपसे कहेंगे कि आप मिलजुल कर प्यार से और दोस्ती के साथ, दोस्ती का रिश्ता अपने बच्चों के साथ बनाए रखें, और इसमें अपना जो है 100% अपनी जो पहल है वो इसमें, या जो भागीदारी आपकी है उसमें सुनिश्चित करें।
1: जी बिल्कुल।

आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से समाचार प्रसारित होंगे, पहले हिंदी में और 1:05 पर अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
1: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक

तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

1:10 हुए हैं और FM शिमला पर अब समय हो गया है आपके अपने खास कार्यक्रम म्यूजिक मेल का। जी, इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें मेल भी सकते हैं और अपने पसंद का गीत इस कार्यक्रम में सुन सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम के सफ़र में मैं सुमन रहूंगी आपके साथ और 2 बजे तक आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बेहतरीन से नगमे इस कार्यक्रम में आपको सुनाएंगे। तो अगर आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने संदेश हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी AIRFMShimlaMusicMail@gmail.com। जी, AIRFMShimlaMusicMail@gmail.com, इस पर आप में मेल कर सकते हैं। और आप सभी श्रोताओं से ये भी गुजारिश हम करेंगे कि जब भी आप इस कार्यक्रम में हमें मेल करें तो एक ही बार करें, हम कार्यक्रम में आपका नाम ज़रूर पढ़ेंगे। बार बार मेल करने से हमें भी कार्यक्रम में आपके नाम शामिल करने में दिक्कत होती है, तो ये आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप कृपया एक बार ही हमें मेल करें। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में हमें जो मेल भेजा है वो आया है पदमपुर ज़िला श्रीनगर से, राजस्थान से, श्रीगंगानगर, और ये है मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े। इसके अलावा हमें मेल भेजा है, ये है सबलपुर कांकेर से, फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ये हमारी पसंद का कोई सा भी गीत सुनना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास मेल आई है भट्टापारा छत्तीसगढ़ से, हिमकेश्वर साहू, करण साहू, राहुल और चंपा साहू। तो इस तरह से आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में श्रोताओं जुड़ सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं और अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। AIRFMShimlaMusicMail@gmail.com, ये है मेल आईडी। फिलहाल बढ़ते हैं कार्यक्रम के सफ़र में आगे। सबसे पहले आपको सुना रहे हैं ये गीत अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में, फिल्म है माशूक।

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक मेल और इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी airfmshimlamusicmail@gmail.com। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगली में जो मेल आई है वो आई विपिन शर्मा की। यह है शालाघाट अर्की डिस्ट्रिक्ट सोलन से, ये लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कि गर्मियों का मौसम या सुहाना मौसम AIR FM शिमला के साथ जुड़कर आनंद रहता है। जी बिल्कुल, मौसम कोई सा भी हो उसका आनंद हमें लेना चाहिए और साथ साथ अगर गीत संगीत का साथ मिल जाए तो हर एक मौसम अच्छा बन जाता है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और हमें अगला जो मेल भेजा है ये है छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जा

वट संदीप जावट, लड्डू और टुक टुक जावट। इसके अलावा उमरखेड़ा से है सिराज खान, शबाना खान और ये है पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन। इसके अलावा बागपत उत्तर प्रदेश से हैं संजय डिंगिया, नमन अपार और इसके अलावा पलहारी छत्तीसगढ़ से ही है नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल और सावित्री बाई देवांगन। ये सभी भी हमारी पसंद का कोई सा गीत सुनना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में पद्मा टॉकेज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विनी, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। तो चलिए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए आप सभी के लिए प्ले कर रहे हैं विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म बाजीगर से।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य न निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक मेल। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और श्रोताओं के नाम शामिल करते हैं जिन्होंने हमें मेल भेजी है। ये है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। इसके अलावा पीपल लोड रस गांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। इसके अलावा वड़िंग खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनीजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं और इस कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मेल हमें कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी AIRFMShimlaMusicMail@gmail.com पर। इसके अलावा ये हमें भेज रहे हैं चोखड़ा धाम कॉलोनी सनावद ज़िला खरगोर मध्य प्रदेश से। ये हैं कृष्णपाल सिंह और इनके साथ हैं श्रीमती तारा देवी चौहान।

0: नव उदित सिंह चौहान, वेदपाल सिंह चौहान, ध्रुवी एवं प्रद्युम्न सिंह चौहान। तो चलिए, आप सभी की पसंद के हम गीत इस कार्यक्रम में सुनाएंगे और साथ ही साथ आपके नाम भी शामिल करेंगे। बता दें आपको, समय हो गया है 1:30 और कार्यक्रम रहेगा ये जो हम आपके लिए प्ले करेंगे गाने, इसमें 2 बजे तक, और 2 बजे तक आप इस कार्यक्रम में हमें मेल कर सकते हैं। तो गीत संगीत के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े हैं और अपने संदेश हम तक पहुँचा रहे हैं। फिलहाल तो इस कार्यक्रम में एक संदेश सुनते हैं, उसके बाद हम प्ले करेंगे आपके लिए गीत।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है। आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं।
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह

0: सुखू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पेट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
1: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: FM शिमला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक मेल। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हम श्रोताओं के नाम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। ये हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। इसके अलावा कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। इसके अलावा मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम MP से हैं जगदीश धाकड़ और श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। तो इस कार्यक्रम में अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं आप हमें। हमारी मेल IG AIRFMShimlaMusicMail@gmail.com। मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई। इसके अलावा ये है नागर कोहरा जिला छत्तीसगढ़ से ये हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्राजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। तो चलिए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर प्ले कर रहे हैं ये गीत। सुनते रहिए FM शिमला।

मैं लेडी कांस्टेबल आनंदनी हिमाचल प्रदेश पुलिस में पिछले 4 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हूं। इसी बीच हम बहुत से विद्यार्थियों, युवाओं और पेरेंट्स से मिलकर एंटी चिट्टा अवेयरनेस की बातें करते आ रहे हैं। इसमें हमने देखा है कि जब तक किसी घर में किसी घर का बच्चा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तब तक समझते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। एंटी चिट्टा अवेयरनेस प्रोग्राम सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है, यह एक जंग है ड्रग्स के खिलाफ। वो मेरा सभी से अनुरोध है कि वो 5 जून को रिज पर सुबह 6:30 बजे आके मिनी मैराथन में पार्टिसिपेट करें और इस अवेयरनेस को पूरे प्रदेश में फैलाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।

तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम म्यूजिक मेल में फिलहाल इतना ही। अब सुमन को दीजिएगा इजाजत और आप सभी यूं ही सुनते रहिएगा FM शिमला।

दोपहर के 2 बज चुके हैं और अब FM शिमला पर समय हो गया है कार्यक्रम सब रंग का, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं कुछ गैर फिल्मी नकली। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं शंकर महादेवन के गाए हुए इस गीत के साथ।

जी, शंकर महादेवन की आवाज़ में भी आपने सुना ये गीत, और ऐसे गीत बहुत कम मिलते हैं हमें सुनने को, और शंकर महादेवन ने एक सांस में इस गीत को गाया था। फिलहाल चलिए कार्यक्रम के सफर में आगे बढ़ते हैं, और अब आपको सुना रहे हैं के की आवाज़ में ये गीत।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दे। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
3: I call it the funk, the G-funk era. Yeah, check it out.

0: कार्यक्रम सबरंग में आज फिलहाल इतना ही। सुनते रहिए FM शिमला। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे दोपहर समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: ये चलते हैं आकाशवाणी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों और

0: अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष

0: संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
2: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
3: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़

0: हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
1: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 23,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आप सभी का। श्रोताओं, 2:30 हुए हैं और एफएम शिमला पर अब समय हो गया है कार्यक्रम शिखरों के स्वर का। आपको इस कार्यक्रम में हम सुनाते हैं हिमाचली लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राज प्रभाकर और कुशल्या देवी की आवाज़ के साथ।

राजेंद्र निंटा और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने ही सुना लोकगीत। एफएम शिमला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम शिखरों के स्वर। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुना रहे हैं लहरू राम संख्याम की आवाज़ में ये लोकगीत।

नमस्कार, मैं नरवीर सिंह, एडिशनल SP हिमाचल प्रदेश पुलिस। हिमाचल प्रदेश पुलिस नशा के खिलाफ जंग में निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश पुलिस अन्य विभागों के साथ 5 जून को रिज मैदान शिमला से मिनी मैराथन का आयोजन कर रही है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और आकर्षक इनाम 10 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की रेस में दौड़ में प्राप्त करें और जन जागरण के लिए आप अपना पार्टिसिपेशन दे करके एक संदेश दे ताकि हिमाचल प्रदेश पुलिस इस कुकृति को लड़ने में सक्षम होकर के आपके सहयोग से कार्य कर सके। जय हिंद, जय भारत।

0: मीडियम वेव और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी आप ये सुन सकते हैं। नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में 8 में से सिर्फ 4 नगर निगमों में चुनाव हुए हैं और इन्हें विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल कहना गलत है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि प्रदेश में लगभग 2400 पंचायतों में कांग्रेस समर्थित प्रधान जीते हैं, लेकिन पंचायत की असली ताकत वार्ड मेंबर की होती है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधान, उप प्रधान और सभी वार्ड मेंबर का एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल मानने से इनकार किया।
1: पहली बात तो ये है कि ये जो पंचायती राज चुनाव जो हुए हैं, ये कोई हमारे पार्टी सिंबल पे नहीं हुए। ये जो है एक ओपन जो है चुनाव थे। ये ठीक है कि कॉर्पोरेशन के चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पे हुए, 4 के चुनाव हुए और उसमें 3 पे इनकी जो है पार्टी के लोग है जीते हैं, 1 में हमारे भी जीते हैं। तो ये तो जो है किस्म से ना तो सेमीफाइनल था ना क्वार्टर फाइनल था।
0: पंजाब में हिमाचल की गाड़ियों से खालसा टैक्स वसूलने के सवाल पर राजस्व मंत्री ने कहा कि इस तरह की अवैध वसूली पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे लेकर पंजाब सरकार के साथ बातचीत की है और इस मामले को उचित स्तर पर उठाया जा रहा है।
1: ये एक सोची समझी साजिश के तहत है। ये हर प्रदेश सरकार का अपना एक अधिकार क्षेत्र है कि आप किस किस्म के टैक्स लगाएंगे। वो तो पंजाब सरकार को देखना कि ये बिल्कुल गलत है। इस किस्म की जो है कोई भी अगर कोई काम करता है वो कानूनन बिल्कुल गलत है, तर्कसंगत नहीं है। हम उसका जो आलोचना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने बात भी की है, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर

0: संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत देश भर से आए करीब 100 युवा एक सप्ताह तक हिमाचल प्रदेश, खासतौर पर किन्नौर की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, विरासत, रणनीतिक महत्व व परंपराओं से रूबरू होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के तहत संचालित माई भारत द्वारा किया गया है। किन्नौर के इस भ्रमण के दौरान युवाओं को यहां के अलग अलग गांवों में जाकर स्थानीय लोगों, पंचायतों, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों से मिलने का अवसर भी मिलेगा। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का शुभारंभ रिकांगपियो में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बेस कैंप में हुआ। इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में बिहार, दमन व दीव, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के प्रतिभागी शामिल हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास, स्थानीय संस्कृति के संरक्षण, युवाओं की सहभागिता और राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भूमिका को प्रोत्साहित करना है। शिमला में एक तहबाजारी की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सीटू से संबंधित रेहड़ी फड़ी तहबाजारी यूनियन ने शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर आज इस मुद्दे पर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। यूनियन का आरोप है कि नगर निगम की कार्रवाई व कर्मचारियों द्वारा पैदा किए गए खौफ के कारण इस तहबाजारी की मौत हुई है। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत रेहड़ी फड़ी वालों को देश में कहीं पर भी काम करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि 31 मई को नगर निगम की कार्रवाई के दौरान चंदन नामक विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गए और पिछले कल उनकी मौत हो गई।
1: देश के अंदर एक कानून है, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, जो 2014 में बनाया गया। ये कानून की मूल भावना क्या है कि किसी भी तहबाजारी को उजाड़ा नहीं जा सकता बल्कि उसको बसाना है। इसके बावजूद आए दिन जो कार्रवाई नगर निगम प्रशासन करता है, जहां गाड़ियां दौड़ाता है, लोगों के पीछे भागते हैं, उनका सामान छीनते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। 31 मई को 3:30 बजे IGMC के पास जो साथी चंदन और दूसरे साथी जो वहां काम करते हैं, बहुत गरीब लोग हैं, वो साथी जो अपना सामान समेट रहे थे और उसी अफड़ा दफड़ी में गिर गए, वो वहां पर घायल हो गए और पिछले कल उनकी मौत हो गई। हम ये कहना चाहते हैं ये गैर इरादतन हत्या है।
0: प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा किसानों को उन्नत किस्म का मक्की बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य के कई जिलों में मक्की की बिजाई का दौर शुरू होने वाला है और 15 जून से अधिकांश क्षेत्रों में मक्की की बिजाई की जाएगी। सिरमौर जिले की 40,332 हेक्टेयर भूमि पर मक्की की खेती की जाती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:00 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं मंडी जिले की चिट्ठी। लेखक है मुनीश सूद और वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है।
0: मंडी जिले में हाल ही में संपन्न नगर निगम चुनावों ने प्रदेश की राजनीति में विशेष चर्चा बटोरी। नगर निगम की 15 वार्डों वाली परिषद में 14 वार्डों के लिए मतदान हुआ, जबकि बहना वार्ड में स्थानीय बहिष्कार के कारण चुनाव नहीं हो सका। चुनाव में मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और लगभग 69% मतदान दर्ज किया गया। चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार नगर निगम पर अपना कब्जा बरकरार रखते हुए 12 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को एक सीट में संतोष करना पड़ा, जबकि एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। चुनाव परिणामों के बाद मंडी शहर में राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं। विजय रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे विकास और सुशासन की नीतियों पर जनता की मुहर बताया। उन्होंने कहा कि मंडी की जनता ने एक बार फिर भाजपा के पक्ष में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने मंडी सदर विधायक अनिल शर्मा की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उनके आक्रामक प्रचार ने कई वार्डों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी क्रम में मंडी जिला परिषद चुनाव के परिणाम भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे। जिले की 36 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। कई प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवारों के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा, जिससे चुनाव परिणामों ने व्यापक राजनीतिक संदेश दिया। कोटली वार्ड और तेहरा वार्ड जैसे क्षेत्रों के परिणाम विशेष रूप से चर्चा में रहे, जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर की पुत्री चंपा ठाकुर 2,464 वोटों से

0: चुनाव हार गई। वहीं तिहरा वार्ड में पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की बेटी वंदना गुलेरिया को 47 मतों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं सराज क्षेत्र में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने सभी सीटों पर विजय प्राप्त कर अपनी मजबूत संगठनात्मक पकड़ का परिचय दिया। इन परिणामों ने मंडी जिले की राजनीतिक दिशा और जनमत को एक बार फिर स्पष्ट रूप से सामने रखा है। राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ मंडी जिला शिक्षा, अनुसंधान और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। कमांद घाटी स्थित संस्थान परिसर में होने वाले इस 4 दिवसीय सम्मेलन में भारत और विदेशों से 400 से अधिक वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद, विद्यार्थी तथा आध्यात्मिक चिंतक भाग लेंगे। संस्थान परिसर में होने वाले इस सम्मेलन में भारत से अधिक वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद, विद्यार्थी, आध्यात्मिक चिंतक भाग लेंगे। जिले के कमांद स्थित आईआईटी में 6 जून तक तृतीय अंतर्राष्ट्रीय मन मस्तिष्क व चेतना सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। आईआईटी मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा ने कहा है कि मन, मस्तिष्क और चेतना पर आधारित ये बहुविषयक अध्ययन मानव कल्याण के साथ साथ अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया जैसी बीमारियों के शोध को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध हो सकता है। ये सम्मेलन भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान के बीच संवाद को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। उधर मंडी जिला प्रशासन नशे के विरुद्ध अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से जिला स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र यानी एनकॉड समिति की बैठक पुलिस लाइन मंडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉक्टर मदन कुमार ने की। बैठक में नशे की रोकथाम, मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण तथा जन जागरूकता कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाए जाएं। युवाओं को खेल, सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़कर नशे से दूर रखने पर विशेष बल दिया गया। बैठक में ये भी बताया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा चिट्टे के विरुद्ध अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप मंडी जिला में भी सभी विभागों के समन्वय से अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई तभी सफल होगी जब समाज के सभी वर्ग इसमें सक्रिय भागीदारी निभाएं। मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन को प्रतिष्ठित फेम इंडिया मैगजीन बेस्ट जिला दंडाधिकारी सर्वेक्षण 2026 में देश के शीर्ष 100 जिला अधिकारियों में स्थान मिला है। मंडी जिला की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: मंडी जिला की चिट्ठी आपने सुनी। लेखक थे मुनीष सूद, वाचक स्वर प्रभा शर्मा का था। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी सुन रहे हैं FM शिमला। 3:10 हुए हैं और अब समय हो गया है फिल्म संगीत ओल्ड हिट्स का। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुना रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत। फिल्म है नाइट इन लंदन।

0: कार्यक्रम में अब आपको सुना रहे हैं साजन फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में।
1: शम की डोरी

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आपने सुना दिल्ली का ठग फिल्म से ये गीत। तो आज के इस कार्यक्रम फिल्म संगीत ओल्ड हिट्स में इतना ही। सुनते रहिए FM शिमला। तीन बजकर 30 मिनट होने को हैं और अब आप सुनेंगे युवा साथियों का अपना खास कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं युववाणी शिमला और मैं हूं आपकी होस्ट आकृति ठाकुर। युववाणी के कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि नए साल पर हम इतने सारे रेजोल्यूशन क्यों बना लेते हैं? जैसे रोज़ सुबह जल्दी उठूंगी, रोज़ एक्सरसाइज करूंगी, रोज़ किताबें पढ़ूंगी, रोज़ मेडिटेशन करूंगी, और फिर एक हफ्ते बाद सब कुछ वैसे का वैसा। सुबह का अलार्म बजता है, दिमाग कहता है बस आज सो लेते हैं, कल से शुरू करेंगे, और फिर वो कल कभी भी नहीं आता। तो क्यों होता है ऐसा? क्या हम कमज़ोर हैं? बिल्कुल नहीं, बस हमें आदतें बनाने का सही तरीका नहीं पता। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे इसी विषय पर, हैबिट बिल्डिंग, अच्छी आदतें कैसे बनाएं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले गीत के साथ।

दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार हम अपने दिन में जो कुछ भी करते हैं उसका 40-45% हिस्सा हमारी आदतें होती है। मतलब आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? फ़ोन उठाते हैं या ब्रश करने जाते हैं या चाय बनाते हैं? ये सब आदतें हैं जो हम बिना सोचे समझे अपना लेते हैं। तो आखिर आदत होती क्या है? आदत वो व्यवहार है जो हम बिना सोचे समझे अपने आप कर जाते हैं। जैसे सुबह उठते ही फ़ोन देखना, रात को सोने से पहले रील्स देखना या दांत ब्रश करना। दिमाग के लिए आदत एक ऑटो पायलट मोड की तरह है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो दिमाग उसे याद कर लेता है और फिर वह काम बिना ज़्यादा सोचे हो जाता है। यही वजह है कि एक बार बुरी आदत

पक्की हो जाए तो उसे छोड़ना मुश्किल होता है, और एक बार अच्छी आदत बन जाए तो जीवन आसान हो जाता है। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अब बात करते हैं कि हमसे क्या गलतियां होती है। हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन आदतें क्यों नहीं बन पाती। गलती नंबर एक, बहुत बड़ा लक्ष्य रख लेना। हमें लगता है कि हम एक ही दिन में सब कुछ बदल देंगे। उदाहरण के लिए, एकदम से तय कर लेना कि रोज़ एक घंटा दौड़ूंगी, जबकि आपने पिछले 2 साल में एक बार भी दौड़ा नहीं। दिमाग तुरंत मना कर देता है और हम हार मान लेते हैं। दूसरा, कोई सिस्टम नहीं बनाना। हम सिर्फ लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन उसे पाने का रास्ता नहीं बनाते। जैसे कि मुझे पढ़ना है, बस इतना कहना काफ़ी नहीं, ये सोचना पड़ेगा कि कब पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे और कितनी देर पढ़ोगे। तीसरा, ट्रैकिंग नहीं करना। हम ये नोट नहीं करते कि हमने क्या किया और क्या नहीं। जब हम अपनी प्रोग्रेस नहीं देखते तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। चौथा, ट्रिगर नहीं बनाना। हर आदत के लिए एक ट्रिगर चाहिए, एक उकसाने वाली चीज़, जैसे अलार्म बजना, और अलार्म बजने से हम उठ जाते हैं। पांचवा, एक ही बार में सब कुछ बदलने की कोशिश। एक साथ 5 चीज़ें बदलने की कोशिश करते हैं, जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, खाना सुधारना, पढ़ना, मेडिटेशन करना, और कुछ ही दिनों में बर्नआउट हो जाते हैं। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

पहला, 2 मिनट का नियम। किसी भी नई आदत को सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करें। रोज 1 घंटा दौड़ूंगा की जगह कहें रोज सिर्फ जूते पहनूंगा और बाहर निकलूंगा। रोज 50 पेज पढ़ूंगी की जगह कहिए रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगी। एक बार शुरू करने के बाद आगे बढ़ना आसान हो जाता है। सबसे मुश्किल काम है शुरू करना। 2 मिनट का नियम आपको शुरू करने में हेल्प करेगा। दूसरा, हैबिट स्टिकिंग। अपनी पुरानी आदतों के साथ नई आदत जोड़ दें, जैसे सुबह चाय बनाते हुए 2 मिनट मेडिटेशन करें, रात को सोने से पहले 1 किताब का पन्ना ज़रूर पढ़े। तीसरा, एनवायरनमेंट डिज़ाइन करें। अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाएं कि अच्छी आदत आसान हो और बुरी आदत मुश्किल। अगर रोज़ किताब पढ़नी है तो किताब को तकिए के पास रखें। अगर जल्दी उठना है तो फ़ोन को दूर रखें जहां तक पहुंचना मुश्किल हो। चौथा, मिस होने पर पूरा ना छोड़ें। 1 दिन छूट गया तो कोई बात नहीं। सबसे बड़ी गलती ये है कि 1 दिन छूटने पर हम सोचने लगते हैं बस अब हो गया और पूरा छोड़ देते हैं। याद रखिए, कभी भी लगातार 2 दिन मिस नहीं करना है। 1 दिन छूटा तो दूसरे दिन ज़रूर वापस आना है। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, आपने सुना होगा कि 21 दिनों में आदत बन जाती है। ये पूरी तरह बिल्कुल भी सच नहीं है। एक नई आदत बनने में 18 से 254 डेज लग सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो आदत कितनी मुश्किल है और आप कितने कंसिस्टेंट हैं। कुछ आदतें सिर्फ 18 से 20 डेज में बन जाती हैं, जैसे रोज़ पानी पीना। औसत आदतें 66 डेज लगते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना। मुश्किल आदतें 200 दिन से ज़्यादा लग सकते हैं, एग्जांपल स्मोकिंग छोड़ना। तो अगर 21 दिनों में आपकी आदत नहीं बनी तो हार मत मानिए, बस लगे रहिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार। मान लीजिए आपने रोज़ सुबह सिर्फ 10 मिनट पढ़ने की आदत डाली, एक महीने में 300 मिनट, 300 मिनट मतलब 5 घंटे पढ़ाई, 6 महीने में वही 10 मिनट हो जाएंगे 30 घंटे पढ़ाई, और एक साल में हो जाएंगे 60 घंटे पढ़ाई। यही छोटी आदत आपको क्लास में टॉपर बना सकती है, आपकी नॉलेज बढ़ा सकती है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकती है। अब सोचिए, अगर आप रोज़ सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज करें तो एक साल में कितना फ़र्क पड़ेगा। अगर रोज़ सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन करें तो एक साल में आप कितने शांत और फोकस्ड हो जाएंगे। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

तो युववाणी के प्यारे श्रोताओं, छोटी आदतें मतलब बड़ा बदलाव, यही है हैबिट बिल्डिंग का सच। याद रखिए, कल से नहीं आज से, एक कदम चाहे छोटा ही क्यों ना हो, वो भी एक कदम है। मैं थी आकृति ठाकुर और अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी सुन रहे हैं FM शिमला। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली से होगा, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: भारत के वीर सैनिक सीमाओं की रक्षा और देश की सुरक्षा में सदैव अपने कर्तव्य, समर्पण और देश सेवा में निष्ठा से तत्पर रहते ही हैं। साथ ही ग्रीन इनिशिएटिव से लेकर मिशन लाइफ तक जंगल, पहाड़, नदी और आकाश की भी हिफाजत में जुटे हैं। प्रोटेक्टिंग द नेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग नेचर, यानी देश की रक्षा, प्रकृति की रक्षा। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ से कैंटोनमेंट बन रहे हैं जीरो वेस्ट जोन, सोलर पावर से चल रहे हैं कैंप और प्लांटेशन ड्राइव से हर सोल्जर बन रहा है एक इको वॉरियर। ये है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड मिशन जिसके लिए हमारी सेना जानी जाती है। और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ये इनिशिएटिव और भी सशक्त और भी स्पेशल बन रहा है। भारत की धरती सलाम कर रही है अपने सपूतों को, अपने सैनिकों को। 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर आज का विशेष संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित है, जिसे बड़े दिल से बनाया है टीम रेनबो ने। और आज का ये स्पेशल एपिसोड आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और हमारे ओबी टीम मेंबर हैं वैभव श्रीवास्तव। और हमारी रेनबो टीम पहुंची हुई है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी कैंप दिल्ली में। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कमांडेंट गौरांग जैन के संदेश से।
1: तो आज मौजूद है आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में और हम बात करने वाले हैं यहाँ के कमांडेंट कर्नल गौरांग जैन से। सर, वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू, और आपका यहाँ कैंप में आने के लिए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
1: सर, जब लोग आर्मी के बारे में सोचते हैं, हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की खासकर, तो हमारे जहन में आता है डिसिप्लिन, ड्रिल्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और ये सब चीजें। तो सर, बॉर्डर्स को सिक्योर करने से लेकर पर्यावरण को सिक्योर करने तक ये बदलाव की शुरुआत कैसे हुई, प्लीज हमें बताइए।
2: देखिए, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत के बारे में नहीं है, इसमें

0: हमारी मिट्टी, जल, वायु सभी इस सुरक्षा के उसमें आते हैं। ये पर्यावरण संरक्षक आज सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ये हमारे आवश्यकता बन चुकी है, और ये सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। फौज का और पर्यावरण का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। आप जानते हैं कि कैंटोनमेंट हमेशा से ही हरे भरे मिलेंगे आपको, और जो हमारे सैनिक हैं इनमें साफ सफाई रखना, पेड़ पौधे लगाना, ये उनके DNA में है। लेकिन आज सिर्फ साफ सफाई से या पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, हमें एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनानी पड़ेगी और हमें कल्चरली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने मिशन ग्रीन के तहत हमारा डीकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपक्षित मुक्त सैन्य भारत अभियान, जैसे कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं, वो चलाया जा रहा है, और ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इसको सुरक्षित कर सकें।
1: सर, क्या जीरो वेस्ट मॉडल एक्चुअल में मुमकिन है? क्या इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं प्लीज?
0: जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए बस हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत होती है। जीरो वेस्ट मॉडल के लिए कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कोई भी वेस्ट हमारा लैंडफिल में ना जाए, वेस्ट को सोर्स पे ही 100% हम सेग्रीगेट करें, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 100% हम इन हाउस कंपोस्ट कर सकें, कोई भी वेस्ट हम ओपन बर्निंग में ना करें या इंसिनरेशन ना करा जाए इत्यादि। जैसे मैंने बताया कि अगर ये अपनाना है तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वेस्ट को वेस्ट ना समझे बल्कि उसको हम रिसोर्स समझें। जिस दिन हमने वेस्ट को रिसोर्स समझ लिया, हम उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि रिसोर्स को हम रखते हैं और वेस्ट को हम फेंकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान आप देखेंगे कि उसको हमने रिसोर्स की तरह समझ के रखा है, तो या तो वो खुद ही हम यूज़ कर सकते हैं या कोई और, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसाइकिल होके कहीं ना कहीं किसी के इस्तेमाल में आ ही जाएगा।
1: सर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स कैंप किस प्रकार से जीरो वेस्ट में तब्दील किया गया, क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप हमें समझा सकते हैं प्लीज?
0: जी बिल्कुल। आज जैसा आप जानते हैं, पहले जितना भी वेस्ट होता था ये इकट्ठा होकर म्यूनिसपैलिटी लैंडफिल्स में जाया जाता था, जो फिर कूड़े का पहाड़ बन गया। सो इसके लिए हमने जीरो वेस्ट के लिए सिस्टम तैयार किया। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार वेस्ट को सोर्स पे ही 4 तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। इसके अलावा हमने कोलैबोरेट किया है कई NGO से या संस्थाओं से, जो कि रिसाइकिल हमें इन साइंटिफिक तरीके से इसको कर सके। इसके अलावा कई उपकरण भी लगाए गए हैं। तो सब करने से इसका नतीजा ये हो रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अब 100% हम इन हाउस यानी कि कैंप में ही कंपोस्ट कर रहे हैं, या फिर उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया या हॉर्टिकल्चर वेस्ट। जो ड्राई वेस्ट है जैसे पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उनको हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद इन संस्थाओं को देते हैं, जो वहां पे इनको रिसाइकिल करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं, और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हमने कुछ रैक्स लगाए गए जिसको हम वॉल ऑफ काइंडनेस कहते हैं, ताकि जो सामान काम का है लेकिन शायद मेरे काम का नहीं है, उसको रीयूज करने के लिए लोग अपना वहां पे उसको डोनेट करते हैं, जैसे किताब, बुक्स, शूज, बच्चों के खिलौने, बर्तन, वो डोनेट करते हैं और जिसको जरूरत है वो उसको वहां से ले लेता है। सो इन सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो हमने चीजें शुरू करी है यहाँ पे, इससे पिछले कुछ ही महीने में सिर्फ कैंप ने करीब 50 टन से भी ज्यादा वेस्ट को रिसाइकिल कर दिया गया है और लैंडफिल जाने से बचाया गया है, और इसी तरीके से बाकी कई यूनिट और हमारे स्टेशन अब जीरो वेस्ट में इस तरीके से तब्दील हो रहे हैं।
1: कहना होगा कि इनिशिएटिव्स वाकई कमाल के हैं, और आई होप कि आर्मी से इंस्पिरेशन लेके बाकी लोग भी इनिशिएटिव्स करें। सर, क्या यह अभियान कैंप को साफ रखने और कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए है या इसको और आगे बढ़ाने के लिए, आपने क्या सोचा है या क्या कदम उठाए हैं?
0: देखिए, साफ सफाई रखना और लैंडफिल में कचरा ना जाने के लिए ये एक छोटा सा पार्ट है ओवरऑल, जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो, क्योंकि इसमें और भी कई चीज शामिल हो जाती है, जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना। आपको पता है नेचुरल रिसोर्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, चाहे हम पानी की बात करें चाहे हम फ्यूल की बात करें, तो उनको कंजर्व करना, इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन करना, वृक्ष लगाना, ये भी सारा हमारे पूरे पर्यावरण की तरफ आता है, और इन सब चीजों पे भी हम काफी काम कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन पे आऊं, सबसे पहले फ्यूल कंजर्वेशन, तो उसमें ईवाइजेशन यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप में ही आज की डेट में 25 से ज्यादा व्हीकल हमारे इलेक्ट्रिक हो रखी हैं, जिसमें हमारे सैनिक यहाँ पे ऑफिस में जा रहे हैं। सोलराइजेशन का काफी काम चल रहा है जिससे कि बिजली की खपत कम हो रही है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारा थल सेना भवन बन रहा है वो GRAE 4 कंप्लाइंट है, और एक इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाया जा रहा है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करने के लिए करीब 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सेंसर लाइट्स लगाई जा रही हैं, और वाटर कंजर्व करने के लिए वहां पे इंटीग्रेटेड एसटीपी प्लांट,

0: अनेकों वाटर रिसाइकलिंग पिट्स लगा रहे हैं और यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ के एबोरिकल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा वहाँ पे मेगा कंपोस्ट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो कि करीब 1500 केजी तक का कंपोस्ट एक दिन में वहाँ पे कर सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षक की, तो वो सिर्फ एक पहलू वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है बल्कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच आती है जो कि एज एन आर्मी और एज अ कैंप हम इसको अपना रहे हैं।
1: आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, होलिस्टिक अप्रोच। मैं पूछूंगा कि इन सभी इनिशिएटिव्स का अल्टीमेट गोल क्या है आपके हिसाब से?
0: देखिए, अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित कर सके, लेकिन साथ में कैसे हम एक डीप रूटेड कल्चरल चेंज यानी कि सांस्कृतिक बदलाव ला सके। हमारे जो जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, ये देश के हर प्रांत से आते हैं और यहाँ से उसके बाद वो देश के हर जगह यानी कि बॉर्डर एरिया से लेकर बड़े शहर तक तैनात होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक ग्रीन सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो ये हमारे एक ग्रीन एम्बेसडर्स का काम करेंगे। यहाँ पे एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम में है, डेली उठ के ये अपने वेस्ट को सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम के जैसे अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब ये वो यहाँ पे इस चीज को हिस्सा ले रहे हैं तो ये अब एक इनकी जीवन शैली और एक इनकी आदत बन चुकी है। जब यहाँ से ये पोस्टिंग जाएंगे कहीं पे भी तो ये अपना माइंडसेट लेके जाएंगे और वहां पे ये सोसाइटी में इस चीज को रेप्लिकेट करेंगे और एक कल्चरल चेंज डेवलप करेंगे।
1: सर, पूछना चाहूंगा कि वाकई एक अद्भुत विजन है और हमें पूरी उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पे काफी मदद मिलेगी। एंड आई होप कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये रंग लाएं और जैसा आपने कहा कि एक माइंडसेट चेंज हो ना सिर्फ फौजियों का, सोल्जर्स का, बल्कि पूरे देश का इसके थ्रू।
0: जी, यही हमारा इसके ऊपर कोशिश है, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर कैंप है और या फिर पूरे इंडियन आर्मी इसके ऊपर लगी हुई है और मुझे यकीन है कि हमें इसमें और आगे बढ़ावा मिलेगा और सोसाइटी में चेंज आएगा। और मैं चाहूँगा कि आप जो हमने यहाँ पे ये चेंजेस ला रहे हैं, जो जीरो वेस्ट कैंप है, जैसे कि ये इंडियन आर्मी का ये पहला जीरो वेस्ट यूनिट है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको जाके देखें और ग्राउंड पे, और हमारे मेजर अजीत मोरे हैं जो इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, तो ये आपको एक बार ग्राउंड पे पूरा इसको दिखाएंगे।
1: कौंडन साहब, हमसे बात करने के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में बताने के लिए और हमेशा की तरह एक सोल्जर होने के नाते हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू।
2: जय हिंद। तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश की मिट्टी को देश के सैनिकों का सलाम है दिल से। इस गीत के बाद अब हम आज के हमारे संदेश टू सोल्जर के स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स आरबी कैम के प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे से।
1: हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स एमओडी आर्मी कैंप के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जोन में और हमारे साथ फिलहाल हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे। सर, स्वागत है शो में। हमें इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं।
2: धन्यवाद, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा, ये हमारे पूरे भारतीय सेना का पहला जीरो वेस्ट कैंप है। भारतीय सेना की हर एक यूनिट, हर एक इकाई जहाँ भी मौजूद है वो इसी तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है। जब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मिले थे तो उसके अनुसार हम यहाँ पे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, इसको हम यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं। मतलब मुद्दा यह है कि वेस्ट को उसके सोर्स पे ही 100% रिसाइकल किया जाए। साथ ही साथ में जब ऑर्गेनिक वेस्ट या वेट वेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम एरोबिक्स लगाए हैं, जिसको एरोबिक से हम खाद बनाते हैं, और साथ में बायोगैस लगाया गया है। बायोगैस कंपोस्टिंग सिस्टम से हम इसको कुकिंग हाउस में इस्तेमाल करते हैं। ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, ई वेस्ट और टेक्सटाइल वेस्ट लगाया गया है, तो इसके द्वारा भी हम इसको रिसाइकल्स को आगे देते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, इट इंडिफिनिट रिसोर्सेस। इसको मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। समझ लो मैंने किसी भी दुकान से आज चिप्स का पैकेट खरीद लिया, चिप्स मैंने खा लिया, रैपर फेंक दिया, तो रैपर मेरे लिए तो वेस्ट है। साथ ही साथ में मैंने केला खरीद लिया, केला खा लिया और उसका छिलका फेंक दिया, दोनों चीजें मेरे लिए वेस्ट है। अगर मेरे जैसे किसी समझदार इंसान ने उसको दोनों को इकट्ठा करके फेंक दिया, वो प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो धरती की हानि पहुंचाएगा। वो केला भी मैंने कहीं और फेंक दिया, कोई उस पे फिसलेगा, गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई समझदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, प्लास्टिक को मैंने प्लास्टिक वेस्ट में डाल दिया और उसको रिसाइकल कर दिया और उसको ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वही केले के छिलकों को हमने खाद के एरोबिक्स में डाल दिया और उससे हमने खाद बनाई जो नेचर को आगे प्रोटेक्ट करती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वेस्ट इज द ओनली वेस्ट इफ यू वेस्ट इट।
1: थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।
2: धन्यवाद।
0: हमने सुना कैसे पूरी डिटेल में मेजर अजीत मोरे ने ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जानते हैं पूरे मिशन के बारे में। तो सबसे पहले बात एरोबिन कंपोस्टिंग की, जिसके बारे में बता रहे हैं हवलदार राजकुमार।
1: तो बात चल रही थी आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की। हम यहाँ फिलहाल मौजूद हैं एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के पास और हमारे साथ मौजूद हैं हवलदार राजकुमार जी। सर, हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में प्लीज बताइए।
3: मैं आपको ऑर्गेनिक यानी के बेड बेस्ड के बारे में बताऊंगा। किचन और हॉर्टिकल्चर को मैंने बेस्ड करने के लिए हमने कुक हाउस में एरोबिन सिस्टम और बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया है। एरोबिन के अंदर हम वेजिटेबल बेस्ड, फ्रूट बेस्ड, सूखी पत्तियां और बिना पका हुआ किचन वेस्ट को डालते हैं, जो कि 20 से 30 दिन में रिसाइकल होकर खाद बन जाती है। इस खाद को हम एरोबिन से निकालते हैं, जो कि 2 से 3 दिन सूखने के बाद इसको हम एक अच्छी क्वालिटी में खाद दर्शाई गई है। पूरी तरह से खाद तैयार होने के बाद इस तरह से खाद निकलती है, इसको आप पैकिंग भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली है, क्योंकि

0: ना ही बिजली और ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कैंप में अब तक सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर इससे हमने 750 केजी खाद को तैयार किया है।
1: हवलदार राजकुमार जी, इसकी कैपेसिटी कितनी है और कितने दिन में खाद बन जाती है?
0: इसकी कैपेसिटी 400 केजी की होती है। इसे हर दिन 20 से 25 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 20 से 25 दिन के अंदर कम्पोस्ट यानी कि खाद तैयार हो जाती है।
1: साहब, एक और बात बताएं हमें, ये जो एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम है, इसको इस्तेमाल में लाने के लिए और क्या मिलाया जाता है?
0: इसको ड्राई रखने के लिए इसके अंदर सूखी पत्ती डाली जाती है। इसके अंदर किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है, ये बायोलॉजिकल काम करता है।
1: सर, आपने हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी दी, हमें बताया कि किस तरीके से खाद बनती है और बिना केमिकल्स को यूज किए बनती है। ये ग्रीन इनिशिएटिव है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है। साथ ही साथ आप देखिए कि अगर इस तरीके के सिस्टम्स पूरे देश में इंस्टॉल किए जाएं, आर्मी से सीख ली जाए किस तरीके से हम वेट वेस्ट को, जैसा कि हमें प्रोजेक्ट ऑफिसर ने बताया था कि हम किस तरीके से वेस्ट को वेस्ट ना रखकर उसको एक एसेट में तब्दील कर सकते हैं, इसे कहते हैं वाकई वेस्ट से एक एसेट बनाना। थैंक यू सो मच।
2: अभी हमने जाना एरोबिन कंपोस्टिंग के बारे में। श्रोताओं, अब हम आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे हम कि कैसे बायोगैस प्लांट लगा करके हमारी आर्मी कैंप में किचन मेंटेन किया जा रहा है, और इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं हमें हवलदार राजकुमार।
1: भारत में नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो दशकों और न जाने कितने वर्षों से होता आया है, लेकिन जिस तरीके से आर्मी इसे इस्तेमाल करती है और जिस तरीके से इसके नए प्रोसेसेस को सबके सामने रखा जाता है, ये वाकई अद्भुत है, अद्वितीय है। अभी फिलहाल हम आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की एक और बात करते हैं, जहां पर हम फिलहाल बायोगैस मशीन और बायोमेथनाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसके बारे में हमें और बताएंगे हवलदार राजकुमार जी। सर प्लीज।
0: एलपीजी की खपत को कम करने के लिए हमने कुक हाउस में बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर हम मेस में बचा हुआ खाना जैसे कि पानी गर्म, दूध उबालना, अंडे उबालना इत्यादि कामों में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बायोगैस को अपनाना बल्कि आत्मनिर्भरता बनना ही नहीं बल्कि अपनी धरती को हरा भरा रखने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए वेस्टेज को फेंके ना, उससे ऊर्जा बनाए।
1: तो बायोगैस इनिशिएटिव एक और ग्रीन इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कचरा यानी वेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव से आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं या हमारा देश क्या कर सकता है, वो ये है कि हम इस तरीके के इनिशिएटिव से वेस्ट को कम करके उन सभी एसेट्स को अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी रिसोर्सेज की बाहरी खपत को कम करके अपने ही आसपास की चीजों को इस्तेमाल करके रिसोर्सफुल बनकर हम वो सभी एसेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हवलदार राजकुमार जी, हमें प्लीज बताइए कि इसमें एक दिन में कितना वेट वेस्ट डाला जाता है और इससे कितनी गैस उत्पन्न होती है?
0: जी हाँ, ये प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे पास जो प्लांट लगे हुए हैं, इसमें एक दिन में 20 से 22 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 3 से 4 गैस को प्रोड्यूस करके इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं।
1: इसको इस्तेमाल करने से कितने एलपीजी की बचत होती है, कितने सिलेंडर्स की बचत होती है, अगर आप हमें बता पाए?
0: ये भी प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे कुक हाउस में जो प्लांट लगे हैं, इसमें हर एक प्लांट से एक महीने में 4 से 5 एलपीजी सिलेंडर की बचत होती है।
1: और सर, इसको कितनी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, अगर आप हमें बताएं?
0: जी, सबसे इसकी खासियत यही है कि प्लांट को मेंटेनेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास प्लांट लगा हुआ है तकरीबन 6 महीने से लगा हुआ, अभी तक इसकी कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ी।
1: बायोगैस प्लांट है इंडियन आर्मी का एक और ग्रीन इनिशिएटिव, जिसमें हम वेस्ट से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स, 4 से 5 सिलेंडर्स की खपत जितनी होती है, उतना हमें प्रोड्यूस यहां से इस मशीन से मिलता है।
2: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश पर जान निछावर करने वाले हमारे जवान सरहद और देश के भीतर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल को कैसे फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार।
1: यूज कुकिंग ऑयल के बारे में हम सब जानते हैं, इस ऑयल को अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो ये सीरियस इंजरी सीरियस हार्म दे सकता है ह्यूमन बॉडी को। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है किस तरीके से यूज कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया जाए, घर घर से इकट्ठा किया जाए। इसके लिए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार जी। सर हमें प्लीज इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में प्लीज बताइए।
2: सर जैसे कि FSA की गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारा कुकिंग ऑयल है उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे काफी सेहत के ऊपर भी असर डालता है, इसे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको अलग करके जो भी हमारा कुकिंग ऑयल जो था इसको यूज्ड है उसको हम अलग करके किसी रिकॉग्नाइज्ड संस्था को देते हैं ताकि उसकी रिसाइकल करके उसका बायोडीजल या सोप बनाया जा सके। इसको कलेक्शन करने के लिए हमने अलग अलग इसके लिए ड्रम्स जो केन्स रखे हुए हैं ताकि उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज कर सके और इसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर सके। सर
1: थैंक यू सर हमें यूज कुकिंग ऑयल के बारे में बताने के लिए धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
0: अभी तक हम जान रहे थे वेट वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे गीला कचरा रिसाइकल किया जा रहा है या अगर यूं कहें कि ये कचरा अपसाइकल किया जा रहा है। अब बहुत अहम और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाला प्लास्टिक वेस्ट, इसे कैसे अपसाइकल करके फिर से यूजेबल बनाया जा सके जबकि प्लास्टिक के बारे में आम धारणा है कि ये कभी खत्म नहीं होता, इसकी जानकारी दे रहे हैं हवलदार अब्बास।
1: इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स को हम आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल हमने वेट वेस्ट की बात की, हमने यूज कुकिंग ऑयल की बात की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, अब हम बात करेंगे ड्राई वेस्ट की। हमारे साथ हैं हवलदार अब्बास जी। सर हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्लीज बताइए कैसे ये कचरा इकट्ठा किया जाता है, किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, कैसे आप इसको यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद क्या होता है प्लीज।
3: सभी को मेरा जय हिंद। प्लास्टिक आज के गंभीर विषय बन चुका है, हमारी कोशिश यही है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर भी जो प्लास्टिक जनरेट होकर हमारे पास आता है उसको सही से डिस्पोज कैसे करें, इसके लिए हमारे कैंप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसके दौरान हमारे ब्लॉक्स लिविंग एरियाज कैंटीन एरियाज में हमने प्लास्टिक कलेक्शन पॉइंट्स को इंस्टॉल किया गया है। वहां से ये प्लास्टिक सेग्रीगेट होके हमारे इस मेन कलेक्शन पॉइंट पे लाया जाता है। इसमें प्लास्टिक के बोटल्स, पैकिंग मटेरियल, दूध की पन्नियां, नमकीन पैकेट्स, यहां से ये सारा मटेरियल वेस्टेज मटेरियल मान्यता प्राप्त एजेंसीज में भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए। इससे वहां पे फर्नीचर बनाया जाता है जैसे टेबल चेयर बेंच कबर्ड, इसमें डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे किया जाता है ताकि लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस मिले। जैकेट ग्लेशियर्स में डिप्लॉय हमारे सोल्जर्स द्वारा इकट्ठे किए गए हुए प्लास्टिक मटेरियल के वेस्टेज से बनाई गई है जो दर्शाती है कि आर्मी ना खिलिप रागिस्तानों में बल्कि ग्लेशियर्स में पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।
1: हवलदार अब्बास जी मुझे ये भी बताइए।

0: रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर नॉर्मल फर्नीचर के मुकाबले कैसा होता है? अगर एक नॉर्मल फर्नीचर की बात की जाए और ये जो रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर है इसकी बात की जाए, दोनों का कंपैरिजन कैसा है, कितना मजबूत है, हम सभी लिसनर्स को बताइए।
1: ये नॉर्मल फर्नीचर से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मजबूत है, धूप बारिश इस पे कोई असर नहीं पड़ता है और ये देखने में भी अट्रैक्टिव है और साथ में कंफर्टेबल भी है।
0: सर, क्या ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स आम लोग भी खरीद सकते हैं, इसके बारे में अगर आप बता पाए?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये आप खरीद भी सकते हो और प्लास्टिक के बदले इसको ले भी सकते हो।
0: सर, हर आइटम पर कुछ प्लास्टिक नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है अगर आप हमें बता पाए?
1: जी, ये जो मार्क 80 kg का लिखा है ये दर्शाता है कि 80 kg प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इस बेंच को बनाया गया है। ये चीज भी दर्शाती है कि 80 kg वेस्ट को फैलने से रोका गया है।
0: एब्सोल्युटली, 80 kg वेस्ट, आप सोचिए 80 kg वेस्ट कितना ज्यादा होता है। उस वेस्ट को इकट्ठा करना, उसको रिसाइकल करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद ये मजबूत फर्नीचर, ये मजबूत बेंच, ये सब चीजें बनाना, कितनी अहम चीज है ये, कितना मजबूत इनिशिएटिव है, कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है और कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। सर, पब्लिक वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात की जाए, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, कितनी चीजें हैं
1: इसमें? डिफरेंट तकरीबन 28 आइटम्स बनाए जाते हैं, जिसमें टेबल, कबर्ड, तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है।
0: हमें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच सर।

0: तो इसी तरह कंधों से कंधे मिलाकर हम अपनी धरती को स्वच्छ और बेहतर बना सकते हैं और प्लास्टिक जैसे खतरनाक वेस्ट को भी अपसाइकल कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, और इस बारे में बता रहे हैं हमें नायब सूबेदार कुलदीप राज।
1: ड्राई वेस्ट में ही हमने पहले प्लास्टिक वेस्ट की बात की, अब हम बात करेंगे पेपर वेस्ट की। किस तरीके से पेपर्स को इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेस्ट पेपर्स को यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बताएंगे कुलदीप राज जी। सर प्लीज हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएं।
2: जय हिंद। पेपर का इस्तेमाल पूरे कैंप में कम से कम किया जाता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है और एनवायरमेंट में भी फायदा मिलता है, जिससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और पेड़ पौधे कटने से बचते हैं। जो भी पेपर वेस्ट होता है, जैसे कि शटल पेपर, गत्ता, किताबें, रजिस्टर इत्यादि, प्लास्टिक वेस्ट की तरह मान्यता प्राप्त एजेंसी को दिया जाता है और जिससे पेपर, किताबें, डायरी इत्यादि बनाए जाते हैं, जिसे इस्तेमाल में लाया जाता है। रीयूज करने से रिसोर्सेज की कमी और सर्कुलर इकोनॉमी में बढ़ावा मिलता है।
1: तो किस तरीके से डिजिटल इंडिया का एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहां पर चल रहा है, तो जैसा कि आपने देखा इंडियन आर्मी की ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक और है प्लास्टिक वेस्ट और वेट वेस्ट के अलावा पेपर वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकल और अपसाइकल किया जाता है, कैसे मान्यता प्राप्त एजेंसीज तक ये सारे पेपर्स पहुंचते हैं। डिजिटल इंडिया की प्रॉपर एग्जीक्यूशन तो आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में की जा रही है। डिजिटलाइजेशन के बाद पेपर वेस्टेज या पेपर यूसेज कहें बहुत कम हो चुका है, डिजिटल चीजों का, डिजिटल माध्यम का उपयोग ज्यादा होता है, लेकिन जितने भी पेपर्स इस्तेमाल होते हैं जो जरूरी होते हैं उनको भी रिसाइकल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
0: एक और वेस्ट जो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और वो है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिससे हमारे मोबाइल, टैबलेट्स, चार्जर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और भी कितने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें शामिल हैं। और ये ई वेस्ट भी हमारी धरती के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। और इस ई वेस्ट को कैसे अपसाइकल किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार अशफाक अहमद।
1: ड्राई वेस्ट की ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करते करते अब हम आ चुके हैं एक स्पेशल कैटेगरी वेस्ट की तरफ, जो की है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट। बेहद जरूरी चीज जो हम सभी के घरों में मिलती है, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, वायर्स, प्लग्स, आप सभी ने देखा होगा, क्या वो सब चीजें ई वेस्ट का हिस्सा है? आइए जानते हैं हवलदार अशफाक अहमद जी से। सर स्वागत है शो में। जितनी भी चीजें हमारे घरों में मिलती हैं, क्या वो सब ई वेस्ट में आती हैं?
3: जय हिंद। हाँ बिल्कुल, वो सारी ई वेस्ट में आती हैं। ई वेस्ट एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ई वेस्ट की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कैंटोनमेंट, RWS और ऑफिस एरियाज में ई वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि स्पेशल केयर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें न सिर्फ ऑफिस एरिया के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बल्कि जवान अपने घरों से भी बैटरी, चार्जर, बल्ब जैसे इत्यादि लाके इसमें डाल सकते हैं। जो आप ई वेस्ट बॉक्स है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये जवानों ने अपने घरों से लाके इसमें डाला हुआ है। इस ई वेस्ट को मान्यता प्राप्त एजेंसी के सेग्रीगेशन प्लांट्स में भेजा जाता है।

0: है जहां पर उन्हें साइंटिफिक तरीके से रिसाइकल करके उनमें से सिल्वर, कॉपर, अल्मीनियम जैसे एलिमेंट को निकाल के दोबारा से उपयोग में लाए।
1: बिल्कुल, मतलब ग्रीन मेटल्स को हार्वेस्ट किया जाता है। इस सभी ई वेस्ट का उपयोग करके हम इन ग्रीन मेटल्स को निकालते हैं, इनको बनाते हैं और उसके बाद इसका दोबारा से इस्तेमाल होता है। ग्रेट इनिशिएटिव, एक्सीलेंट इनिशिएटिव। सोचिए कितना ज्यादा कचरा हम घरों से, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां से इकट्ठा करके यहाँ पर लाते हैं और उसके बाद इससे कुछ और उपयोगी, कुछ यूजफुल बनाते हैं। एक्सीलेंट इनिशिएटिव आई वुड से।

0: ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी कन्वेंशनल फ्यूल को नहीं बल्कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में बता रहे हैं हवलदार आशीष जी।
1: जय हिंद, मैं हवलदार आशीष। एनर्जी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलराइजेशन यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे पास आर्मी हेडक्वार्टर कैंप में 25 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक फ्लीट है जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल मोमेंट्स के लिए किया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार्स का एक फ्लीट है, साथ ही हाइड्रोजन बस और इलेक्ट्रिक बसेस का एक फ्लीट नजर आ रहा होगा। साथ एक इलेक्ट्रिक रिक्शा रखा हुआ है। इनके चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जहां पे इन व्हीकल्स को चार्ज किया जाता है। एक व्हीकल को फुल्ली चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और एक फुल्ली चार्ज्ड व्हीकल तकरीबन 300 किलोमीटर की एवरेज देता है। ऐसा करने से हम मंथली तकरीबन 4000 लीटर और ईयरली 48000 लीटर तक तेल की बचत कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स को और इन व्हीकल्स को यूज करके हम न सिर्फ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा रहे हैं बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रख रहे हैं।
0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे ग्रीन इनिशिएटिव मिशन लाइफ स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं जो इमोशनली भी बहुत रिलेवेंट है और वो है वॉल ऑफ काइंडनेस। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें पुराने कपड़े, किताबें और यूनिफॉर्म शामिल हैं। हमारे फौजी भी अपनी यूनिफॉर्म के साथ भी इमोशनली अटैच्ड होते ही हैं। तो कैसे डिग्निफाइड वे में इन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार विनोद कुमार और राइफल मैन दिनेश कुमार।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, आर्मी और ह्यूमैनिटी, ये दोनों शब्द हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इतने हैं जिन्हें गिनवाया जाए तो शायद ये दिन ये रात सब कम पड़ जाए। हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करने आए थे लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है उसी के साथ साथ एक ऐसा इनिशिएटिव भी है जो काइंडनेस को और ज्यादा दर्शाता है। कैबिनेट है ये 155 किलो प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बना है। सोचिए 155 किलो प्लास्टिक अब सड़कों में या कचरे के डिब्बों के आसपास नहीं बिखरा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके ये शेल्फ बनाया गया है। ये अपने आप में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं और इसके साथ साथ ही दिस इज एक्चुअली अ वॉल ऑफ काइंडनेस व्हिच मींस डोनेट व्हाट यू कैन टेक व्हाट यू नीड।

0: मतलब अपनी मर्जी से आप डोनेट कर सकते हैं और जो भी जरूरत है वो आप यहां से ले जा सकते हैं। अमेजिंग इनिशिएटिव, ऐसा एक काम जो इंडियन आर्मी ही सोच सकती थी, इंडियन आर्मी ही कर सकती थी। आइए इस वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में हम और कुछ जानते हैं। हमारे साथ हैं हवलदार विनोद कुमार जी। सर स्वागत है शो में, प्लीज हमें वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में कुछ बताइए।
1: जय हिंद। आज मैं आपको वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में परिचित करवाऊंगा। वॉल ऑफ काइंडनेस यानी नेकी की दीवार, ये एक सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है जो कि रीयूज के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ काफी सारे लोग आते हैं जो कि अपने साथ घर में पड़ा एक्स्ट्रा सामान, जो कपड़े, जूते, किताबें, जहाँ यूनिफॉर्म, वो सब इधर डोनेट करते हैं। बुक्स की शेल्फ है और यूनिफॉर्म की, कपड़ों की, जिस अलमीरा में ये डोनेट करके जाते हैं और जहाँ से जरूरतमंद लोग जहाँ से उठा के बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाते हैं। और बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जहाँ से सामान ले जा सके। बाकी अभी तक डेटा के अनुसार 10 टन से 12 टन तक कपड़े जहाँ से डोनेट हुए थे और काफी सारा सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा चुका है।
0: सो वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ साथ एक और शेल्फ है जिसमें ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स

0: ये एक सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है जो कि रीयूज के कंसेप्ट को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ काफी सारे लोग आते हैं जो कि अपने साथ घर में पड़ा एक्स्ट्रा सामान, जो कपड़े, जूते, किताबें, जहाँ यूनिफॉर्म, वो सब इधर डोनेट करते हैं। बुक्स की शेल्फ है और यूनिफॉर्म की, कपड़ों की, जिस अलमीरा में ये डोनेट करके जाते हैं और जहाँ से जरूरतमंद लोग जहाँ से उठा के बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाते हैं। और बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जहाँ से सामान ले जा सके। बाकी अभी तक डेटा के अनुसार 10 टन से 12 टन तक कपड़े जहाँ से डोनेट हुए थे और काफी सारा सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा चुका है।
1: सो वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ साथ एक और शेल्फ है जिसमें ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स हैं, क्या इसके बारे में और बता सकते हैं?
0: देखिए, अभी आपने सारे रैक्स देख लिए, अभी ये लास्ट में मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म रैक्स। इसमें हम तीनों सेनाओं के यूनिफॉर्म रखते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखिए, फौजी आदमी के लिए सबसे बड़ा प्राइड होता है उसकी यूनिफॉर्म, ये हमारे इमोशन को टच करती है और दूसरा ये हमारा प्राइड है। हम चाहते हैं इसका सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसलिए हम इसे रिस्पेक्टफुल तरीके से इनको जहां रखते हैं तीनों सेना की यूनिफॉर्म को।
2: बता रहे हैं राइफलमैन दिनेश कुमार।
0: वॉल ऑफ काइंडनेस में अभी तक कपड़े, यूनिफॉर्म, इसके अलावा जहां पर बुक्स भी हैं। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुए थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जिन लोगों ने अपने एग्जाम खत्म किए उनके बुक्स जहां पर काफी डोनेट की गई हैं और ये सभी डोनेट सामान जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। और इसके अलावा अब जहां और भी बहुत सारी बुक्स हैं जैसे जेई, नीट, सीरियस और SSB, सभी तरह की बुकें आपको देखने को जहां मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहां पर जितने भी फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो अफसर जवान, वो अपने बच्चों के खिलौने, किताबें, ये सब जहां पर डोनेट करते हैं।
2: हमारे फौजी भाई कई बार डिफिकल्ट टेरेन्स में पोस्टेड होते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे में हमारी आर्मी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग कर डेवलप किए हैं सोलर हट्स और सोलर सिक्योरिटी चेक पोस्ट, जिसमें सोलर पावर से चलने वाले कई तरह के डिवाइसेस प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए जानते हैं आर्मी के इस इनिशिएटिव के बारे में।
3: जब हम सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सबको पता है सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम नेचुरल सनलाइट को इस्तेमाल करके सोलर हट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसको हमने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में लगाया जिससे आने वाले कम्प्यूटर्स इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरा सोलर पावर्ड है जिसमें 4 फैंस की सुविधा दी गई है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट और साथ ही साथ में अगर हम चाहे तो रिकॉर्डिंग, CCTV रिकॉर्डिंग की भी इसमें क्षमता है। सोलर हट तो आपने देख लिया, अभी आपके सामने दर्शाई गई है सोलर संतरी पोस्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं आर्मी देश के विभिन्न विभिन्न भागों में डिप्लॉयड है, जैसे जब भी आर्मी रिमोट एरिया में डिप्लॉयज होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी चेक पोस्ट को बनाया गया है। जैसे इसके अंदर एक फैन की सुविधा दी गई है जो गर्म और ठंडी हवा भी देता है, साथ ही साथ में इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट की भी सुविधा दी गई है। ये एक मोबाइल संतरी पोस्ट है जिसको यहां से लेकर हम किसी भी जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं।
1: इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी कर रही है। आज हमने ग्रीन इनिशिएटिव्स देखे जो इंडियन आर्मी ले रही है, किस तरीके से ई वेस्ट, वेट वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, हर तरीके से कैसे इंडियन आर्मी हमारे पर्यावरण को बचा रही है, फ्यूचर को बचा रही है। यहाँ पर हेडक्वार्टर कैंप आर्मी में आके हमने ये सब जाना किस तरीके से आर्मी ये बेहतरीन इनिशिएटिव्स कर रही है और लगातार हमारे फ्यूचर को सेफगार्ड करके सस्टेनेबल तरीके से बेहतर बना रही है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज मेजर अजीत मोरे के साथ हैं। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे, ये ग्रीन इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हैं, किस तरीके से आर्मी पूरे देश के सामने इस प्रेरणा को रख रही है?
3: थैंक यू वैभव, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, जो हमारी सोच है वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ तक ही सीमित नहीं है बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में है, हम इसको कल्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं। जिस प्रोडक्ट पे हम अभी बैठे हैं ये अपसाइकल प्रोडक्ट, हमने एक चौथा पहलू भी इसमें जोड़ दिया है। साथ में आपको कहना चाहूंगा, जब वेस्ट मैनेजमेंट या पर्यावरण संरक्षण की बातें आती है तो इसमें तीन बेसिक ह्यूमन टच पॉइंट्स, एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी और तीसरा है अथॉरिटी, जिसमें आप लोकल बॉडीज होगी, आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब तक ये इंडिविजुअल के अंदर से नहीं आएगा तब तक हमारा एरिया या हमारा पर्यावरण साफ नहीं होगा, ये आपको मैं जोर देकर कहना चाहूंगा। हमारे देश का हर एक सिटीजन, हर एक बंदा एक पर्यावरण योद्धा है और जब तक उसके अंदर से ये आएगा तभी हम हमारे देश के या हमारे गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा कर पाएंगे। तो कल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ अभियान, इसको सफल बनाने के लिए हम सब देशवासी मिलकर इसको योगदान दें। जय हिंद।
2: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

देश की रक्षा और प्रकृति की रक्षा दोनों एक साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सेना का संदेश है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आज का संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित था, जिसमें जीरो वेस्ट जोन से लेकर सोलराइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से ई वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही ऑर्गेनिक वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट और बायोगैस के अलावा हमने जाना कि एरोबिन कंपोस्टिंग क्या है और कैसे इससे खाद बनाई जाती है, और ये भी कि वॉल ऑफ काइंडनेस के माध्यम से पुराने कपड़े, जूते, किताबें, बच्चों के खिलौने डोनेट करके रीयूज कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है। हम आशा करेंगे कि इंडियन आर्मी के अपनी धरती और प्रकृति के प्रति इस जज्बे से हम भी प्रेरणा लेकर अपना योगदान अवश्य देंगे और इसे बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के संदेश टू सोल्जर्स के इस स्पेशल शो की प्रस्तुतकर्ता थी राजलक्ष्मी और मेरे सहयोगी थे ओबी पर वैभव श्रीवास्तव, और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज। मेरा नाम है शाहिद। जय हिंद।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेंबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर।

ये मीठी सी धुन कौन ऐसा होगा जिसके मन को ना भाए। जी हाँ, पहाड़ों में गूंजती ये बांसुरी की धुन हर किसी के दिल में बस जाए। इसी मीठी सी धुन के साथ स्वागत करते हैं आप सभी का 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। पेश है मंडियाली लोकगीत। तो आइए आगाज कर रहे हैं कल्पना शर्मा और सोनिका शर्मा की आवाज़ों में ये लोकगीत।

जनाब, इन लोकगीतों का कहना ही क्या, इस लोक संगीत में मिट्टी की खुशबू महकती है जो सीधे हमारे दिलों में बसती है। फिलहाल इसी लोकगीत के साथ मंडियाली लोकगीत में अभी बस इतना ही। सुन रहे आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और आकाशवाणी एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आइए अब सुनते हैं पंगवाली कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।

जी सुनने वाले हाजिर है तू अपना मनपसंद पंगवाली बोली कार्यक्रम घिन के तू सुभियाने के सुनने वाले के खासकर कार्यक्रम अंतर स्वागत करते। आज के कार्यक्रम अंतर आसा तुहां जे डक बोक लानी अस्ते कुछ खास विषय तेने बारे अस गल आते। सुबह के पहले सुनने वाले तुह बताए देते हैं कार्यक्रम हफ्ते अंतर चार रोज सुमारे बजते शंचरे बेल दिया 5 बज के 20 मिनट पुठा शुरू करते और 5 बज के 50 मिनट तक पंगवाड़ी बोलिया कार्यक्रम चलता। आकाशवाणी जे प्राइमरी चैनल है मीडियम वेव जस बोते तस्जे साथे साथे आकाशवाणी FM चैनल पुट भी यह कार्यक्रम चलता 104.7 MHz से फ्रिक्वेंसी साथे साथे तू इस कार्यक्रम में आनंद DTH त मोबाइल ऐप पुट भी नाते सुनने वाले उस कार्यक्रम में दौरान अंतर तो हाँ अबल अबल घीतियारी की आवाज़ अंतर छांटी छांटी के जे गीत आतोरे बुते से सुनाते देशे प्रदेशे खास खास खबर और जे दियर विषय भूते तस्पुट हंस तुहां जो डकबोक लाते आज असा गल लानी अस्ती जल जीवन मिशन तथा सौर ऊर्जा अख जे खरा जे विकल्प। इसके पहले कि अस अगर तुहां जे डकबोक लें कार्यक्रम अगर बढ़ाई शुरुआत अंतर अख मशहूर जन चमयाड़ी लोकगीत तुहां सुनाते फिर लाते तुहां जे डकबोक तो सुनते इस लोकगीत।

जी सुनने वालों, रोशनी देवी तो हेत राम कैंथे आवाज अंतर है बेदे जिन मशहूर लोग की चमे कनहरी तो सुनू। उम्मीद करते तुम पूरा आनंद कार्यक्रम है नैन नगोरे। अगर बढ़ते अब अस थोड़ी डकबोक लाते तुम जे जल जीवन मिशन बारे। सुनने वालों, अक टाइम इन्ना भी थियाँ जिखें बते टबर अंतर एक दुई जणु के जैसे काम है ये बुतुत की से पनिहार के घे और तठा पानी भरी के भ्यागे भी पिजाए दुसवा भी पिजाए और बेल दे भी, क्योंकि काम तो आवे पूरे दिन भूते भ्यागे भी काम भूते है ना। सचै घीहे जे खीणे पीने काम वास्ते है ना, नहाने धोने वाले काम वास्ते, या फिर लच्छा गेरों की ऐप पीण दीजिए पानी साफ पानी, और इन्हें दुसवा भी जरूरत पड़ती है और इन्हें बेल दे भी जरूरत पड़ती। तो एक दुई जणु के जस्ता से ये काम भूतत की से पनिहार के जे भ्यागे बेल दिया पानी झेड़े और जे भी घी जरूरती साब जे पानी जरूरत पूती तस्पूरे रहे। टेम बेल देने लगोरा और टेम टेम पुट जस्ते सरकारें अलग अलग टेम पुट जस्ते से अलग अलग काम किए और कोशिशें की। कदी जस्ते से पहले दूर जड़ी भी कोड़ी खारा सहरू थियाँ पैणिया तठा पैणी तठा पानी हार के नड़कियाँ जो जस्ते से ग्रां तकर पुजाओ। कुड़ी खास खास जगह कोई चुबाठ कुड़ी अन्य जगह जड़ी शिव मैन पूछ सकते तड़ी तड़ी नड़के लवे पनिहारे के जगह जस्ते से नड़कियाँ पुट जस पानी भरन दी घेण लगे। बल्ले बल्ले जस्ते से चीज बदली किए जन शहरी के जन आवे घरे भी तड़ी आवे बदली लगे तो साब जो आवे जरूरतें भी बदली लगी पैनी तो आवे बते जे रसोई तकर जस्ते से पानी जस्ते से जरूरी अस्तुआ सदी और घर अंतर जस्ते पानी लटू। तैसे इन्हों जरूरतें ध्यान थे तो जे भारत सरकार या खास स्कीम जे 2019 अंतर जे शुरू की थी ऐसे खास मकसद हर ग्राएं टबर जस्ते से साफ तटा जे पीने लायक जे पानी से बते तस्तनी सहूलत गह तकर पुजानी। ए मिशन अंतर इस जे जल जीवन मिशन जस बताते हर ग्रां हर घर तकर जे पीने जे बाड़ जैसे पानी पुजाणू। हर मैनू रोजाना जे 55 लीटर साफ पानी पीने वालू पानी पुजाणू। पानी पीने लेख जे वे ऐसे भी जैसे से ध्यान थाना बड़ा जरूरी है। इस वास्ते भी ऐसे भी थोड़ी निगरानी करी थी पानी बचाने तठा जे महगे पानी बचाने तस्वी बढ़ावा इस मिशन तहत दीता। ग्रां स्तर पुट जैसे से पानी पक्का इंतजाम हौद वगैरह बनाई के है ना, पक्की नाड़ी बनाई के नाड़े अंतर पक्की जैसी से पे पे बिछाई के ग्रां अंतर जे पक्का जे इंतजाम जस्ता से पानी से एस मिशन तहत वहाँ फायदा की वहाँ जिलहणा गभरों के जे टाइम लगता से पानी भरने भ्यागे बेल दिया तस्कियाँ बचे पैन के जस्ता से भूने बैड़ी बीमारी कई किस्में अबे हैं पुराना सेहते था तड़ी अब अस पनिहार के पानी भी भरते थे और तड़ी जस्ते से अपने जने कपड़े चादरी थोबी से सब तड़ी धोई ते लच्छी गोरू के भी पानी तड़ी बूतो तड़ी जस्त से फिर हुई किनार से पानी कट्ठी तो तठा भी जस्त एनी बीमारी बल्ले बल्ले लगती थी भैनों जनी एकदम तो ना पता लगता लेकिन कोई ना कोई जस्त से तनी नुकसान ऐसा भूत रहता था। तो पीने वाला जे पानी अस्त इस एनी बेली जे बीमारी बूती तस्कें भी बचाओ इस पैनी बेली बहुत जे गया तकर साफ सुथरू पानी जस्त से इस मिशन तहत पुजन लगू। ग्राएं ज गई जे अंतर जस्त से मता जे सुधार ऐसे बेली भाँ सफाई तठा सेहती अंतर भी जे बढ़ोतरी है। ऐ जिखे पानी अगर गैर राजी पुजल तो साफ सफाई भी ढंग जे भूणी, अगर पानी घट भू तो ना तो कई बार बाढ़ने तड़ी छुटोरे बूते है ना, होरे जने भी तड़ी आधे धोरे आधे तैने हस्ते है ना, और लच्छेंगे और भी कई बार सुसुर पानी गह ना आती तो उसे कोई बेर जिखेंगे ना गए कि कुड़ी जगह पानी से पीते थे। और ऐप भी कई बार जैसे से बताया अभी पानी पीने तो थियो अभी पनिहारे का घेता बिछते अने थोड़ी देर दिखे पनिहारा पानी और दिखे पीते। तो कई चीज़ें अंतर जैसे से फायदा हुआ इजाफा ये हुआ और मैणों जैसे से सहूलियत हुई। ए स्कीम जस्ती जल शक्ति मंत्रालय तरफा जे जे स्टेट वाली सरकारें तने सहयोग जो चलाई थी। तो कुछ खास जानकारी तो

जी सुनने वाले हो राकेश कुमार शर्मा चसगवाले आवाज़ अंतर बेदे जिन लोग की तुम सुनो अगर बढ़ते थोड़ी डक बोक लाते सूरज कहना बिजली सोलर लेट जैसा पो बोले अंतर बोते भी अखारा साधन आई। हाँ जी सूरज जे ऊर्जा सोलर लाइट आज के टेम अंतर जस्त से अखारा साफ सुथरा तथा टिकाऊ साधन अस्ता। सूरज के हथीने बाड़ी जे ऊर्जाए ना खत्म होने बाड़ी ऊर्जाए ऐसे बढ़ने दौरान जस्त से न तो कार्बन डाइऑक्साइड धुआं और होरे जे प्रदूषण तस्के भी मैन बचते और जे गैस न निश्चित तसे बेली जे वातावरण जस्त से तसे भी बचाव होता और मैनू जस्ती सेहत खरी रहती। अखबार सोलर सिस्टम लगन के पत्तियां जस्त से लगा कई साल तक जैसे लगातार जस्त पुर्जे खर्चा जस्त से बिजली घटी था जैसे कारण जस्त से गिहे बते जे खर्चा से भी कम होता। ग्रह इलाकियां दी जस्त बोल सकते क्या सख बरदान है पाएंगे जिन्हें दूर दराजे तठा जे पहाड़ी इलाकियां जे जड़ी भी बिजली स्यापे आस्ते तड़ी बिजली अख बढ़िया साधन हो सकता या भून लगो रहा जैसा सबते आज काफ़ी जे इस्तेमाल भी भून लगो रहा से जे सौर ऊर्जा सूर्य जे लेट हस्ती सोलर जे लेट हस्ती तसे माध्यम जे मैणु टबर तठा जे ग्राम पंचायती या होरे संस्थाने पुर जैसे बिजली जरूरत पूरी थी और तसे जे खर्चा इसे कम ही था। मुश्किल की थे अंतर शुरुआती खर्चा जरा जे ज़्यादा था हालांकि ऐबे अखतब के अंतर जे सरकार सब्सिडी भी देने लगो रही। राती तठा जे लगातार बदल रहने वाली जे बिजली पैदा घटबूती तस दौरान भी थोड़ी दिक्कत ही थी। बिजली कठेने वास्ते से बैटरी जरूरत पड़ती अभी एक बता खास कम है संतर दौरान बूता लेकिन कुल मिलाई क्या सीरियल तेजे पंचायती राज या फिर जिस बोते ग्राएँ तरक्की अंतर जस्त से ऐसे खासा फायदा था अगर पंचायतियाँ स्कूलियाँ जे सेहत वाले संस्थान है डिस्पेंसरी वगैरह है या होरे जड़ी भी लेटी जरूरत पड़ती या बेरिकनार जे लेट लगे हुई बूती है ना तस अंतर जस्त से ऐसे खर्चा बड़ा घटी था। ऐना सिर्फ हंस इनू बोल सकते कि न बिजली से पैदावार बढ़ाने वाला साधन है बल्कि एक साफ सुथरा तथा जे माड़ी जे बचत है तस वास्ते भी जस्ते खरस था। बिजली बचानी है आत्मनिर्भर भारत बनाने कनार जस्त से खास ही छाड़ है हो सकती खास तौर पर जे भारते दूर दरा जड़ी जे सूरज मतलब बोल सकते कि पूरे इतना जगह अस्ती देश अंतर जड़ी सूरज हमेशा नस्ता तड़ी बिजली खास साधन हो सकता। तो मौके साहब जो हंस तो जे गल आई कुछ देशे प्रदेशे खास खास खबर भी तुम्हें सुनाई छटे। सुबह के पहली खबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही नई दिल्ली अंतर एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी तथा एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं के जे मजबूत बनाने वास्ते अख राष्ट्रीय जलसे उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति बोलू कि देश अंतर रहने वाले जे जनजातीय समाज है तेने सांस्कृतिक तौर पर जस्ते से बड़े भारी मजबूत हस्ते तेना बोलू कि देशे हर ग्रां तथा हर जे महणु तकर तरक्की स्कीमें पुजानी चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू सभ्या एजेंसियां तथा फायदा लैने वाले जे जनजातीय कल्याण वास्ते हर किनारा जे ध्यान देने जरूरत बताई। खेलियां भी बढ़ावा देने तेना गल की इस जलसे अंतर पंजी स्टेट तथा चौ जिसते से केंद्र शासित प्रदेश के जे महण वास्ते से पुजोरे वास्ते प्रधानमंत्री तरफा योग सलाह वाली खबर अस्ती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशे महणों के योग तठा जे कसरत करने सलाह दतोरी। अख संस्कृत श्लोक जो है ना बोलू कि योग रोजाना अभ्यास करने बेली जिसम जस्ता से सेहतमंद रहता तठा शांत रहता मन शांत रहता। प्रधानमंत्री बोलू कि योग रोजाना जिंदगी का हिस्सा बनाई करी बढ़िया सेहतमंद तठा तकड़ी जिंदगी जी सकती। ऐसे अलावा से कई खबर अस्ती कि राज्यपाल कविंदर गुप्ते बोलू कि समाज पढ़ाई करने तठा खरा बदलाव आने वास्ते से मीडिया बाड़ी के खासा जस्त से कम आई। और यह खबर है कि हिमाचल सरकार जे मछली पकड़ने वाली की आमदन बढ़ाने वास्ते जे मछली शिकार पुट लगने वाले जे रॉयल्टी से घटाई करके 8% करने फैसला किया। और यह खबर है सामाजिक तथा न्याय तथा सुरक्षा कनार जे उत्कृष्ट काम करने वास्ते जना लोहे जे अस्ते हैं लोहे तथा स्पीति जे शांसा पंचायत अस्ती ते देश अंतर सुभ्या के यहाँ पहला लम रहती रहा। ऐसे अलावा से क्या खुरी खबर है कि भाई वाइब्रेंट विलेज बारे विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 तहत करीब 800 के ज़्यादा जवान जस्त से एक ही हफ्ते तकर हिमाचली किन्नौर संस्कृति रहना

वार धुपड़ी पार छाए मुए बिना मन चित हेरि सुनी लाए तेरे सो। शेर सिंह जरियाले आवाज अंतर सबेदे जिन लोग की जो साथ पंगवाड़ी करेंगे कार्यक्रम में टाइम भूल लगे मुँह करताप सिंह ठाकुर पंगवा दे इजाजत तुआ से ब्याह जमेली नमस्ते।

टेला देवी की आवाज़ में अभी आपने सुना ये लोकगीत। आकाशवाणी शिमला से आप सुन रहे हैं लोकगीत। अगला लोकगीत आइए सुनते हैं टीकम राम शर्मा की आवाज़ में।

लोकगीत अभी आपने आकाशवाणी के शिमला केंद्र से सुने। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 6 बजने को हैं।

0: थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएस सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अब 99% एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग ऑनलाइन हो रही है और 96% से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी ओटीपी के माध्यम से की जा रही है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की हालिया स्थिति पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में सुजाता शर्मा ने कहा कि कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए निगरानी और कार्रवाई लगातार जारी है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों में से 99% निर्णय पूरी तरह कार्यान्वित किए जा चुके हैं। शिमला में आज मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी मौजूद रहे। नेगी ने बताया कि 13 फरवरी 2023 से 25 जून 2025 तक मंत्रिमंडल की बैठकों में 1160 निर्णय लिए गए, जिनमें से 99% निर्णय कार्यान्वित किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को शेष निर्णयों को समयबद्ध संचालित करने के निर्देश दिए। एक अन्य मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में लघु व सीमांत किसानों के लिए भूमि नीति पर चर्चा की गई। जगत सिंह नेगी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर लघु व सीमांत किसानों के भूमि कब्जों को नियमित करने के लिए नीति तैयार कर ली गई है और इस पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हो जाएगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसे भारत सरकार को भेजा जाएगा। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दावा किया है कि प्रदेश के 12 में से 9 जिलों में भाजपा समर्थित जिला परिषद बनने जा रही है। उन्होंने आज नाहन में कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले हमीरपुर में जिला परिषद की 19 सीटों में से कांग्रेस पार्टी मात्र एक सीट ही जीत पाई है, जबकि भाजपा ने 15 सीटों पर जीत हासिल की है। बिंदल ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी हमीरपुर जिला से आते हैं और हमीरपुर जिला में केवल एक सीट कांग्रेस जीत पाई है 19 सीटों में से। 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 3 सीटें इंडिपेंडेंट्स के पास। इस बुरी तरह से जनता ने कांग्रेस को रिजेक्ट किया है। एंटी कांग्रेस प्रो बीजेपी एक लहर चली है। जनता ने 3.5 साल तक कांग्रेस पार्टी के झूठ को, भ्रष्टाचार को झेला और वोट की चोट से उसका जवाब दिया।
0: चंबा नगर परिषद में भुवनेश्वरी गुलाटी को अध्यक्ष और जितेंद्र सूर्या को उपाध्यक्ष चुना गया है। ये दोनों कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं और इन्हें 7-7 मत प्राप्त हुए हैं। भुवनेश्वरी गुलाटी ने कहा कि चंबा शहर को स्वच्छ बनाना और सड़कों का सुधार करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि चंबा में वर्षों पुराने कूड़ा संयंत्र निर्माण की मांग को भी जल्द पूरा किया जाएगा।
2: सबसे पहले तो मैं अपनी चंबा की समस्त जनता का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मौका मिला जनता की सेवा करने का, और स्वच्छ, सुंदर और विकसित चंबा बनाना मेरा सपना है। और चंबा को एक, हम जितने 10 सालों में कार्य नहीं हुए, मैं चाहूंगी कि हम 1.5-2 साल में वो कार्य करके दिखाएंगे। पारदर्शिता सबसे जरूरी है, वो हम रखेंगे।
0: प्रदेश में हरित पंचायतों की आय का 25% हिस्सा अनाथों और विधवाओं के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि हरित पंचायत पहल अब राज्य भर के अनाथों व विधवाओं का कल्याण करेगी। उन्होंने कहा कि इस पहल के सामाजिक कल्याण

0: पक्ष को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने राजस्व वितरण मॉडल में संशोधन करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम के तहत प्रदेश की 100 ग्राम पंचायतों को 500 किलोवाट क्षमता की भूमि आधारित सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं से प्राप्त आय का 20% राज्य सरकार को दिया जाएगा, जबकि 25% हिस्सा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने आज वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को कुल 17 पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें 10 स्वर्ण पुरस्कार, 6 रजत और 1 जूरी पुरस्कार शामिल है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और आकाशवाणी एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। हिमाचली बोलने के कार्यक्रम आइए अब सुनते हैं कांगड़ी कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।

हिमाचली बोलियां अंदर कांगड़ी कार्यक्रम च असां अपनी श्रोत्या दा बहुत बहुत स्वागत करदे। जल जंगल जमीन जीने दा आधार कांगड़ी कार्यक्रम च कबूल करा वंदना राणा दा नमस्कार। जी हां श्रोत्यो, जल जंगल जमीन जीने दा आधार हन। ए बचके इन्हां जो बचांगे ताई असां दा भविष्य औने आला कल हरा भरा कने जीने लायक होंगा। अज असां सारे प्रदूषण की मार सिया दे हन। बेथोई गर्मी, कदी बरसात तो कदी ठंड होआ दी है। जून के महीने च पहाड़ों च बर्फ पवा दी है। इतनी ठंड हो चुकी है कि जनवरी दे महीने लगा दे हन। कने ग्लेशियर पिघला दे, ग्लोबल वार्मिंग दे सारे जड़े खतरे हैं सह बदा दे हैं। रुख बूटे बढ़ाने ते धरता दा संतुलन बिगड़ा दा, जंगलों च अग लगी के बथेरी बनस्पतियां जली के सुआ होआ दी हैं। पिछे भी कुछ जंगलों च अग लगी, पंख पखेरू जला दे, जंगली जानवर शहरां जो दौड़ा दे हैं। नुकसान पूजा दा, जगह जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल करी के अपू की सेहत तो खराब होआ दी है। इसते सोगी सोगी दिखा पर्यावरण जो भी नुकसान पूजा दा है। तुसां घूमना फिरना जाते उत्थों खाने पीने का कचरा प्लास्टिक दियां बोतलां होर रैपर वगैरह सटी आते, तिसते गंदगी तो फैलती फैलती है। दूजे हरा भरा साफ सुथरा वातावरण भी खराब हुंदा है। अज असां कांगड़ी कार्यक्रम की शुरुआत देखा जल जंगल जमीन बचाने की गल करने की किया। कल 5 जून है विश्व पर्यावरण दिहाड़ा। इस दिहाड़े जो मनाने का इको एक मकसद है कि असां अपने पर्यावरण के बारे च जागरूक होइए। ज़्यादा नहीं तो गिलहरी साई थोड़ा थोड़ा योगदान देन अपने पर्यावरण जो बचाने ताई। तुसां पिछले कल विश्व साइकिल दिहाड़ा भी मनाया, जिसका मकसद भी यही है कि असां साइकिल का इस्तेमाल करन, एक तो यह एक व्यायाम हुंदा कने दूजा प्रदूषण नहीं फैलता इसते जियां होर गड़ियां चलाने ते हुंदा है। इस करके साइकिल चलाने का संदेश दित्या गया। होर बड़े सारे जरिए हैं पर्यावरण जो बचाने ताई।

जुले नमस्ते आकाशवाणी शिमला गी गर्जपई प्रोग्राम दो इनी हिंची पछाई दो गी स्तंजनांगमो मांगची तिमरिल नांग यंपो स्वागत लिखत आकाशवाणी की थे कार्यक्रम दो थन हिंजी ओची गी विश्व पर्यावरण दिवस की बोंठे फेंके लोजुंग 5 जून रो जम्बुलिंग छाई दो विश्व पर्यावरण दिवस मनाई लिखचिए शो थे दिन हिंग जो प्रकृति की महत्व रो हा गोशा नंग पर्यावरण संरक्षण की बोंठे जागरूक लिखचर मनाई लिखचियन छो साई लन साई सोती ती रुआंग्स एपो सकियत नंग विविधता एपो मिचे आधार तिहेश एरी पर्यावरण सुरक्षित जो नंग मी जिरे सुरक्षित जो मिंश पर्यावरण लो नंग बुटा चांगमा में तो के जिमेश एरी आसपास नीचू लन सोती स रुआंग्स प्याची जीव जंतु नांग प्राकृतिक संसाधन थे छाई दो पर्यावरण की हिस्सा तिहेश मी नांग प्राकृतिक की संबंध होश में द्वांग दुरिक चीज एरी संस्कृति रो प्राकृतिक रो होश में तेजी तेचुम ते पूजा लिखचुश ग्रोकपुर रो राय सक्यत नांग बूटा चंगमा छाई दो राय टबर की मी अमावा चुकसे तेचुम व यशर लिखचुश थे छाई रो एरी जीवनदाता रे लोचुश विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम लो नंग UNEP रोकची लो 1972 रो स्टॉकहोम जोमरांग्स खोची आयोजित किए यश छाई बसल दुरे विश्व पर्यावरण दिवस लो 1973 रो मनाई लिखचीश थन एरी जम्बुलिंग आई न पर्यावरण की बारदो थांगशीश छाई बसल तेजी समस्या खाहिज लो नंग जलवायु लिखशी थन एरी सकेत की तापमान रे नोई बसल नोई के यश री रे थी जियार ग्रोकपांग सोती नोई नंग नम गी पैटर्न लिखशीश खची जगह रो होश में छतपा खची जगह रो रुद बाढ़ रे यश नंग खची जगह सोती मई ख्योची खर मई के येलीश एरी भारत युल रो रे थे छाई कंचर रो खुकशीश खची जगह रो होश में छतपा ती रिकॉर्ड रे दाक्षीश शिल्ती रे एपोली जी रमिन मई ग्युनशी बक्ता रमिन मई मग्युनशी बक्ता होश में शिल्ती री ब्रेक ची नंग बादल फटाई के ईश थे छाई चोक से घटना दहिंग जो चा न थंगशा रो खुकशीश हिमालय क्षेत्र लो नंग एरी हिमाचल प्रदेश रे थजू रो शामिलेश ख्या सोती लन लिखशुम यू न क्यमिन गिरेश पर्यावरण प्रदूषण थंतुस की छाई फसल तेजी छेर की फैसती हैश लन मारे सोती मारे ध्वनि प्रदूषण ची एरी जुक्स नांग स्वस्थ रो नोई नोई असर के येश मोटर उद्योग नंग हिती स्रोत रोक ची वांगसिस खू एरांग जो नंग एरी पर्यावरण जो होश में नोई येश मारे लन ची सत हिंचा बार दो नंग सही न चोक से क्यमिन की गिरते

Tejokse grokpang nang soti nana khimsa nang rasayanik chalak shi changna soti pradushan noi basal noi kyamesh. Sai soti khuksha thangi tus to sai basal tezi chunarti tiyesh. Agar hingji soti ki bachat sai bucha bunthe khar li mali nang ramin su time ro nang ramin su time gi mijo hosh mei bardo thangsha khukshush. होश में तेजी संकट की सामना लिच्चा रुख खुशुश पर्यावरण की बोंठे थी कि तेजी खतरा शुगु कुतुल रुख ची रहेश प्लास्टिक की कोलचा एरी सकियत ग्रोकपा तेजी तेजी सागर जो नुकसान लिच्चीश प्लास्टिक यू ना नष्ट क्यमिन मेंश थे लोजुंग एरी सकियत जोरो नुआ लुस्मेश नांग जीव जंतु जोरो थे तेजी खतरा तेज विश्व पर्यावरण दिवस इरांग जो लब्जा दचीश की ख चलाक तिकनांग छुई कोलनी यू न नुई नुई नुई चलाक थयो नी इची ठुप ठुप यूई चु चलाक कोलनी नांग पुनर्चक्रण लीनी इनी जी रिड्यूस रियूस रिसाइकल त हिंची जुकन थे सिद्धांत रो अपनाई लिखचा गुन शीश इची छुई खिमसक क्यनांग इरी पर्यावरण नुले सुरक्षित जुमिश एरी हिमाचल प्रदेश की बोंठे फैनांग हिमाचल प्रदेश रो प्राकृतिक सुंदरता देई साई दमशी रोकची सेशियन छो क्यूई क्यूला देवदार की बूटा रुआंग्स साई ग्रुकपा नंग सेम दो देई ररे खोई नजारा होश में तेयेश द नोई आबादी एपो ली जी मलिक चीचू विकास नंग नोई खिमसा रोकची एरी पर्यावरण रो नोई दबाव केयेश पर्यटन एरी अर्थव्यवस्था की होश में गुंशी तिहिस्सा तिहेश पर थे टूरिस्ट पर जिनांग मी छाई की जिम्मेवारी तिहेश एरी प्रकृति रो साई बुचा पर्यावरण संरक्षण सरकार की केस दी लेन तिमेश थे रो युल की मी छाई की भागीदारी गुंशीश एरांग जी राई मी से राई जीवन रो क्युक्ची क्युक्ची कदम उठाई लीजी एरी ला बुटा ग्रोकपांग नांग जीव जंतु बुंठे खमो तेजी बदलाव रिचा ठुप चियो छाई बसल दुरे हिंग जी इची क्या नांग बुटा चुकचा नांग बुटई यश लिखचा गि आदत तच गुंशीश बुटा हिंग जो स ऑक्सीजन के जिद चुमेश बल्कि सही संरक्षण नांग जैव विविधता गि बोंठे रे गुंशीश इरांग जो सोती की संरक्षण बोंठे ध्यान दच गुंशीश नल खुला मबुच शिल्ती रास्तो थसु सोती यो जी इस्तेमाल लिखचा नांग सोती की एपो लीजी जिम्मेवार के जी इस्तेमाल लिखचा होश में गुंशीश दरुंग इरांग जो बिजल की बचत लिखचा गुंशीश खर मई दो निरा बिजल त्रुची बुचुमेश बिजल की बचत ली नांग एरी प्रकृति रो छुई दबाव के येश दरुंग इरांग जो सिंगल यूज प्लास्टिक की उपयोग लिखचा छुई लिखचुश रस नांग जूट की कुतुल कोलनी नंग प्लास्टिक की बोतल हिती चला की इस्तेमाल रे इची ठुप ठुप छुई लीनी थन की भक्त रोथे बोंठे युवा की होश में तेजी भूमिका तेश युवा जी पर्यावरण की बोंठे जागरूक लिखचा बुटा की सुरक्षा बोंठे अभियान लिखचा नंग सफाई कार्यक्रम जोरो एपो लीजी बाघ थिंचा रे थे छाई युवा की लिखचे ठुपचियेश मुदर संग नंग विश्वविद्यालय जो रो थे छाई पर्यावरण शिक्षा रुकची नुई पीढ़ी जो रो प्रकृति की बोंटे ज्ञान दचा गुंशीश दरुंग हिंग जो सार्वजनिक मोटर साइकिल अमचा रो बढ़ावा दचा गुंशीश थे रुकची ईंधन की बचत नांग लन प्रदूषण रे छुई क्यमेश भारत सरकार नांग बंती बंती राज्य की सरकार पर्यावरण की बोंटे बंती बंती योजना नांग अभियान सुक्षी नीश भारत अभियान नमीम गंगे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नांग ऊर्जा रो बढ़ावा दचा चोकसे लेन थे छाई गि बोंठे तिकी तेजी नांग युंशी कदम तीश पर थे छाई योजना छाई गि सफल क्यारे रो युल गि मी छाई दो यंपो रह जी यतो लिखचा गुंशीश हिंग जो थे हित पुचुम बुचा गुंशीश कि पर्यावरण गि सुरक्षा लिखचा दक्षम वर्तमान गि लेन के जिमेश बल्कि भविष्य की मी जी बोंठे रे गुंशीश गहिंग जी थे गि प्राकृतिक संतुलन

Kimsa tinca nang veganik niptan gi disharo gyunshi len likchish. Tan kachi kachi sher jo kyoi nang thi kimsa ro sasa sasare chakshien cho. Thi rokchi punar chakran lo nang recycling ro re badawa da chish. Sher jo damshi jo men gi bonthe badawa da cha bonthe lo jung swach sarvekshan likchien cho. थे सर्वेक्षण रोकची तेजी तेजी युल दो दमशी जोमेन की आदत की पता दचीश नगर निकाय एपो सफाई नांग खिमसा छांगचारो होश में लेन लिखचियन छो थे रोकची दमशी की बोंठे जागरूक रे क्यमेश स्वच्छ भारत मिशन जी थे सिद्ध लिखच लिखशीश की जब सरकार नांग युल की मीत छाई यंपू के जी लेन ली नांग व दल्ले एरी युल दो तेजी परिवर्तन रमेश लिखशीश दमशी पुच्छा सफाई लिख चिपा कि किस दी नंग सरकार के जी जिम्मेदारी मेंश थे युल गी मी छाई की कर्तव्य तिहेश राय क्यूम राय हबर राय लिक्स राय शहर नंग राय युल रो दमशी बुचुमगी संकल्प थिन्नी महात्मा गांधी की युल रो दमशी बुचुमगी मेजिस रो पूरा लिखचा बोंठे छाई दो यंपो लेन लिखचा गुंशीश दमशी भारत स्वस्थ भारत हेश थे लब्जा नंग यंपो थे फेस क्या खोम गते द मंदासी नंग साथी थिरची ललती हिनकते स्वांगलो धरती।

दथनगी समाचार हिंदकते विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 की तहत युल छाई रोकची रईचू करीब 100 युवा जी सप्ताती हिमाचल प्रदेश खासकर किन्नौर की संस्कृति योमिन तुंगमिन जस्तुंग विरासत की बोंठे यंपो पहचान लिखचुश थे कार्यक्रम की आयोजन केंद्र युवा कार्यक्रम नांग खेल मंत्रालय इस्पेल की तहत माई भारत की लिखचियश किन्नौर की थे भ्रमण रो ताल जो किन्नौर की ससा ससा लेख साई रो एल जी नुमांग मी जियम्पो पंचायत प्रशासन नांग सुरक्षा बोंठे लेन लिखची पर जियम्पो दोमेंगी अवसर रिखुक्शुज विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुभ आरंभ रिकोंगपियो रो भारत तिब्बत सीमा पुलिस की बेस कैंप रो चुकशीश थे कार्यक्रम दो युल छाई की बंती बंती राज्य रुकची बिहार दमन दीव झारखंड महाराष्ट्र।

राजस्थान, तमिलनाडु नंग उत्तर प्रदेश नंग हिती राज्य रोग चिमी जी शामिल नींस। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की उद्देश्य सीमा कचांग लिक्स समग्र विकास तेई संस्कृति युवा जी सहभागिता नंग राष्ट्र निर्माण रो ताल साई की गुणशीत भूमिका रो प्रेरणा दचर रोहेश। प्रदेश रो कृषि विभाग जी रीदंग लेनी पजो किसम किसम की छली बीज उपलब्ध लिखशीश। राज्य की खची जिला रो छली तपचुम की टाइम क्यारे हेज नांग 15 जून रोकची युलगी खची जगह रो छली तपचुम चुकशुज। सिरमौर जिला रो 40,332 हेक्टेयर सक्यत रो छली तपची एंछो। जिला की रीदंग लेनी पजो रो लगभग 480 मेट्रिक टन छली गी सोनप दचीश। जिला कृषि उपनिदेशक साहब सिंह जो लोत्ता की सुजगह रो विभाग की लंगजा केंद्र मई एश नुमांग 160 मी जो सोकना की लाइसेंस दचुश थजोक ची रीदंग लेनी पजो बारदो क्यमेमेश। सामाजिक न्याय नांग सुरक्षा की क्षेत्र रो एपोलेन लिखचा बोंटे लाहौल स्पीति की शांशा पंचायत रो युलसाई रोकची प्रथम स्थान खुकता। तेनांग यंपो थन की समाचार खोमगते दथे प्रोग्राम की आखिर लला हिनकते।

लाहौली कार्यक्रम अभी आपने सुना। इसी के साथ हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम अब समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ले किए जाएंगे।

स्वागत है आप सभी का 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। 7:10 हो चुके हैं। पेश है किसान और बागवान भाइयों के लिए कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान व बागवान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। किसान भाई, इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ हरी शर्मा।
2: और मैं हूं अशोक ठाकुर।
1: अशोक जी, सुनाए कैसे हैं आप?
2: हरी जी, हालचाल बढ़िया है, और आपके हालचाल कैसे हैं?
1: अशोक जी, हालचाल बढ़िया है, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे किसान और बागवान भाई बहन है वो भी अच्छे से हो गए और अपने कृषि और बागवानी के जो दैनिक कार्य है उसमें व्यस्त हो गए। अशोक जी, इस कार्यक्रम में हम अपने किसान और बागवान भाई बहनों के लिए कई तरह की जानकारियां लेकर के आते हैं। आज कार्यक्रम में क्या कुछ खास जाने वाला है उसकी जानकारी हम उनको दे देते हैं।
2: बिल्कुल जी, किसानों, कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे काम की बातों से, और काम की बातों के अंतर्गत आपको बताएंगे जहर मुक्त खेती के बारे में
1: जी।
2: साथ ही साथ सुनाएंगे आपको लोकगीत और सुनाएंगे आपको एक जानकारी जिसका विषय रहेगा जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक खेती। डॉक्टर रविन्द्र सिंह जसकोटिया से बातचीत करेंगे लेखराम शर्मा
1: जी। किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज काम की बातों में। जो हमारा आज विषय है जहर मुक्त खेती के बारे में। हम कृषि एवं कृषि उत्पादों में काफी आगे आ चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही जाने अनजाने में एक ऐसे रास्ते पर आ चुके हैं जिस पर हम काफी कुछ पाकर भी बहुत कुछ खोते जा रहे हैं। कृषि उत्पादों की उत्पादन श्रेणी में हम वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में आ चुके हैं और धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। समय की आवश्यकता अनुसार हमारे वैज्ञानिकों ने खाद्यान्न आपूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की पद्धतियों का उपयोग किया है या वो कर रहे हैं।
2: किसानों, बात चली है जहर मुक्त खेती की, तो किसानों हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे विकास के साथ साथ सबसे ज्यादा विकास हमारे अंदर विकसित होने वाली बीमारियों ने ही किया है। यदि हमें उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता तो कम से कम उपज का उत्पादन खर्च तो कम करना चाहिए। ये संभव हुआ है भारत में पद्म श्री सुभाष पालकर जी के द्वारा विकसित और प्रचारित जीरो बजट प्राकृतिक खेती के द्वारा
1: जी।
2: किसानों, आप प्राकृतिक खेती की तरफ आए, प्राकृतिक खेती को अपनाएं, क्योंकि इसमें जो है लागत भी आपकी कम होगी और उत्पादन जब अच्छा मिलेगा तो आपका जो है जीवन खुशहाल होगा और अच्छा उत्पादन आपको मिल पाएगा
1: जी। बिल्कुल, और जो भी आप फसलें लगाते हैं अगर आप उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करेंगे, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका स्वास्थ्य और आपके पशु का जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और आप जो है हर तरह की बीमारी से बच पाएगी।
2: बिल्कुल जी, किसानों, बात चली है जहर मुक्त खेती की, तो जहर मुक्त खेती किसानों आपको करनी चाहिए। और सबसे पहले इसमें हम आपको बताएंगे जीवामृत के बारे में। जीवामृत में बहुत संख्या में लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो भूमि के जामन का कार्य करते हैं और पौधों के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करने में ये अहम भूमिका भी निभाते हैं। किसानों, थोड़ा सा हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जीवामृत की क्या क्या विशेषताएं रहती है। तो इसमें सर्वप्रथम जीवामृत मिट्टी में विशाल प्राकृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है और फसल के लिए पोषक तत्वों को उपलब्ध भी करवाता है
1: जी। किसान भाई, जीवामृत को फसल के लिए पोषक तत्वों के रूप में नहीं माना जाता बल्कि मिट्टी में प्राकृतिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए केवल एक उत्प्रेरक एजेंट माना जाता है। जीवामृत को 2 हफ्ते में एक बार या कम से कम महीने में एक बार उपयोग करना बेहतर रहता है और ह्यूमस बनाने के लिए आच्छादन का प्रयोग जीवामृत गुणों को बढ़ावा देता है और जीवामृत को उर्वरक और भारी कार्बनिक खाद के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
2: बिल्कुल, जिसने बात चली है जीवामृत की, तो जीवामृत बनाने के लिए जो सामग्री आपको चाहिए होती है वो सामग्री आपने 1 एकड़ के लिए लेनी है। पानी आपने लेना है 200 लीटर, देसी गाय का ताजा गोबर 10 किलोग्राम, देसी गाय का मूत्र 5 से 10 लीटर, गुड़ 1 से 1.5 किलोग्राम, बेसन 1 से 1.5 किलोग्राम, मेड़ की मिट्टी लेनी है आपने 1 मुट्ठी
1: जी। किसान भैया, वो बनाए

0: की विधि के बारे में अगर हम बात करें तो एक ड्रम में 200 लीटर पानी भरकर उसमें 5 से 10 लीटर गौमूत्र आपको मिलाना होता है और फिर इसमें 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर मिला दे। अब इसमें 1 से 1.5 किलोग्राम गुड़ भी आपको मिलाना होता है। फिर क्रमशः 1 से 1.5 किलोग्राम बेसन व 1 मुट्ठी जो है वो खेत के मेंढ की मिट्टी आपको लेनी है। अब इस घोल को घड़ी की सुई की दिशा में धीरे धीरे आप घोलते रहिए। इस मिश्रण से भरे ड्रम को जूट की बोरी से ढक करके 3 दिन के लिए आप रख सकते हैं और यदि शीत लहर अर्थात सर्दी का मौसम हो तो 4 से 5 दिन तक आप इसको रख सकते हैं। और किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घड़ी की सुई की दिशा में इसे धीरे धीरे घोलते रहिए।
1: बिल्कुल जी किसानों, भंडारण अवधि काल की अगर बात करें तो इस घोल का उपयोग 14 दिन के अंदर अंदर आपको करना होता है, लेकिन तैयार होने के 7 से 10 दिन के दौरान सबसे अच्छे परिणाम देखने को इसके मिलते हैं। उपयोग विधि की जहां तक बात आती है तो जीवामृत को जो है कुछ फसलों पर जो है आप उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि तैयार जीवामृत को गर्मी के मौसम में 3 दिन यानी 72 घंटे बाद और सर्दी के मौसम में 4 से 5 दिन के बाद कपड़े से छानकर स्प्रे पंप की सहायता से खड़ी फसल पर स्प्रे आप कर लें। इसको सिंचाई के पानी के साथ भी कृषि भूमि में आप दे सकते हैं। सीधा भूमि की सतह पर 2 पौधों के बीच भी जीवामृत आप दे सकते हैं। सर, थोड़ा सा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ एक बातों का आप ध्यान रखें कि गोबर और मूत्र जब आप प्रयोग करें तो केवल गाय का गोबर ही आप उपयोग करें। गोबर जितना ताजा होगा उतना ही अच्छा रहेगा
0: जी। और किसान भाई, गोबर जो है 7 दिन तक का प्रभावशाली देखा गया है। यदि आपके पास बैल है तो आधा गोबर बैल का आप मिला सकते हैं, लेकिन अकेले बैल का गोबर नहीं होना चाहिए। भैंस और जर्सी होस्टिन का मूत्र वर्जित माना गया है और गौमूत्र जितना पुराना होगा उतना ही लाभकारी सिद्ध होगा। जो गाय जितना ज्यादा दूध देती है उसका गोबर और मूत्र उतना ही कम प्रभावशाली होता है। और बूढ़ी या ऐसी देसी गाय जो दूध उत्पादन नहीं करती हो उसका गोबर एवं मूत्र अति उत्तम माना गया है।
1: बिल्कुल जी सर, थोड़ा सा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जीवामृत तैयार करते समय कुछ एक सावधानियां आपको रखनी होती है। ड्रम को ढकने के लिए जूट की बोरी का उपयोग सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें छिद्र होने से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन गैसें बाहर निकल जाती है। इस पर वर्षा का पानी भी नहीं गिरना चाहिए, सूर्य की रोशनी भी नहीं पड़नी चाहिए। अर्थात जीवामृत के ड्रम को जूट की बोरी से ढककर छाया में आप रख सकते हैं
0: जी। किसान भाई, अब बात करते हैं घन जीवामृत के बारे में। तो घन जीवामृत जीवाणु युक्त सूखी हुई गोबर का जामन है जिसे बुआई के समय या पानी के 2 से 3 दिन बाद भी आप दे सकते हैं। ये फसल की सभी गौण व सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकताएं प्रदान करता है। इसके उपयोग करने से कृषि भूमि में 2 से 3 ट्रॉली गोबर के खाद की अथवा केंचुए की खाद अथवा यूरिया या डाई अमोनियम फास्फेट डालने की जो है वो आवश्यकता किसानों को नहीं रहती। और इसके कई लाभ, घन जीवामृत जीवाणु युक्त सूखी गोबर भूमि के उपजाऊ बनाने का कार्य करती है। ये भूमि की उर्वरा क्षमता में सुधार करता है और इसके उपयोग से फसलों को तत्काल ऊर्जा मिल जाती है। सीमित सिंचाई एवं वर्षा ऋतु आधारित क्षेत्रों में फसलों को बहुत अच्छा इसका लाभ मिलता है।
1: बिल्कुल जी किसानों, बात चली है घन जीवामृत के बारे में। तो घन जीवामृत बनाने की विधि की जब बात आती है तो घन जीवामृत को किसान अपने खेत पर ही तैयार कर सकता है। इसको तैयार करने के लिए 3 विधियां जो है आपको अपनानी होती है। सबसे पहले विधि में ताजा गोबर 1 एकड़ कृषि भूमि के लिए बनाने के लिए जो सामग्री 1 एकड़ के लिए चाहिए होती है, इसमें देसी गाय का सूखा गोबर 100 किलोग्राम, गुड़ या फलों का गुद्दा 1 किलोग्राम, बेसन 2 किलोग्राम, देसी गाय का मूत्र जो है आपने आवश्यकता अनुसार लेना है। बनाने की विधि की जब बात आती है तो देसी गाय का सूखा गोबर लें। अगर देसी बैल भी हो तो इसमें 50-50 किलोग्राम गोबर गाय और बैल दोनों का आप ले सकते हैं। इसमें 1 किलोग्राम गुड़ या मीठे फलों का, 1 किलोग्राम गुद्दा और 1 किलोग्राम बेसन आप डाल सकते हैं
0: जी। यदि गोबर सूखा है थोड़ा गौमूत्र आप उसमें डाल सकते हैं और अब इसको फावड़े या कसी से अच्छी प्रकार आप मिला करके छाया में रख सकते हैं। ध्यान रखें कि घन जीवामृत तैयार करते समय ये अवश्य ही ध्यान रखें कि यदि शीत लहर है तो उसे बोरी से ढक दे, अन्यथा ढकने की आवश्यकता नहीं होती। और इस पर बारिश का पानी या सूर्य की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और उपयोग विधि की जहाँ तक बात है तो इसका उपयोग 48 से 96 घंटे में तैयार करने के तुरंत बाद किया जा सकता है और यदि कड़ाके की ठंड है तो 4 दिन के बाद आप इसका छिड़काव अपनी फसल पर कर सकते हैं। और जहां तक अशोक जी भंडारण अवधि की बात है तो इसका उपयोग 1 वर्ष तक हमारा किसान कर सकता है, यानी कि जब ये आपका घन जीवामृत जो है तैयार हो गया तो उसके 1 साल

0: तक जो है आप अपनी फसल में इसका छिड़काव आप कर सकते हैं।
1: जी, तो किसान भाई और बहनों, ये तो थी कुछ एक जानकारी जहर मुक्त खेती के बारे में। आप जहर मुक्त खेती को अपनाएं, कृषि बागवानी में इसको अपनाएं, ताकि आपका जो है खर्चा कम हो और अच्छी लागत आपको जो है फसलों की मिल सके।
0: जी, तो अशोक जी कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनाते हैं किसान और बागवान भाई बहनों को सुरेश शर्मा की आवाज में ये लोकगीत।
1: बिल्कुल जी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: सनु, ये तो सुना आपने सुरेश शर्मा की आवाज में लोकगीत। लोकगीत के बाद अब आपको जानकारी देंगे। जानकारी का विषय रहेगा जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक खेती। डॉक्टर रविंद्र सिंह जसकोटिया से बातचीत कर रहे हैं लेखराम। तो सनु, आइए चलते हैं इस बातचीत की ओर।
1: जी डॉक्टर रविंद्र जसरोटिया जी, नमस्कार।
2: जी नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, आपका हमारे आकाशवाणी स्टूडियोज में हार्दिक स्वागत है।
2: जी धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किसानों और बागवानों के लिए हर रोज कार्यक्रम में नए विषयों से संबंधित जानकारियां लेकर आते हैं, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का हमारे जीवन पर, हमारी खेती बाड़ी पर, बागवानी पर खासा असर पड़ता जा रहा है। आज कार्यक्रम में विषय यही है कि जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक खेती। इस विषय से संबंधित हम किसानों के लिए आपसे कुछ एक जानकारी हासिल करेंगे। ये हम सभी जानते हैं कि जैसे रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से हमारे खेतों की मिट्टी खराब होती जा रही है, हमारे पर्यावरण पर हमारा जल स्रोत दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, तो कौन कौन से वो समस्याएं हैं जो हमारे सामने दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे रहेगा कि जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक खेती है क्या।
2: जी धन्यवाद, सभी श्रोताओं का मेरा प्यार भरा नमस्कार। कृषि का पर्यावरण के साथ से गहरा नाता रहा है, खासकर भारत जैसे देश की में कृषि के अनुकूल आबो हवा परिस्थिति ने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई।
1: जी
2: कृषि क्षेत्र न केवल देश की रीढ़ है बल्कि 70% आबादी को रोजगार भी उपलब्ध करवाता है। यही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था में भी इसका योगदान 17% से ऊपर है। मगर पिछले कुछ दशकों से मौसम में आ रहे बदलाव कृषि पर प्रभाव डाल रहे हैं। फसल बुवाई किस बार लंबा होता, सूखे का दौर, बढ़ती गर्मी से नमी में कमी, सिंचाई के साधनों का सिकुड़ना तथा फसल कटाई से पहले वार्ष खेती की मुश्किलों को बढ़ा रहा है।
1: जी बिल्कुल,
2: साथ ही बेहतर उत्पादन और फसल सुरक्षा हेतु रसायनों का बढ़ता प्रयोग भी स्थिति को बदतर बना रहा है। अंततः अस्थिर उत्पाद और बढ़ती लागत से तंग आकर धीरे धीरे लोग खेती से भी पलायन कर रहे हैं।
1: बिल्कुल जी, और देखिए ये कुछ एक वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि समय पर ना तो बारिश हो रही है और ना ही गर्मी पड़ रही है। ऐसे में हमारे किसान और बागवान चिंतित है, सभी विश्व के सभी लोग भी, वैज्ञानिक भी निरंतर खोज कर रहे हैं इस विषय में।
2: जी अगर हम बात करें ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभावित 10 शीर्ष देशों में शामिल है।
1: अच्छा जी,
2: जलवायु की बदलती परिस्थितियां कृषि को सबसे अधिक प्रभावित कर रही हैं। वैश्विक स्तर पर हो रहे अनुसंधान साफ करते हैं कि जलवायु परिवर्तन और कहर बरपाएगा, जिसका सबसे ज्यादा असर विकासशील देशों के कृषि क्षेत्र पर होगा। जानकार कहते हैं कि भारत में 2039 के बीच जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 4.5% से 9% के बीच उत्पादन में गिरने की संभावना है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया।
1: अच्छा जी,
2: इस खेती का मुख्य उद्देश्य जो है किसी भी फैक्ट्री निर्मित उत्पाद जैसे कि कृषि रसायन, उर्वरक, इनका इस्तेमाल नहीं करना है।
1: अच्छा,
2: इसके लिए एक ये जो खेती है ये शुद्ध रूप से देसी गौ आधारित खेती है।
1: अब डॉक्टर साहब बात आती है कि प्राकृतिक खेती की जरूरत हमें क्यों महसूस हुई और ये जो प्राकृतिक खेती है ये है क्या।
2: प्राकृतिक खेती कृषि की ऐसी विधि है जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाते हुए कम लागत में खेती की तकनीक है। ये तकनीक रसायनों को हतोत्साहित कर देसी गाय के गोबर, गोमूत्र और

0: स्थानीय वनस्पतियों पर आधारित आदानों के प्रयोग का अनुमोदन करती है
1: जी।
0: ये खेती तकनीक किसान की बाजार पर निर्भरता को कम करती है। इस खेती का मूल मंत्र है गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा भी गांव में। प्राकृतिक खेती के चार स्तंभ हैं।
1: अच्छा।
0: बीजामृत, ये सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा बीजोपचार किया जाता है। इसके अंतर्गत जो भी बीज या कोई भी हमारा नर्सरी है या पौधे हैं वो जब खेत में लगाएं तो बीजोपचार से उसका किया जाए बीजामृत से।
1: अच्छा जी।
0: इससे क्या होता है कि एक तो बीज को और पौध को कीटाणुओं से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं, दूसरा जो बीमारियां होती हैं उससे भी ये बचे रहते हैं।
1: अच्छा।
0: दूसरा जो है हमारा वो है जीवामृत एवं घन जीवामृत
1: जी। अच्छा जी।
0: उनका जो अर्क निकाल कर उसमें से हम जैसे कि नीमास्त्र, नीम के पत्तों से नीमास्त्र बनाते हैं, अग्निअस्त्र बनाते हैं, ब्रह्मास्त्र बनाते हैं। ये जो ये अस्त्र हैं ये कीड़ों की रोकथाम में सहायक होते हैं।
1: अच्छा।
0: और जो जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, कीड़े का कीड़े के द्वारा समाधान किया जाता है। मित्र कीट जो होते हैं वो हमारे जो शत्रु कीट हैं उन पर निर्भर करते हैं और उनकी संख्या को नियंत्रित में रखते हैं ताकि हमारी फसलें बची रहती हैं।
1: बिल्कुल जी। और ऐसे पौधे जो हमारे किसान भाई जिन्हें बेकार समझते हैं
0: जी,
1: तो उन पौधों का भी इस्तेमाल करके, उन पत्तियों का भी इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई अपने लिए फायदेमंद प्राकृतिक खेती करके
0: जी,
1: जो उत्पादन है वो ले सकते हैं।
0: जी जी। हमने ऐसे पाया है विगत 5 वर्षों में कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका कि प्राकृतिक विधि से उसका इलाज नहीं किया जा सकता, रोकथाम नहीं की जा सकती। ऐसे कीट भी हमारे जो नियंत्रण में रहते हैं और पैदावार भी अच्छी होती है। किसानों के पास समझने की जरूरत है कि प्राकृतिक खेती में वो सब कुछ है जो किसान को चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: गुणवत्ता पूर्वक उत्पाद मिलेगा। खेती की जो हमारी मिट्टी की बनावट है, मिट्टी में उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ जाएगी, उसमें अच्छी बनेगी, उसमें आसानी से हम कृषि कार्य कर सकते हैं। इसके साथ जो है हमारा एक और इसका स्तंभ है जो आच्छादन है कि मल्चिंग करते हैं, ऊपर में एक पत्तों की या जो ऐसे घास फूस होते हैं उसकी एक लहर तय बिछा देते हैं
1: जी, उसके जी, क्या फायदे रहते हैं?
0: उसके फायदे होते हैं, एक तो जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी होती नहीं है, तो जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो जो पानी है वो रिस टपक टपक कर जमीन के भीतर जाता है और जमीन में नमी बनाए रखता है।
1: अच्छा जी।
0: और दूसरा जब बारिश नहीं होती है तो जमीन के अंतर्गत जो पानी होता है वो छोटी छोटी नालियों के माध्यम से ऊपर आता है, वो जो पौधे की जड़ों को उपलब्ध होता रहता है। इससे केंचुए जो केंचुए होते हैं जमीन में काम करते हैं उनकी गतिविधियां भी बनी रहती हैं, उनको ह्यूमस खाने को मिल जाता है, ऑर्गेनिक मैटर मिल जाता है और उसमें से जो है वो एक किसान का मित्र बन के काम करते हैं। असंख्य नालियां जो हैं खेती में उसमें जमीन में बनती हैं जिससे कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होता रहता है, जिससे कि पौधों की जड़ों को पोषक तत्वों की उपलब्धता बनी रहती है।
1: बिल्कुल। तो यानी कुल मिलाकर डॉक्टर साहब हम कहें कि हमारे आसपास हमारे परिवेश में जो भी वस्तुएं हैं उसका इस्तेमाल करके हम खेती बाड़ी के अंदर उसका इस्तेमाल करें।
0: जी मैं जी हमने विगत और हमारे एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक रहे हैं महाराष्ट्र से श्री सुभाष पालेकर जी ने, उन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद कुछ इसको स्टैंडर्डाइज किया गया है कि कितनी मात्रा में कौन सा तत्व डालना है, कौन सी वनस्पति कितनी मात्रा में डालनी है, जिससे कि हमारे अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र और ये दशपर्णी अर्कों की निर्मित करते हुए हम कीड़ों की रोकथाम भी कर सकते हैं और बीमारियों की रोकथाम भी कर सकते हैं।
1: जी बहुत बढ़िया। तो देखिए डॉक्टर साहब बातचीत हमारी रोचकता की ओर बढ़ती जा रही है, जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक खेती पर क्या परिवर्तन पड़ता है?
0: प्राकृतिक खेती जो है जलवायु परिवर्तन को सहने की क्षमता रखती है। प्राकृतिक खेती अगर हम किसान कोई प्राकृतिक खेती अपना रहा है तो उसमें एक तो जमीन से पोषक तत्वों की उपलब्धता में कोई कमी नहीं आती है
1: जी।
0: दूसरा जो है जमीन में नमी बनी रहती है। नीचे जो है जब हम मल्चिंग करते हैं तो हमारे बहुत सारे असंख्य माइक्रोब जो है वो नीचे काम करते हैं जो कि पौधे के लिए लाभदायक रहते हैं।
1: अच्छा।
0: दूसरा जो जो पौधा होता है प्राकृतिक खेती से उसकी जड़ें विकसित होती हैं, अच्छे से बनी होती हैं और उनमें नीचे से पानी सोखने की क्षमता रहती है।
1: अच्छा।
0: दूसरा अगर कोई ज्यादा बारिश हो जाए, हमने पाया है कि जब बहुत सारी तूफान या आंधियां आती हैं प्राकृतिक खेती से जो फसल पैदा होते होती है वो उनमें ये सारी चीजें सहन करने की क्षमता होती है, वो नहीं गिरते हैं।
1: अच्छा।
0: इसी के साथ जो उत्पाद में अच्छी रहता है जब भी कोई जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन के मायने हैं कि समय पर बारिश ना होना, लेट बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, ऐसे कोई झंझावत या तूफान आ जाना, इन सभी चीजों से जो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत फसलें जो तैयार हो रही होती हैं उनमें रसायन विधि से जो हमारी रासायनिक खेती है उसके वनस्पत उससे हम तुलना करें तो प्राकृतिक खेती में जलवायु परिवर्तन में और अच्छा करने की क्षमता है।
1: जी बिल्कुल।

0: बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा कि अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो हमारे प्रदेश में प्राकृतिक खेती की कुछ संभावनाएं हैं क्या?
1: जी जी जी जी बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारे हिमाचल प्रदेश में जब हमने ये शुरुआत करी थी प्राकृतिक खेती की वर्ष 2018 में, और एक भी किसान से ऐसी कोई हमें रिपोर्ट नहीं मिली है कि उत्पादन में कमी आई हो। और जो हमारा इसमें क्षेत्रफल है प्राकृतिक खेती के अंतर्गत 29,000 हेक्टेयर के आसपास है।
0: अच्छा,
1: इसमें बड़ी रोचक बात यह है कि जो हमारे बागवान ये समझते थे कि बिना रसायन के बागवानी, ज्यादातर सेब की बागवानी नहीं की जा सकती, वहां पर भी हम इसमें ये समझाने में सफल हुए हैं। प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो सेब उत्पादन होता है वो उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, उसमें कोई कमी नहीं, पैदावार में कमी नहीं होती है, उसमें बीमारियों से लड़ने की ज्यादा क्षमता होती है, उसमें पत्ते का गिरना भी कम रहता है, और वो जो पैदावार है, जो उत्पाद है हमारा, बहुत अच्छा एक किस्म से चमकीला और बहुत बढ़िया रहता है। जी जी जरूर जी। हमारे जो श्रोता किसान भाई बहन या बागवान भाई बहन हमें सुन रहे हैं, मेरी उनसे एक प्रार्थना है और उनसे ये प्राकृतिक खेती के बारे में पूरी जानकारी लें। हम 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी किसान के खेतों में जाकर लगाते हैं, उसमें वो भाग लें और इसमें जो विभिन्न उनके मन में जो भी प्रश्न है या कुछ भी शंकाएं हैं वो सारे का सारा उनका निपटारा वहां पर हो जाएगा।
0: जी बिल्कुल।
1: हम किसानों के लिए जहां जो किसान अच्छा कर रहा है प्राकृतिक खेती में, उसके जाकर उसके खेतों में जाकर देखें, उससे सीखें कि उसने विभिन्न बीमारियां, रोकथाम, कीड़ों का रोकथाम कैसे किया है, उससे भी बातचीत कर सकते हैं। किसान के द्वारा करते हुए देखकर और भी ज्यादा प्रेरणा मिलती है। मेरा उनसे सुझाव है कि जरूर इस तरह से आप, हम एक्सपोजर विजिट्स भी कंडक्ट करवाते हैं, हमारे पास साहित्य भी रहता है किसी को अगर चाहिए, हमारे यूट्यूब के में भी है, सारी लगी हुई है, किसानों की सफलता की कहानियां भी हमने बनाकर रखी हुई है।
0: तो डॉक्टर रविंद्र जसरोटिया, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक खेती पर आपने हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बढ़िया जानकारी मुहैया करवाई, ये सब जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
1: मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
2: किसान भाई, अभी आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी सुनी, विषय था जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक खेती के बारे में, और डॉक्टर रविंदर सिंह जसकोटिया से बात कर रहे थे लेखराम, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस ज्ञानवर्धक जानकारी से अवश्य ही लाभ उठाएंगे। अशोक जी, कार्यक्रम में फिर से बारी है एक और लोकगीत की, तो आइए सुनते हैं रोशनी शर्मा की आवाज में ये लोकगीत।

0: सानू ये तो सुना आपने रोशनी शर्मा की आवाज़ में लोकगीत। इसी लोकगीत के साथ अब हमारे आज के इस कार्यक्रम का समय भी यहीं संपन्न हो चला।
1: कल हम फिर मिलेंगे एक नया विषय नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। एफएम शिमला पर लेकर आएंगे आप सभी के लिए ढेर सारे कुछ नए तो कुछ पुराने, लेकिन अभी उससे पहले बहुत कुछ है आप सभी के लिए हमारे एफएम शिमला पर। तो बस यूं ही बनाए रखिए अपना साथ एफएम शिमला।

0: कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुरा धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला पर भी सुना जा सकता है।

0: प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध है।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
2: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस व भाजपा में जीत के दावों का दौर जारी। कांग्रेस ने इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल मानने से किया इनकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का दावा, जनाधार खो चुकी है राज्य सरकार, प्रदेश भर में कांग्रेस को मिली करारी हार। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार ने लघु व सीमांत किसानों के भूमि कब्जों को नियमित करने के लिए तैयार की नीति, मंत्रिमंडल की बैठक में होगी चर्चा। प्रदेश में हरित पंचायतों की आय का 25% हिस्सा अनाथ व विधवाओं के कल्याण पर खर्च करेगी सरकार। और बेनतीजा रही नगर निगम शिमला की वार्षिक आम बैठक, चर्चा के बाद आगामी रणनीति तय करेंगे सहब सोसाइटी के कर्मचारी। अब समाचार विस्तार से। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में 8 में से सिर्फ 4 नगर निगमों में चुनाव हुए हैं और इन्हें विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल कहना गलत है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि प्रदेश में लगभग 2400 पंचायतों में कांग्रेस समर्थित प्रधान जीते हैं, लेकिन पंचायत की असली ताकत वार्ड मेंबर की होती है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधान, उप प्रधान और सभी वार्ड मेंबर का एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल मानने से इनकार किया।
1: पहली बात तो यह है कि ये जो पंचायती राज चुनाव जो हुए हैं, ये कोई हमारे पार्टी सिंबल पे नहीं हुए, ये जो है एक ओपन जो है चुनाव थे। ये ठीक है कि कॉर्पोरेशन के चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पे हुए, 4 के चुनाव हुए और उसमें 3 पे इनकी जो है पार्टी के लोग है जीते हैं, 1 में हमारे भी जीते हैं। तो ये तो जो है किस्म से ना तो सेमीफाइनल था ना क्वार्टर फाइनल था।
0: पंजाब में हिमाचल की गाड़ियों से खालसा टैक्स वसूलने के सवाल पर राजस्व मंत्री ने कहा कि इस तरह की अवैध वसूली पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे लेकर पंजाब सरकार के साथ बातचीत की है और इस मामले को उचित स्तर पर उठाया जा रहा है।
1: ये एक सोची समझी साजिश के तहत है। ये हर प्रदेश सरकार का अपना एक अधिकार क्षेत्र है कि आप किस किस्म के टैक्स लगाएंगे, वो तो पंजाब सरकार को देखना कि ये बिल्कुल गलत है। इस किस्म की जो है कोई भी अगर कोई काम करता है वो कानूनन बिल्कुल गलत है, तर्कसंगत नहीं है, हम उसका जो आलोचना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने बात भी की है, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी नतीजों से ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस सरकार अपना जनाधार खो चुकी है और सरकार की नीतियों से लोग तंग आ गए हैं। उन्होंने आज कुल्लू

0: प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा के साथ पंचायतीराज व नगर निकायों के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में शिरकत की। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनावों में अपनी जीत के खोखले दावे कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि प्रदेश भर में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की बुरी तरह हार हुई है।
1: बहुत बड़ा संदेश है हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को कि आपके पांव के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, और खास तौर से मुख्यमंत्री जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के, क्योंकि जन विरोधी नीतियां पूरे हिमाचल प्रदेश में 3.5 वर्ष के कार्यकाल में जो जनता के ऊपर थोपी गई, जो फैसले लिए गए, जिनके कारण

0: इसकी कांग्रेस की सरकार को कि आपके पांव के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, और खासतौर से मुख्यमंत्री जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के, क्योंकि जन विरोधी नीतियां पूरे हिमाचल प्रदेश में 3.5 वर्ष के कार्यकाल में जो जनता के ऊपर थोपी गई, जो फैसले लिए गए, जिनके कारण हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ जो है वो रोष है, आक्रोश है लोगों के बीच में, वो जाहिर हुआ इन चुनावों में। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी, उस मजबूत आधार जो है इस चुनाव के परिणाम के साथ रखा गया।
1: चंबा नगर परिषद में भुवनेश्वरी गुलाटी को अध्यक्ष और जितेंद्र सूर्या को उपाध्यक्ष चुना गया है। ये दोनों कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं और इन्हें 7-7 मत प्राप्त हुए हैं। भुवनेश्वरी गुलाटी ने कहा कि चंबा शहर को स्वच्छ बनाना व सड़कों का सुधार करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि चंबा में वर्षों पुराने कूड़ा संयंत्र निर्माण की मांग को भी जल्द पूरा किया जाएगा।
2: सबसे पहले तो मैं अपनी चंबा की समस्त जनता का तह दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मौका मिला जनता की सेवा करने का, और स्वच्छ, सुंदर और विकसित चंबा बनाना मेरा सपना है। और चंबा को एक, हम जितने 10 सालों में कार्य नहीं हुए, मैं चाहूंगी कि हम 1.5-2 साल में वो कार्य करके दिखाएंगे। पारदर्शिता सबसे जरूरी है, वो हम रखेंगे।
1: प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों में से 99% निर्णय पूरी तरह कार्यान्वित किए जा चुके हैं। शिमला में आज मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी मौजूद रहे। नेगी ने बताया कि 13 जनवरी 2023 से 25 जून 2025 तक मंत्रिमंडल की बैठकों में 1160 निर्णय लिए गए, जिनमें से 99% निर्णय कार्यान्वित किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को शेष निर्णयों को समयबद्ध संचालित करने के निर्देश दिए। एक अन्य मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में लघु व सीमांत किसानों के लिए भूमि नीति पर चर्चा की गई। जगत सिंह नेगी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर लघु व सीमांत किसानों के भूमि कब्जों को नियमित करने के लिए नीति तैयार कर ली गई है, और इस पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसे भारत सरकार को भेजा जाएगा। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में हरित पंचायतों की आय का 25% हिस्सा अनाथों और विधवाओं के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि हरित पंचायत पहल अब राज्य भर के अनाथों और विधवाओं का कल्याण करेगी। उन्होंने कहा कि इस पहल के सामाजिक कल्याण पक्ष को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने राजस्व वितरण मॉडल में संशोधन करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम के तहत प्रदेश की 100 ग्राम पंचायतों को 500 किलोवाट क्षमता की भूमि आधारित सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं से प्राप्त आय का 20% राज्य सरकार को दिया जाएगा, जबकि 25% हिस्सा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत देश भर के लगभग 100 युवा इन दिनों किन्नौर जिले के दौरे पर हैं। एक सप्ताह तक ये युवा अलग अलग गांव का दौरा कर स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में बिहार, दमन व दीव, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के प्रतिभागी शामिल हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
3: देश भर से आए करीब 100 युवा हफ्ते भर तक किन्नौर की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, विरासत, राजनीतिक महत्व और परंपराओं से रूबरू होंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत किन्नौर के इस भ्रमण के दौरान युवाओं को यहां के अलग अलग गांव में जाकर स्थानीय लोगों, पंचायतों, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों से मिलने का भी अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत संचालित माय भारत द्वारा किया गया है। आकाशवाणी के किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: नगर निगम शिमला में सहब कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आज वार्षिक आम बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि सहब सोसाइटी के सभी निष्कासित कर्मचारियों की सेवाएं बहाल की जाएंगी। उन्होंने बताया कि सहब कर्मचारियों के वेतन में 10% बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी बैठक में आया है। दूसरी ओर सहब कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष जसविंदर

0: सिंह ने कहा कि इस बैठक में शहरी विकास मंत्री और स्थानीय विधायक शामिल नहीं हुए, इसलिए वे इस बैठक को एजीएम नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों के साथ बातचीत के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। शिमला में एक तहबाजारी की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सीटू से संबंधित रेहड़ी फड़ी तहबाजारी यूनियन ने आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर इस मुद्दे पर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। यूनियन का आरोप है कि नगर निगम की कार्रवाई व कर्मचारियों द्वारा पैदा किए गए खौफ के कारण इस तहबाजारी की मौत हुई है। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत रेहड़ी फड़ी वालों को देश में कहीं पर भी काम करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि 31 मई को नगर निगम की कार्रवाई के दौरान चंदन नामक विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गया और पिछले कल उनकी मौत हो गई।
1: देश के अंदर एक कानून है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जो 2014 में बनाया गया। ये कानून की मूल भावना क्या है कि किसी भी तहबाजारी को उजाड़ा नहीं जा सकता बल्कि उसको बसाना है। इसके बावजूद आए दिन जो कार्रवाई नगर निगम प्रशासन करता है, जहां गाड़ियां दौड़ाता है, लोगों के पीछे भागते हैं, उनका सामान छीनते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, 31 मई को 3:30 बजे आईजीएमसी के पास जो साथी चंदन और दूसरे साथी जो वहां काम करते हैं, बहुत गरीब लोग हैं वो साथी जो अपना सामान समेट रहे थे और उसी अफड़ा दफड़ी में गिर गए, वो वहां पर घायल हो गए और पिछले कल उनकी मौत हो गई। हम ये कहना चाहते हैं ये गैर इरादतन हत्या है।
0: सनराइज सोशल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल एसोसिएशन ने कुल्लू जिले में पिछले वर्ष क्षतिग्रस्त हुई बागीपुल निर्मंड अवेरा चंभू नहर को जल्द दुरुस्त करने की राज्य सरकार से मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सुभाष मोहन सनेही ने कहा कि क्षेत्र में धान की रोपाई के लिए ये नहर अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रशासन के उदासीन रवैये से किसान बागवान परेशान हैं। सनेही ने कहा कि इस नहर के क्षतिग्रस्त होने से इलाके के हजारों किसान सिंचाई सुविधा से वंचित हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस व भाजपा में जीत के दावों का दौर जारी। कांग्रेस ने इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल मानने से किया इनकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का दावा, जनाधार खो चुकी है राज्य सरकार। प्रदेश भर में कांग्रेस को मिली करारी हार। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार ने लघु व सीमांत किसानों के भूमि कब्जों को नियमित करने के लिए तैयार की नीति, मंत्रिमंडल की बैठक में होगी चर्चा। प्रदेश में हरित पंचायतों की आय का 25% हिस्सा अनाथ व विधवाओं के कल्याण पर खर्च करेगी सरकार। और बेनतीजा रही नगर निगम शिमला की वार्षिक आम बैठक, चर्चा के बाद आगामी रणनीति तय करेंगे सहब सोसाइटी के कर्मचारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। वन लगाएं, पर्यावरण बचाएं, ये संदेश सबको बताएं।

वनों की ताज़ी हवा हमारे पर्यावरण को शुद्ध करती है, बारिश में हमारी मदद करती है, कड़ाके की धूप में हमें छांव देती है।

हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं वनों का महत्व विषय पर डॉक्टर संजय सूद, वन प्रमुख वन विभाग है।

0: हिमाचल प्रदेश से भेंट वार्ता। भेंटकर्ता सपना ठाकुर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के हमीरपुरा धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला पर भी सुना जा सकता है।
1: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। समूचा हिमालय क्षेत्र देश को ऑक्सीजन देने और पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए कहा भी जाता है कि वनों से वायु और वायु से आयु का सीधा संबंध है। वन यानी जंगल हमारे जीवन के आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सरोकारों का हिस्सा है। आज हम बात करेंगे वनों के महत्व पर। हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर संजय सूद जी। आप वन प्रमुख वन विभाग हिमाचल प्रदेश हैं। डॉक्टर संजय सूद, आकाशवाणी स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर संजय सूद। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि हिमाचल के संदर्भ में वनों का क्या महत्व है और इसके संरक्षण और प्रबंधन में वन विभाग द्वारा क्या गतिविधियां की जा रही हैं।
2: सप्ता जी, सर्वप्रथम आप सभी को और श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात की है कि हिमाचल के वनों का क्या महत्व है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल के वनों का एक असीम महत्व है, पूरे प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए या पूरे देश की दृष्टि से देखा जाए। भौगोलिक तौर पे अगर आप देखें तो जितना हमारा भौगोलिक क्षेत्र है हिमाचल का, वो लगभग 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है। उसमें से कानूनी तौर पर करीब 2/3 से अधिक, लगभग 68% जो हमारी भूमि है वो वन भूमि के अधीन आती है। लेकिन अगर आप हरित आवरण की बात करें, जिसमें वहाँ के वृक्ष अच्छे वृक्ष हैं, तो वो करीब करीब 28% जो हमारा क्षेत्र जो है वो वनों से आच्छादित है। और अगर इसमें एक ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट होता है उसको भी जोड़ दिया जाए तो ये जो आंकड़ा है ये लगभग 29.5% का बन जाता है। तो वनों से हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे प्रत्यक्ष से लाभ हमारे को मिलते हैं। हम हिमाचल के लगभग 90% लोग जो हैं वो वनों पर निर्भर है, उनकी निर्भरता रहती है। उसमें उनको चारा मिलता है, पशुओं के लिए जो है, और फिर इमारती लकड़ी उसमें से आती है, हमारा बालन उसके अंदर से आता है, जड़ी बूटियां हमें वनों से प्राप्त होती है। ये सब तो प्रत्यक्ष है, लेकिन अगर आप इसके अप्रत्यक्ष लाभ जिसकी आपने बात की हुई, वायु की आपने बात की, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये जो है। एक वृक्ष में आपको कहना चाहूंगा कि एक वर्ष में लगभग 2,73,000 किलो ऑक्सीजन देता है, 50 वर्ष का कोई वृक्ष होता है। और ये आंकड़ा इतना है कि इससे 2 लोगों को जीवन वायु प्रदान होती है।
1: जी बिल्कुल।
2: जितना व्यक्ति एक अपनी सांस लेने में काम आता है उसको लगभग 1,30,000 किलो चाहिए, तो एक वृक्ष 50 वर्ष का 2,73,000 किलो ऑक्सीजन प्रतिवर्ष देता है। इसी तरह से जो हमारा जल चक्र है उसको संतुलित करने में वनों का बहुत बड़ा महत्व है। तो देखिए, हमारा जब मत्स्य पुराण की हम बात करते हैं उसमें लिखा हुआ है, दशा कूपो समा वापी, दशा वापी समा हृदा, दशा हृदा समो पुत्र, दशा पुत्रो समाद्रुमा। मतलब आप 10 जो कुएं बनाने की जगह एक बॉडी बनाइए, 10 बौड़ियां बनाने की जगह एक तालाब बनाइए, और 10 तालाब भी जितना आपको अपना पानी इकट्ठा करके नहीं दे सकते, उतना अकेला एक वृक्ष वो अपने जमीन से उसको सोख कर अपने जल चक्र में प्रभावित करता है। तो एक बहुत बड़ा योगदान उसमें रहता है। प्रदूषण नियंत्रण जो है वो वनों से होता है, तभी जो अच्छे वन है वहाँ प्रदूषण कम होगा। इसी तरह से आप देखो तो जो हमारे पशु पक्षियों की प्रजातियाँ बहुत सारी, वो सब वनों पर निर्भर करती हैं। एक वृक्ष के ऊपर कम से कम 250 प्रजातियाँ पशु पक्षियों की, कीट पतंगों की, वो निर्भर रहती हैं। तो बहुत बड़ा योगदान है। इस सब का मूल्यांकन किया जाए तो करीब वर्ष 2000 में इसमें एक साइंटिफिक शोध हुआ और ये पता लगाया गया कि एक वृक्ष की कीमत लगभग 1,25,00,000 रुपये बनती है। अब तो ये आंकड़ा लगभग दुगना हो चुका होगा इस बारे में। तो एक इतना बड़ा महत्व वनों का है। और हिमाचल की वनों की जहाँ की आप बात करें, ये सब तो हमें देते ही देते हैं, पर मैं समझता हूँ कि हिमाचल के वन ना केवल हिमाचल के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो पूरे हमारा जो मैदानी क्षेत्र है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितने भी हमारी मुख्य नदियां हैं हिमाचल की, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, ये सब हिमाचल के वनों से होकर निकलती हैं। और इससे अगर ये वन नहीं होंगे हमारे, तो बहुत सारा भूमि कटाव होगा, जिससे हमारा मैदानी क्षेत्रों में जो हमारे अन्न का उत्पादन है वो बहुत अधिक तरह से प्रभावित होगा। तो इसकी बहुत आवश्यकता है हिमाचल के वनों की।
1: डॉक्टर संजय सूद, जैसे कि आपने कहा कि वन हमें प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से हमारी सहायता करते हैं, पर्यावरण संतुलन में वनों का विशेष महत्व है और वृक्षों का भी विशेष महत्व है। तो स्वच्छ पर्यावरण के लिए हमें वृक्षों को किस तरह बढ़ाना है, किस तरह से उन्हें लगाते जाना है। कहते हैं एक अगर पेड़ आप लगाते हैं तो पर्यावरण और शुद्ध होता जाता है।
2: बिल्कुल ठीक कहा कि ये तभी संभव है। पर्यावरण को शुद्ध रखना ये अकेला एक विभाग का दायित्व नहीं है, पूरे समाज का दायित्व है।
1: जी बिल्कुल।
2: तो इसमें तभी हम आगे बढ़ पाएंगे अगर हमारे समाज के लोग आकर जुड़े। बहुत सारी योजनाएं इस बारे में हमारी जो सरकार चला रही है इसमें, जिसमें कि लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित किया गया है
1: जी।
2: और उन योजनाओं के माध्यम से हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं उसके अंदर जो है। तो सभी लोग अगर वृक्ष लगाएं, कम

0: कम 5 वृक्ष लगाएं, उनका जो है संरक्षण करें, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा योगदान समाज के प्रति होगा।
1: जैसे कि आपने संरक्षण की बात की, तो वनों के संरक्षण में जो स्थानीय लोग हैं उनकी अहम भूमिका रहती है, तो इस उद्देश्य से जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए वन विभाग द्वारा क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं? राजीव गांधी संवर्धन योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
0: देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लगभग जो हमारा जो वन आच्छादित क्षेत्र है, जो हरित जो हमारा क्षेत्र है, वो लगभग इस समय 28% का है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो इसको हमारा जो लक्ष्य है, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बजट स्पीच में कहा कि हमारा मिशन 32, वो इसको जो है बढ़ाकर 32% करना चाह रहे हैं हम लोग, और ये आने वाले 4 या 5 वर्षों में हमने ये पूरा करना है,
1: यानी 2030
0: से 2031 तक। तो ये कठिन कार्य है, लेकिन लोगों की सहभागिता से निश्चय ही हम ये पूरा कर सकते हैं। तो आपने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की बात की, बहुत अनूठी और बहुत बढ़िया योजना हमारी सरकार ने इस बार में चलाई हुई है। पिछले साल इसको शुरू किया गया, पूरे प्रदेश में लगभग 1100 हेक्टेयर पे हमने बहुत सारे महिला मंडल, 300 महिला मंडल से अधिक, इसी तरह से युवक मंडल और अन्य स्वयं सहायता समूह जो है उनके माध्यम से प्लांटिंग करी। पर प्रति हेक्टेयर जो है प्लांटिंग का खर्चा लगभग 1,20,000 रुपये आया, तो लोगों द्वारा ही सब कार्य किया गया। और इसमें ये सबसे अनूठी बात यह है कि अगर जीवित प्रतिशतता अगर आने वाले समय में अच्छी रहती है तो लोगों को इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे, और 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के लिए बहुत बड़ी बात है लोगों को वनों से जोड़ने के लिए। ऐसी योजनाएं हम चला रहे हैं तो इससे बड़ा फायदा हो रहा है। इसी तरह से एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक है मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना, वो भी हमारे प्रदेश में चल रही है। तो जो हमारे सूखे क्षेत्र हैं, पथरीले क्षेत्र हैं और ऐसे जिसमें सॉइल इरोजन ज़्यादा है, उन क्षेत्रों को हम पकड़ रहे हैं। उनमें काम करना थोड़ा कठिन है, लेकिन इंटेंसिव इनपुट्स के साथ में हमारे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। पिछले साल हमने करीब 100 हेक्टेयर एरिया पकड़ा था, हमारे को अच्छे रिजल्ट्स उसमें मिले हैं। तो अगर ऐसी भूमि को हम वृक्षों से आच्छादित करने में सक्षम हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ हम भी लक्ष्य पूरा कर पाएंगे,
1: यानी चारों तरफ हरियाली ही।
0: जी ये होना तो यही चाहिए। बिल्कुल
1: सूजी, जैसे आपने कहा कि हमारे प्रदेश में 28% हिस्सा वनों से घिरा हुआ है, तो इसके आवरण को बचाने और इसको बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
0: इसके बचाने के लिए तो हमारे पास लगभग पूरे स्टेट में 2,059 फॉरेस्ट बीट्स हैं, तो उसमें हमारे फॉरेस्ट गार्ड रहते हैं। हमें यहाँ पर वन मित्रों को भी अभी सरकार ने नियुक्त किया है।
1: वन मित्र की आपने बात की, तो इनका क्या कार्य रहता है?
0: इनका देखिए, ये जो वन मित्र थे ये लोकल लोग हैं, वहीं के मेरिट के आधार पर उनको सिलेक्शन किया गया है। तो ये जो हमारा फॉरेस्ट का जो हमारा लाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ये लोगों की मदद करते हैं, हमारे लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि स्थानीय लोग हैं, इनको पूरी जानकारी वहाँ की रहती है। स्थानीय लोगों को कैसे वानिकी योजनाओं से जोड़ना है, कैसे वनों की प्रोटेक्शन करनी है, कैसे उनकी देखभाल करनी है, उसमें ये सहयोग कर रहे हैं। तो एक तो ये हमारी इस तरह की चीज़ है। हमारे पास जो मैंने बताया आपको 2,059 फॉरेस्ट बीट्स हैं, उसमें हमने अपने गार्ड्स को नियुक्त कर रखा है, उसके ऊपर डिप्टी रेंजर्स हैं, हमारे रेंज ऑफिसर्स, एक पूरी एक लाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक पूरा सिस्टम है जो कार्य करता है। तो कहीं भी कोई वनों को नुकसान आदि की कोई समस्या रहती है या ऐसी कोई शिकायत रहती है तो हम मिलजुल कर इसके प्रयास करते हैं कि वैसा ना हो, तो वनों का संरक्षण एक सुचारू तरीके से,
1: यानी वनों का संरक्षण और विस्तार जो है होता रहे। ये विस्तार को लेकर और संरक्षण को लेकर भी आपके समक्ष चुनौतियाँ
0: जी बिल्कुल आती है। अभी मैंने कहा कि चुनौतियां बहुत सारी हैं। अब मैंने आपको कहा कि देखिए क्षेत्र तो लिमिटेड है, अब उसको हमने बढ़ाना है।
1: बिल्कुल।
0: तो अब जो हमारे पास बचे एरियाज हैं वो एक तो पथरीले एरियाज हैं, सूखे एरियाज हैं, उसमें जो है सॉइल इरोजन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, एक तो ये बात है। ऊपर से हमारी जो वन अग्नि है ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए समस्या है। तो इन समस्याओं के बीच भी हमने आवरण को बढ़ाने में सहयोग करना है, लोगों को भी साथ लेके चलना है, तो वो हमारे लिए एक चुनौती तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम इस चुनौती को अच्छी तरह से पार कर पाएंगे।
1: डॉक्टर संजय सूद, जैसे कि हम वनों के संरक्षण विस्तार की बात कर रहे हैं और वृक्षों की भी बात कर रहे हैं कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, तो बात करते हैं कि हर एक वर्ष गर्मी का जब मौसम आता है वनों में आग लगने की समस्याएं जो है घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे वनों को नुकसान पहुंचता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि वनों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है और क्यों ये आग लगती है हर वर्ष?
0: देखिए, आपने बड़ा एक प्रासंगिक प्रश्न मुझसे पूछा है। देखिए, जैसे अब गर्मी आती है, टेम्परेचर बढ़ते हैं, जब तापमान बढ़ता है तो नमी भी कम हो जाती है, और जब नमी कम होती है तो बहुत सारे सूखे पत्ते, चिलारू इत्यादि वनों में फैल जाती है, उनकी बहुत तादाद बढ़ जाती है, उस कारण से ये ज्वलनशील हो जाता है, तो वनों में आग लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया सी बन जाती है। लेकिन ये हम कोशिश कर रहे हैं कि इन आग की घटनाओं में काबू पाया जा सके, उसके लिए भी बहुत अच्छा हमने जो हमारा एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर इस वर्ष की बात करें तो कुछ देखिए कुछ दिनों के टेम्परेचर बढ़ा तो 337 घटनाएँ हुई, तो उसमें थोड़ा नुकसान भी हुआ। हमारा करीब 1300 हेक्टेयर जो एरिया है वो पूरा इम्पैक्ट हुआ उसके अंदर, और उसमें 300-400 हेक्टेयर की प्लांटेशंस भी हमारी इम्पैक्ट हुई थी उसके अंदर, करीब करीब 1,19,00,000 रुपए का नुकसान भी हुआ, जो प्रारंभिक है। कुछ समय के बाद जब बारिश होती है तो ये नुकसान फिर कम हो जाता है, कि कुछ पौधे

0: से जीवित हो उठते हैं उस समय में। अब इनको इन घटनाओं पे काबू पाने के लिए मैं दो तीन पहले तो कहना चाहूँ, ये क्यों होती है वनों में आग की घटना। एक तो इंसानी गलती से हो जाती है, कोई बीड़ी सिगरेट जलाता हुआ छोड़ देता है, उससे हो जाता है। कभी लोग शहद आदि इकट्ठा करने के लिए जंगलों में जाते हैं, वहाँ कुछ जली हुई चीज़ वहाँ छोड़ देते हैं, धुआं इत्यादि देने के लिए लगाते हैं, जो उस कारण से ये आग ज़रा फैल जाती है। दूसरी, कभी कभी शरारती तत्व भी इस विषय में काफ़ी उनका भी बड़ा सारा योगदान रहता है, वो भी कभी कभी ऐसा काम कर देते हैं। उसे हमें रोकना है, मेन चीज़ तो ये है। और तीसरा, प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, कभी कोई बिजली गिर जाती है जंगलों के ऊपर, या कोई पत्थरों में घर्षण हो जाता है, उससे भी आग की संभावना हो सकती है। तो
1: जी
0: तीनों चीज़ें देखी गई हैं, लेकिन जो रोकने की बात है कि शरारती तत्व जो हैं उनको इस विषय में रोका जाए, तो इसमें कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं। अगर कोई जंगलों में आग लगाता है तो उसको मतलब 2 साल की सजा तक हो सकती है, 5,000 रुपये जुर्माना तक हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: और उनके जो लोगों के जो आग लगाते हैं उनको अगर पकड़े जाएं तो उनके हकूक जो होते हैं, जैसे TD इत्यादि है, वो भी अगले कुछ वर्षों के लिए बंद की जा सकती है। तो इस तरह के प्रावधान हैं, कोशिश भी की जा रही है। और फिर हमने कुछ वॉलंटियर्स हैं, करीब 90,000 वॉलंटियर्स हैं पूरे स्टेट में, जब आग लगती है उस समय
1: जी
0: आग बुझाने में हमारा सहयोग करते हैं। उनके मोबाइल नंबर्स वगैरह सब डिटेल्स हमारे पास हैं, तो जहाँ भी आग लगती है उनको सूचना दी जाती है और वो काफ़ी हद तक हमारा साथ भी देते हैं। इसी तरह से एक कंट्रोल रूम हमने पूरे स्टेट में बनाया, जो कि पूरा दिन चलता है, 24/7। वो बिलासपुर में लोकेटेड है, उसका नंबर है 1800-180-1916। तो आग की कोई भी सूचना या जानकारी उस कंट्रोल रूम पर दी जा सकती है, और फिर उसके आगे जो है फिर कार्रवाई उस कंट्रोल रूम से
1: जी
0: बाकी के जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको दी जाती है।
1: स्थानीय लोगों में जन जागरूकता और जन सहयोग की भूमिका अपेक्षित है।
0: बिल्कुल अपेक्षित है। जो वन है वो हम सबकी धरोहर है, किसी
1: बिल्कुल
0: विभाग के नहीं है, वन तो हम सबके हैं। और हिमाचल इसीलिए भी सुंदर माना जाता है कि उसमें वन अच्छे हैं।
1: जी
0: तो जब तक लोग, स्थानीय लोग हैं, उनके संरक्षण में आगे नहीं आएंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा इस चीज़ को काबू पाना जो है।
1: हमारे प्रदेश की सुंदरता हरियाली है,
0: जी जी जी
1: तो
0: बिल्कुल।
1: स्वच्छ पर्यावरण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, स्वच्छ पर्यावरण में देखिए प्रकृति के 5 तत्व हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: उसमें सबसे पहले
1: वन
0: भूमि
1: वायु
0: आता है, फिर वायु आता है, फिर आकाश आता है, फिर अग्नि आता है, और फिर नीर आता है। इसका अगर पहला शब्द आप सब जोड़ दें तो भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से आपकी अग्नि, और न से नीर। तो
1: बिल्कुल
0: ये भगवान इस संबंध है। तो मैं समझता हूँ कि इन 5 तत्वों को जो सबसे बड़ा सामंजस्य जो बना के रखता है, जो इकाई पूरी एक सृष्टि में वन है, तो सामंजस्य इसी में देखा जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा कि प्रकृति और वृक्षों में ही देवता निवास करते हैं, हम देवभूमि में रहते हैं।
0: बिल्कुल, देवभूमि में रहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं, चाहे आप सकंद पुराण में देखें, चाहे यजुर्वेद में देखें, उसमें वृक्ष को कितनी बड़ी महत्वता दी गई है, जिसमें कहा गया है, मूलम ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा रुद्रो महेश्वरा पातले पातले देवानाम वृक्ष राजन मस्तुते। जिसके मूल में ब्रह्मा का निवास है, तने में भगवान विष्णु का निवास है, और शाखाओं में भगवान शंकर का निवास है, पत्ते पत्ते पर देवता निवास करते हैं, हे वृक्ष हम आपको नमस्कार करते हैं। इसीलिए क्योंकि वो वृक्षों से ही तो सब कुछ है, हम हमारे जीवन में जो है, अगर वृक्ष अच्छे नहीं होंगे तो शायद ये जीवन एक तरह का सार्थक नहीं रह जाएगा हम लोग पूरे प्रदेश।
1: बहुत बढ़िया बात कही, हम सबको मिलकर अपने वनों को बचाना है, वृक्षों को लगाना है, तभी हम अपने पर्यावरण की सही देखभाल कर
0: पाएंगे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये तो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, पर्यावरण दिवस कल है, कल हम एक नया कार्यक्रम जिसमें चिनार के वृक्ष हम पूरे शिमला के आसपास लगाने जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो हिमाचल के हैं वो उसका शुभारंभ करेंगे, आगे भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह से बुरांश के वृक्ष हम आगे लगाने जा रहे हैं, और बहुत सारी प्रजातियां जो शिमला के आसपास होती हैं लगाई जाएंगी। ये जो चक्र है ये इसी तरह की, हमें पूरे प्रदेश में इस तरह की बात करेंगे। तो मेरा सिर्फ लोगों से अपेक्षा रहेगी कि कम से कम 5 वृक्षों को लगाइए, उनका संरक्षण कीजिए, आप प्रकृति को इतना बड़ा योगदान कर देंगे जो अन्यथा आप कर नहीं सकते, किसी भी तरह से नहीं कर पाते वो जो है,
1: क्योंकि जब तक प्रकृति है तभी तक हम हैं।
0: बिल्कुल
1: जी, हमारी पहचान भी प्रकृति से ही है। डॉक्टर संजय सूद, बात आती है कि TD है क्या, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, और TD प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया है वो क्या है?
0: देखिए, TD एक तरह का हक हकूक है लोगों का जो जंगलों के आसपास रहते हैं। तो देखिए, उसमें ये प्रक्रिया ये है कि अगर आपको TD की आवश्यकता है तो आपको एक बार जो है 7 क्यूबिक मीटर TD दी जाती है शुरू में मकान बनाने के लिए, और फिर 5 वर्ष बाद अगर आप चाहें तो आपका मकान के रिपेयर्स के लिए भी 5 क्यूबिक मीटर TD दी जाती है, पर बशर्ते कि उसके लिए पेड़ उपलब्ध हों।
1: जी बिल्कुल,
0: और अब तो क्योंकि ग्रीन पेड़ों पे सभी तरह से बैन है, तो पेड़ उपलब्ध होने चाहिए, तो सूखे होने चाहिए, गिरे पड़े पेड़ होने चाहिए, तो ये लिमिटेड है। ये नहीं कि ये अनलिमिटेड अधिकार, ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी ने TD अप्लाई की तो उसको देनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। वो सिल्वीकल्चरल अवेलेबिलिटी, जिसको हम एक शब्द बोलते हैं फॉरेस्ट्री में, कि अगर वो पेड़ उपलब्ध होगा तो दी जाएगी, और प्राथमिकता उसको दी जाएगी जिसको सबसे अधिक आवश्यकता हो। और एक अधिकार है तो एक जिम्मेवारी भी है, और उन्हीं लोगों को ये अधिकार दिया जा सकता है जो वनों के संरक्षण में, आग बुझाने में और अन्य चीजों में वन विभाग का सहयोग करें।
1: जी,
0: तो इस तरह की बात है। तो TD एक अच्छी चीज़ है, जो लोगों को, जो इतने ज़्यादा सानिध्य नहीं, इनको नहीं है जिनके जीवन में, उनको

0: टीडी दी जाती है, पर एक नियम के अनुसार दी जाती है। उसके लिए उनको एक अप्लाई करना तो पड़ता है फॉरेस्ट गार्ड के थ्रू, फिर रेंज ऑफिसर उसको चेक करता है, फिर डीएफओ का अधिकार है टीडी देने का, जो कि पूरी चीजों को ध्यान में रखते हुए टीडी को स्वीकृत करता है।
1: बहुत सही बात कि जो अच्छा काम करेगा उसी को इनाम प्राप्त होगा।
0: जी जी बिल्कुल।
1: सूजी, वर्तमान सरकार इको टूरिज्म को अधिक बढ़ावा दे रही है, तो हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म को लेकर क्या संभावनाएं हैं?
0: देखिए, आपने बहुत एक प्रासंगिक प्रश्न पूछा। इको टूरिज्म मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ टूरिज्म, इसकी अपार संभावना हिमाचल प्रदेश में है। अभी पिछले साल हमने कुछ स्टडी करी और 136 साइट्स पूरे हिमाचल में निकाली जहां पर की इको टूरिज्म की संभावना है। इससे दो तीन फायदे होंगे, एक तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, और जो हमारे बहुत सारे जहां ऐसे क्षेत्र हैं, शिमला है, आपका मनाली है, कुल्लू है, जहां पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा लोग आने लगे हैं, तो उसको भी कम करने में सहायता मिलेगी हमको, क्योंकि लोग और दूसरे डेस्टिनेशन पर भी जाएंगे। और एक तो प्रकृति को इसे बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ इसमें स्थानीय लोगों की रोजगार भी, की आय के साधन भी बढ़ते हैं, उनको भी आय के साधन बढ़ते हैं, ताकि फिर वो अपना स्वरोजगार की तरफ जा पाएं और फिर अपनी जीवन यापन जो है अच्छी तरह से कर पाएं। तो संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। एक इसी तरह से पीपीपी मोड में पिछले दो सालों में हमने 17 साइट्स लोगों को दी हैं, जिसको डेवलप किया जा रहा है पूरे जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारी एक्ट्स रूल्स हैं उसके हिसाब से, और 50 साइट्स अभी हम और अगले कुछ ही दिनों में आवंटित करने जा रहे हैं। एक प्रॉपर प्रक्रिया है, इसमें एक कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग प्रोसेस होता है, फिर उसमें से देखा जाता है कि कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा सक्षम है इस साइट को चलाने के लिए, उसको साइट दी जाती है, और पहले 10 साल के लिए दी जाती है, और फिर अगर उसका कार्य अच्छा रहता है तो उसको अगले 5 साल के लिए और बढ़ाया जाता है, तो 15 वर्ष के लिए वो साइट्स 1 हेक्टेयर की साइट्स लोगों को दी जाएंगी, ताकि वो इको टूरिज्म की व्यवस्था वहाँ कर सकें, टूरिज्म को बढ़ावा दे सकें और स्थानीय लोगों को भी उससे आय जो साधन उससे अधिक हो पाए।
1: इको टूरिज्म के लिए प्रदेश में क्या कोई विशेष स्थान चिन्हित किए गए हैं, और इस योजना से कैसे लाभ उठाया जा सकता है, कैसे लोग संपर्क कर सकते हैं?
0: देखिए, मैंने आपको कहा कि हमने पिछले वर्ष स्टडी किया था, तो 136 स्थान हमने इसमें पूरा चिन्हित किए हैं, 136 साइट्स को चिन्हित किया था, क्योंकि यहाँ संभावनाएं अधिक हैं, और ये रोड कनेक्टिविटी भी अच्छी है, वाटर अवेलेबिलिटी वहाँ पर है, और साथ ही साथ बिजली इत्यादि भी है, तो ये साइट्स हमने चिन्हित की हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस योजना का फायदा उठाना चाहता है तो हमारे जो इको टूरिज्म कार्यालय है उससे संपर्क कर सकते हैं वो लोग, और फिर जितनी भी हम साइट्स आवंटित करते हैं वो उसके लिए एक प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस होता है, पहले प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट होगा, फिर उसके बाद में एक टेंडर होगा, तो उस टेंडरिंग प्रोसेस में कोई भाग ले सके, और उसमें अगर वो सबसे आगे है तो उसको दी जाती है वो साइट जो है, तो इस कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के तहत किया जाता है।
1: संजीव सूजी, कल 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, इस अवसर के लिए आपका क्या संदेश रहेगा?
0: देखिए, मैंने आपको कहा कि जो जीवन को शब्द को अगर संधि विच्छेद करें तो जीव जमा वन, जब जीव में वन का संधि हो जाती तभी जीवन बनता है, तो अगर पर्यावरण को बचाना है तो आपको फिर वनों को बचाना ही पड़ेगा। वन नहीं है तो हमारी जीवन भी काफी फिर लिमिटेड हो जाता है। तो मेरा संदेश सिर्फ इतना ही रहेगा कि हर व्यक्ति जो वानिकी कार्यक्रमों में वन विभाग का साथ दे, कम से कम 5 वृक्ष हर साल लगाए, और ना केवल लगाए उसका संरक्षण भी साथ साथ करे, बच्चों की तरह उसको पालेंगे तो वो भी आपको फिर बाद में आने वाले समय में आपको पालेगा। तो ये एक तरह का संदेश है कि आप उसको जैसा आप मान सम्मान वृक्षों को देंगे वैसा ही आपका
1: वापस मिलेगा,
0: आपको वहां से वापस मिलेगा। तो उसमें आगे आप साथ आए और हम साथ मिलकर चले, तभी हिमाचल एक सुंदर, स्वच्छ और समृद्ध हिमाचल आगे बनेगा, यही मेरी कामना है, और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वन विभाग आगे बढ़ रहा है और सभी हिमाचल वासियों से इसी सहयोग की अपेक्षा रखता है।
1: डॉक्टर संजय सूद, आज हमने वनों के महत्व विषय पर आपसे जानकारी हासिल की, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे वनों का महत्व विषय पर डॉक्टर संजय सूद, वन प्रमुख वन विभाग हिमाचल प्रदेश से भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थी सपना ठाकुर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के शिमला, हमीरपुरा, धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी FM शिमला पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

सभी सुनने वालों को रेखा ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। तहे दिल से स्वागत करते हैं आप सभी का 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। जी हाँ, दिन भर के कामकाज के बाद, अपनी थकान के बाद आइए और अब चल पड़िए हमारे साथ एक बेहतरीन से सुहाने

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की

0: रक्षा में अपना योगदान दे। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
2: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
3: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
4: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: पर आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ फिल्म संगीत लेकर जल्द ही हाजिर हो रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
4: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है, आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
5: नमस्कार, विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
6: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

दिल की बात जो कभी जुबां पे ना आई तो लीजिए आज कह ही देते हैं आपसे। बहुत ही प्यारा गीत सभी आप सभी को सुनवा रही हैं हम आपके दिल में रहते फिल्म से, अनुराधा पौडवाल कुमार सानू की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और इसे संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। सुन रहे हैं आप 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला। रात्रि के 8:45 होने को है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ एट 9। बने रहिए FM शिमला के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार।

0: व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयास

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
2: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
1: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
3: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
5: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
6: अहमदाबाद का एक्का एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।

0: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked the chief ministers of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number one, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter into top three. And now the news in detail.

0: स्वागत है आप सभी का 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ, और हम हाजिर हो चुके हैं लेकर प्रोग्राम एक फिल्म से। आज की कौन सी फिल्म लेकर आए हैं आप सभी के लिए बताएंगे जरूर, लेकिन आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है, आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारी

कारियां होती हैं वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।

तो हो जाइए तैयार, क्योंकि एक बेहतरीन फिल्म लेकर आए हैं हम आप सभी के लिए, जिसमें गीत संगीत भी है ऐसा जिसे सुनकर आप भी जो है वो मग्न हो जाएंगे हमारे साथ। फिल्म थी 1997 यानी कि सन 1997 में जो रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन और निर्माण अजीत सेजावल ने किया था। अनीस बज्मी द्वारा लिखित इस फिल्म में संजय दत्त, मनीषा कोइराला, विवेक मुशरन, जी हाँ, अनुपम खेर, दिलीप ताहिल, कादर खान, अंजन श्रीवास्तव, गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर ने अभिनय किया था। आनंद मिलिंद द्वारा रचित संगीत इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी खासी कमाई की थी। सुनिए ये गीत और जानिए हमारी आज की फिल्म का नाम।

जी बिल्कुल, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं सनम फिल्म से। फिल्म की शुरुआत एक जो है बिजनेसमैन यशपाल आनंद के परिवार से होती है, जिनके दो बेटे हैं, बड़ा बेटा नरेंद्र यानी कि संजय दत्त और छोटा बेटा गौरव यानी कि विवेक मिश्रान। परिवार में सभी नरेंद्र को बहुत प्यार करते हैं और उसे अपना हीरो मानते हैं, जबकि गौरव को हमेशा ऐसा लगता है कि उसके माता पिता उसे उतना महत्व नहीं देते। गौरव अपने माता पिता के इस व्यवहार से दुखी रहता है। इसी दौरान उनकी मुलाकात जो है वो संजना यानी कि मनीषा कोइराला से होती है और दोनों एक दूसरे से प्रेम कर बैठते हैं। कुछ समय बाद नरेंद्र विदेश से लौटता है। पूरा परिवार उसकी वापसी से खुश होता है। एक मेले में अचानक एक बच्ची झूले पर फंस जाती है। नरेंद्र अपनी जान की परवाह किए बिना बच्ची को बचाने के लिए ऊपर चढ़ जाता है। बच्ची को तो बचा लेता है लेकिन हादसे में अपनी जान गंवा देता है।

फिल्म में नरेंद्र की मृत्यु के बाद गौरव को महसूस होता है कि अब उसे अपने परिवार को ये साबित करना होगा कि वो भी किसी से कम नहीं है और अपने परिवार को अब उसे ही संभालना होगा। वो अपने जीवन को नई दिशा देने का फैसला करता है और जो है भारतीय सेना में भर्ती भी हो जाता है। सेना में कठिन प्रशिक्षण से गुजरता है और एक जिम्मेदार सैनिक बनता है। सेना में रहते हुए गौरव को देश के खिलाफ रची जा रही एक खतरनाक साजिश का पता चलता है। कुछ देश विरोधी तत्व बड़े हमले की योजना बना रहे होते हैं। गौरव अपने साथियों के साथ मिलकर इस मिशन को पूरा करने के लिए भी निकल पड़ता है। रास्ते में उसे अनेक कठिनाइयों और खतरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता।

दूसरी ओर संजना गौरव का इंतज़ार करती रहती है और उसके सुरक्षित लौटने की प्रार्थना करती है। दोनों का प्यार समय और दूरी की परीक्षा से गुजरता है, लेकिन कमज़ोर नहीं पड़ता है। कहानी अपने चरम पर तब पहुंचती है जब गौरव अपनी बहादुरी, समझदारी और देशभक्ति के बल पर दुश्मनों की साजिश को नाकाम कर देता है। उसके साहस से न केवल देश सुरक्षित रहता है, बल्कि उसके परिवार को भी उस पर गर्व जो है वो होता है। अंत में गौरव अपने माता पिता का विश्वास और प्यार जीत ही लेता है। परिवार को एहसास होता है कि उन्होंने हमेशा गौरव को कम आंका था, अब वे उसे सम्मान और प्रेम से स्वीकार करते हैं, जिसका वो हकदार था। गौरव और संजना का प्यार भी सफल होता है। कहानी एक सुखद मोड़ पर आकर समाप्त होती है।

0: फिल्म हमें सिखाती है कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, कभी कभी किसी की खुशी के लिए हमें दूर भी होना होता है और ज़िंदगी में हमें मेहनत भी करनी ही पड़ती है। दोस्तों ये फिल्म बेहद ही खूबसूरत है। इस फिल्म के गीत अभी आपने सुने और भाई गीतों का तो कहना ही क्या, सदाबहार नगमे हैं जो आज भी उसी तरह सुने जाते हैं जो कि सन 1997 में सुने जाते थे। सनम फिल्म लेकर आए थे आप सभी के लिए हम आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है एक फिल्म से।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन

गई है या विकल्प रखा गया है, आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाश एफएम शिमला के साथ दिल की आवाज भी सुन कार्यक्रम लेकर हाजिर हो चुके हैं हम आप सभी के लिए एफएम शिमला के संग।

तो जल्दी से कर लीजिए आज की फिल्मों के नाम नोट, क्योंकि आप भेज सकते हैं हमें ईमेल और सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। आज की हमारी फिल्में हैं करीब, मेजर साहब, दुश्मन और गोपी किशन। फिल्मों के नाम सुन लिए होंगे आपने, एक बार फिर से बता देते हैं आप सभी को। गोपी किशन, दुश्मन, मेजर साहब और करीब। सुनना चाहते हैं इन फिल्मों में से कोई सा भी नगमा तो उठाइए अपनी, जी हाँ, अपने फ़ोन और कीजिए हमें ईमेल airfmshimlamusicmail@gmail.com पर और सुनिए अपनी पसंद के गीत।

पंजाब से हमें ईमेल आई है, भेजने वाले हैं हरचिंदर छिंदा, जसवी जस्सी, सीता और गीता। आप सुनना चाहते हैं करीब फिल्म का नगमा, स्वागत करते हैं हम आपका कार्यक्रम में। साथ ही राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना और निवान शर्मा, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, नमस्कार लिखकर भेज रहे हैं और आप सुनना चाहते हैं करी फिल्म का ही नगमा। वैशाली शैलेश गणवाकर, प्रिंस एकांश, सुमित, कुमारी ध्वनि, अभिजीत और सरिता, प्रणीता और टुक टुक, आपका भी हम स्वागत करते हैं। मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा, खेड़ा से आपकी ईमेल हम तक पहुंची है और आपकी भी फरमाइश है करी फिल्म के लिए। मेरठ से ईमेल आई है दिग्दर्शन, कविता, करण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई।

ईमेल्स का सिलसिला लगातार है जारी और ईमेल पहुंची है एलआर गुंजेटा, जमिंता गुंजेटा, अनुज मुकुल गुंजेटा। आप हमें ईमेल कर रहे हैं छुपाड़ी रोडू से। सुनना चाहते हैं मेजर साहा फिल्म का गीत। डॉक्टर रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप आरजू और गुड्डू, स्वागत करते हैं हम आपका भी। मलौट से आपने हमें ईमेल भेजी है। शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, सहारनपुर से सैयद मसरूर, किसी भी गीत का जो है वो, किसी भी फिल्म का कोई सा भी गीत आप सुनना चाहते हैं, ज़रूर सुनवाएंगे जी, आपने हमें ईमेल भेजी है। संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा, राधेश्याम शर्मा, इंदिरा वर्मा, सिरसा से आपने हमें ईमेल भेजी है। ईमेल्स लगातार आ रही है, कोशिश है कि सभी के नाम जो है वो शामिल हो सके। जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत और हरियाणा से आपने हमें जो है वो ईमेल भेजी है कार्यक्रम में। आप ही के साथ संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। आप सुनना चाहते हैं करीब फिल्म का गीत, सुनवाएंगे ज़रूर आपको भी हम इस फिल्म का गीत। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, ठंडा से आपकी मेल आई है। माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, लदावली और जिला मुरादाबाद से आपने हमें मेल भेजी है। हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल साहू, चंपा साहू, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रिया जी हाँ, प्रियम थांदी, वामिका और वाणी थांदी, गगनदीप थांदी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। नवाशहर पंजाब से आपने हमें जो है वो ईमेल भेजी है। हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, लालगिरी गोस्वामी, राजस्थान से आपकी मेल हम तक पहुंची है। तो आइए, पेश कर रहे हैं करीब फिल्म का ये गीत।

मेरा नाम लेडी कांस्टेबल रमा है और मैं 2022 बैच की भर्ती हूँ। तब से मुझे 4 साल हो गए हैं पुलिस में काम करते करते। उससे पहले मैं यहीं पे HP यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रही हूँ। मैं मतलब कॉलेज स्टूडेंट लाइफ में भी कैसे मतलब युवा नशे की ओर जाते हैं तो ये देखा है। अभी मैं पुलिस में 4 साल से काम कर रही हूँ और सर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कॉलेज और स्कूल में जाके बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना कि नशा क्या है, बच्चे कैसे इसमें फंसते हैं और उनको अवेयर करना कि नशा क्या होता है। उसी में हम अपनी ड्राइव चला रहे हैं। तो इसमें हम चाहते हैं कि जो आज का हमारा युवा है वो पुलिस के साथ मिलकर काम करें, वो केवल क्वेश्चन ना उठाएं, वो भी देखें कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पुलिस के साथ आके इस मुहिम में हमारा साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।

दिल की आवाज़ भी सुन रहे हैं आप इस वक्त 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। हम तक ईमेल पहुंची है, भेजने वाले हैं बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह और सोनम, अनामिका भी आपके साथ शामिल है, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू, मधु, आपकी ईमेल हम शामिल कर चुके हैं, रुपेश संघ

महेश संघई, प्रगेश, प्रीतेश और संघई परिवार, स्वागत करते हैं हम आपका भी। महाराष्ट्र से आपने हमें ईमेल भेजी थी। करुणा मीना अश्विनी विपुल कांबड़े, आरसी कांबड़े, जवाहर नगर दुर्ग से आपने ईमेल भेजी है। गोपी किशन फिल्म के लिए जो हम तक पहुंची है ईमेल भेजने वाले हैं अजीत कसाना, लदावली जिला मुरादाबाद से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित, गुनीराम राजपूत, संतोषी, हेमप्रभा, पुष्पराज, सूरज राजपूत। आपके साथ और भी शामिल है ईमेल्स भेजने वाले हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। करुणा मीना, जी हाँ, आपकी ईमेल शामिल कर चुके हैं दोस्त। बाकी दोस्तों की भी ईमेल्स हैं जिनके नाम आना बेहद ज़रूरी है। मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा, पीहू और आपके साथ और भी शामिल हैं राजेश कुमार, प्रीति और कार्तिक आर्यन वर्मा, अमित झंगेल, शकुन झंगेल, आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि झंगेल, मोरस झंगेल, अनिल, अजीत, आयुष, नंदनी, उत्तम सिंह झंगेल, भिलाई से आपने हमें ईमेल भेजी है। हरछिंदा छिंदा, जसवीर, सीता और गीता, गोविंदापुरा, अहमद नगर से जुनेद मुजावर, सबिहा, जहां सबिहा, मिखाइल मुजावर, जनेब मुजावर, आपका भी स्वागत है। अनिल बुरांडे, जी हां, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनु, जी हां, धनश्री, बल्हा शाह से आपने हमें ईमेल भेजी है। राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति और बेनीपट्टी, मधुबनी, बिहार से आपने हम तक ईमेल भेजी है।

जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पॉल डिकैस्ट्रो, विल्स डिकैस्ट्रो, सहारनपुर से आपने हम तक ईमेल भेजी है। संगीता कंवर, तुषार, रिंकी शिखावत, दातार सिंह शिखावत राजस्थान से शामिल हुए हैं। सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक, स्वाति और यूपी से आपने ईमेल भेजी है। संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, दुर्ग से आपने ईमेल हम तक भेजी है।

लेडी कांस्टेबल आनंदनी, हिमाचल प्रदेश पुलिस में पिछले 4 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हूँ। इसी बीच हम बहुत से विद्यार्थियों, युवाओं और पेरेंट्स से मिलकर एंटी चिट्टा अवेयरनेस की बातें करते आ रहे हैं। इसमें हमने देखा है कि जब तक किसी घर में किसी घर का बच्चा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तब तक समझते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। एंटी चिट्टा अवेयरनेस प्रोग्राम सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है, यह एक जंग है ड्रग्स के खिलाफ। वो मेरा सभी से अनुरोध है कि वो 5 जून को रिज पर सुबह 6:30 बजे आके मिनी मैराथन में पार्टिसिपेट करें और इस अवेयरनेस को पूरे प्रदेश में फैलाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।

बेस्ट प्रोग्राम आप सुन रहे हैं दिल की आवाज़ भी सुन। और इसी बीच हम तक ईमेल पहुंची है, भेजने वाले हैं सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या अरब और एस के पप्पी। ग्वालियर से आपने हम तक जो है ईमेल भेजी है, आप ही के साथ ईमेल आई है, भेजने वाले हैं सुमैया मुलानी, सुबान, सलमा मुमताज, दिलशाद नसीर, बानू बी मुलानी, बादशाह, जाकिर और इनका परिवार।

दुर्ग से जी हाँ आपकी मेल दोस्त हम शामिल कर चुके हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि नए दोस्तों के नाम भी जो है वो शामिल हो सके। विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू छत्तीसगढ़ से आप जो है वो कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मानिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम, हरिशंकर, रितेश कुमार, प्रशांत और रामचंद्र गुप्ता छत्तीसगढ़ से आपने हम तक ईमेल भेजी है। फातिमा खातून अंसारी, सुरित सुरमेश साहू, डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश, अभयानंद, श्रद्धानंद, परमानंद और राज एस टी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, लगता है बहुत से दोस्त एक साथ मिलकर हमें जो है वो ईमेल भेजते हैं। अच्छी बात है, आपकी दोस्ती बहुत पक्की है और ऐसी ही बनी रहे एफएम शिमला के साथ भी।

गीत बेहद प्यारा है, लेकिन क्या करें, इसी बीच ईमेल्स भी आ रही हैं। रेखा बनसोडे, अदिति और वैभव, प्रिया, आकाश भी जो है वो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं।

सोमदत्त जी हाँ, कैरव ज्योतिरानी, गुरमंत कौर और मनु हमें ईमेल कर रहे हैं पटियाला पंजाब से। असीम शुभकामनाओं के साथ जो हम तक अंतिम मेल पहुंची है भेजने वाले हैं डॉक्टर दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। आप हमें मेल कर रहे हैं जलगांव जंक्शन से।

कुछ इसी तरह आपके दिल की आवाज़ भी हमने पहुंचाई है आपके अपनों तक। कार्यक्रम दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला, हिमाचल की धड़कन, शिमला की धड़कन FM शिमला, जहां से हम आपके लिए भेजते हैं कुछ प्यारे प्यारे नगमे ठंडी ठंडी हवाओं के साथ।

इस सुहाने से सफ़र को करते हैं और भी खूबसूरत कुछ जी हाँ गज़लों के साथ। तो आइए पेश करने जा रहे हैं गज़लें आप सभी के लिए जगजीत सिंह की आवाज़ में। कार्यक्रम की पहली गज़ल आइए सुनते हैं।

गजल ऐसी जो ना जाने कितने दिलों की बात कह गई। कोशिश तो बहुत की मनाने की, लेकिन क्या करे ये दिल जो है वो खुद के बस में है ही कहा। मिताली सिंह की आवाज़ में ये गज़ल अभी आपने सुनी। पेश कर रहे हैं अब अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में कार्यक्रम की अगली गज़ल।

चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी महान हस्ती की जो आज भी हमारे दिलों में बसे हैं। नमन करते हैं हम उस संगीत के जगत के महान हस्ती को जिनकी मधुर आवाज ने करोड़ों दिलों को छुआ। आज महान गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम जी की जयंती है। 4 जून सन 1946 को जन्मे एसपी बाला सुब्रमण्यम जी ने अपने संगीत सफर में हजारों गीत गाकर भारतीय सिनेमा को अमूल्य धरोहर दी। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि हर गीत सीधे श्रोताओं के दिलों तक पहुंच जाते थे। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सहित अनेक भाषाओं में उन्होंने अपनी गायकी का परचम लहराया। उनके गीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं थे दोस्तों, बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति थे। प्रेम, विरह, खुशी, भक्ति, हर भावना को उन्होंने अपनी आवाज़ से जीवंत कर दिया था। आज उनकी जयंती पर हम उनके संगीत, उनकी उपलब्धियों और भारतीय संगीत जगत में उनके अतुलनीय योगदान को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। उनका संगीत आज भी और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा। कुछ आवाजें समय के साथ नहीं मिटती, वे यादों में बस जाती है। एसपी बाला सुब्रमण्यम जी की आवाज भी ऐसी ही अमर धरोहर है। जी हाँ, ये वो धरोहर है जो सदैव हमारे दिलों में गूंजती रहेगी।

0: उन्हें प्यार से SPB और बालू के नाम से भी जाना जाता था। पंडित ताराधुल्ला बाला सुब्रमण्यम जी उनका पूरा नाम था।
1: खुदा की कसम,
0: उनकी मधुर आवाज, भावपूर्ण आवाज ने करोड़ों, लाखों, अरबों श्रोताओं के दिलों में एक अमिट स्थान जो है वो बनाया है।

0: और बरसात की रात फिल्म का ये गीत आपने सुना आशा भोसले मन्ना डे की आवाज़ों में। आप सुन रहे हैं 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला।
1: नमस्कार, मैं नरवीर सिंह, एडिशनल SP हिमाचल प्रदेश पुलिस। हिमाचल प्रदेश पुलिस नशा के खिलाफ जंग में निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश पुलिस अन्य विभागों के साथ 5 जून को रिज मैदान शिमला से मिनी मैराथन का आयोजन कर रही है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसमें

बढ़ चढ़कर भाग लें और आकर्षक इनाम 10 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की रेस में दौड़ में प्राप्त करें और जन जागरण के लिए आप अपना पार्टिसिपेशन दे करके एक संदेश दे ताकि हिमाचल प्रदेश पुलिस इस कुकृति को लड़ने में सक्षम होकर के आपके सहयोग से कार्य कर सके। जय हिंद, जय भारत।

0: अमोरे मियो दोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: द ग्रेट गैम्बलर। जी हाँ, अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार की आवाज़ों में इसी गीत के साथ सदाबहार नगमों में आज बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सफ़र आपने भी जो है इसका आनंद लिया होगा। चलते चलते बस यही कहेंगे, खुश रह कीजिए, अपना ख्याल रखिए, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी FM शिमला पर। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी FM शिमला। रात्रि के 11 बजने को है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। बने रहिए FM शिमला के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है।

0: श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चम्फाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Union Home Minister Amit Shah today said that Narendra Modi government ended the era of violence in the northeast and transformed the region from the hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council, NEC, Mr. Shah, in a social media post, said, "Today, NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of a region while fulfilling people's aspirations and promoting culture." In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. Mr. Shah said that he also instructed to market Northeast potential in agarwood, foreign trade and health tourism. Prime Minister Narendra Modi today said yoga is India's timeless gift to humanity. Virtually joining the inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship being held at the EK Arena in Ahmedabad, the Prime Minister said yoga unites mind, body and spirit and inspires